नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त जागृति, लेकर हाजिर हूँ आज की सुहानी सुबह की ताजगी और उत्साह से भरी रूपरेखा। हर घड़ी हर पल आपके साथ आपकी आवाज में सिर्फ और सिर्फ वागड़ रेडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं दिन का ये खूबसूरत सफर हर रंग के साथ में। साथियों, सुबह 6 बजे कार्यक्रम आराधना आप सुन पाएंगे। हर सुबह की शुरुआत हो ईश्वर के नाम के साथ। आरती, भजन और मन को शांति देने वाला ये कार्यक्रम समर्पित है आराधना को। तो जुड़िए प्रभु स्मरण में और कीजिए अपने दिन का शुभारंभ। इसी के साथ साथियों, अगला कार्यक्रम है 6:30 पर कार्यक्रम खेतीबाड़ी। किसान हमारे अन्नदाता है। इस कार्यक्रम में हम लाते हैं खेती के नए तरीके, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की सलाह, ताकि खेत भी मुस्कुराए और अन्न भंडार भी भरे। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट यानी के मैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है सच्चा बचपन। इसे आप सुन पाएंगे 7 बजे। श्रोताओं, बचपन की कहानियाँ, नैतिक शिक्षा और बच्चों के लिए मनोरंजन का खजाना, प्यारे नन्हे श्रोताओं के लिए एक खास कार्यक्रम जहाँ हंसी, ज्ञान और संस्कार साथ चलते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर। इसी रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं। आप सुन पाएंगे 7:30 पर कार्यक्रम युवाओं की आवाज को, युवा शक्ति देश की असली ताकत। इस कार्यक्रम में उठेंगे युवाओं के मुद्दे, मिलेंगी करियर गाइडेंस, मोटिवेशंस और नए विचारों को मंच। जुड़िए और बनिए बदलाव की आवाज में। इस कार्यक्रम को लेकर आती है आपकी रेडियो साथी जागृति भट्ट यानी के वे। अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 8 बजे सच्चा स्वराज। जी हाँ साथियों, स्वराज सिर्फ राजनीतिक नहीं आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इस कार्यक्रम में सुनिए स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं और जानिए आजादी के सही मायने। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट यानी के मैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे 8:30 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम लोक संगीत, जिसमें आप सुनेंगे धरती की खुशबू, संस्कृति की मिठास, लोक संगीत में बसती है हमारी आत्मा। तो तैयार हो जाइए दोस्तों ढोलक, बांसुरी और मंजीरी की ताल पर झूमने के लिए। अगला कार्यक्रम सुन पाएंगे 9 बजे हमारा स्वास्थ्य। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी कशिश पाराशर। साथियों, क्योंकि आप जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है, इस कार्यक्रम में जानिए घरेलू नुस्खे, डॉक्टरी सलाह और योग से जुड़ी बातें और खुद को रखिए तंदुरुस्त हर रोज। आगे बढ़ते हुए सुनेंगे कार्यक्रम समस्या समाधान। इसे आप सुन पाएंगे 9:30 पर और इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। साथियों, आपको कार्यक्रम की रूपरेखा तो बताई गई है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे 10 बजे और 10 बजे कार्यक्रम आता है हमारी बात आपके साथ। साथियों, ये कार्यक्रम समाज के मुद्दे, संवाद का एक मंच, आप कहिए हम सुने, क्योंकि आपकी बातों में है वो ताकत जो बदलाव ला सकती है। ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 10 बजे और इसे लेकर आएंगे हमारी रेडियो साथी। 12:00 से 1 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। आपकी फरमाइश सिर्फ आपके नाम, आपके पसंदीदा गानों की फरमाइश आपके संदेशों के साथ। आप अपने संदेश हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए, हमारा नंबर है 9460051234 और आप अपने फरमाइश गीतों को सुन सकते हैं वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। श्रोताओं, बजेंगे वही गाने जो आपके दिल की धड़कन है। तो जुड़े रहिए वागड़ रेडियो पर, क्योंकि यहाँ आपकी आवाज है सबसे खास। तो श्रोताओं, यह तो

0: भविष्य के आधार पर सब आज का निर्णय लेना चाहते हैं। भविष्य में सुख मिले, भविष्य सुरक्षित हो, ऐसे निर्णय आज लेने का प्रयत्न रहता है सबका।
1: आप अपने जीवन को देखिए, क्या आपके अधिकतर निर्णय के पीछे भविष्य का विचार नहीं होता?
0: और हो भी क्यों ना, अपने जीवन को सरल और सुखमय बनाने का प्रयत्न करने का अधिकार सबका है।
1: पर भविष्य तो कोई नहीं जानता, केवल कल्पना ही की जा सकती है। तो जीवन के सारे महत्वपूर्ण निर्णय कल्पनाओं के आधार पर ही करते हैं हम। क्या निर्णय करने का कोई तीसरा मार्ग हो सकता है? विचार कीजिए। सारे सुखों का आधार धर्म है, और वो धर्म मनुष्य के हृदय में बसता है। तो प्रत्येक निर्णय से पूर्व स्वयं अपने हृदय से प्रश्न अवश्य पूछ लेना कि ये निर्णय स्वार्थ से जन्मा है या धर्म से। क्या इतना पर्याप्त नहीं? भविष्य के बदले धर्म का विचार करने से क्या भविष्य अधिक सुखपूर्ण नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए।

थारी में पासो लावो चूनू हवा, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। भारतीय खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी ना तो जोड़ो। मोटो अनाज अपनावंगा, शरीर में स्वस्थ राकंगा। बागल रेडियो एवं बागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम खेतीबाड़ी हमारा वारा हमरे भाई बहनों ने आपने बोन अंजलि नो राम राम किसान भाई बहन आप हमरी रहो आपड़ो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते मैं आप सबनो घर में स्वागत करा हूँ हमारे आज ने कार्यक्रम खेतीबाड़ी में जिन की भाई बहनों अमे हमारे टाइम में हाजिर थे सब कार्यक्रम खेतीबाड़ी में लेने एक नया विषय में हाथे तो भाई बहनों आज हमारे कार्यक्रम में आप तक की बातचीत में विषय है कि खरीफ ने बाद अपने रबी में खेती करा हो तो अवरे देखिए अपने इन तैयारी हरते शुरू करवी है कई कई बातों में ध्यान रखू है इन्हें बारे में अजय अपने बातें करवा वा रहा तो बातें तो हमारी अब तक ये खाना का नहीं रहेगा पर कार्यक्रम शुरू कर इन्हें पहले आपने हमारा भी दाग की हमारे कर अपनी बातें तो बहन बोलो आप हम बढ़ते रहो आप रेडियो अपनी बातें वागड़ रेडियो 90.8 FM

0: આપનું ગીત તો અહીં પૂરું, અને ગીત બાદ એક વખત ફરી આપ સૌનું હનુમાન સ્વાગત કરું હું અમારી આજના કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં. જેમ કે બાંધબોનું અમે આપને ગીત થકી પહેલા વિશે બતાડ્યું હતું કે આજ આપણે વાતચીત કરવા વાળા હોય કે ખરીફની બાદ રબીની ફસલની તૈયારી આપણે હેતે કરવી હે ને, કઈ કઈ વાતોનું ધ્યાન રાખવું હે, તો આના વિશે માટે વાતચીત કરવા બોલાય. આજ આપણે કાર્યક્રમ થકી જોડી રહી માંગીલાલજી, તો સૌથી પહેલા આપણે સાંભળી લેવાની વાત ને મોરે કરે આપણી વાતે. सर नमस्कार.
1: नमस्कार जी.
0: सर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं वागड़ रेडियो परिवार में.
1: जी धन्यवाद.
0: सर जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं और आज हमारे कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है कि खरीफ के बाद रबी की तैयारी अभी से हम कैसे शुरू करें.
1: जी.
0: क्योंकि हम देखते हैं कि जब सीजन आए उस समय अगर हम तैयारी शुरू करते हैं तो बहुत सी बार बहुत सी चीजें हम भूल जाते हैं कि ये करना था और ये नहीं किया. और अगर हम पहले से तैयारी करते हैं तो समय रहते अगर कोई गलती भी हो तो उसमें हम सुधार कर सकते हैं. तो आप सबसे पहले हम यही बताइए कि इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा.
1: जी, तो आपका जो विषय है बहुत अच्छा है और वर्तमान में इस विषय पर हमें सोचने की जरूरत है सभी किसान भाइयों को. तो देखिये, रबी की जो अच्छी फसल की शुरुआत है वो बुआई के दिन से नहीं होती है. इसकी तैयारी है खरीफ की फसल के जो अंतिम चरण होता है तब से शुरू हो जाती है, जैसे सितंबर में अंत तक और अक्टूबर में शुरुआत में. तो इसमें क्या होता है कि खेत, बीज, मिट्टी, नमी, उसमें फसल के अवशेष, सिंचाई की सुविधाएं, फसल योजना, इन सब पर जो है रबी की बुआई से पहले अत्यधिक व्यवस्थित करना पड़ता है और ध्यान दिया जाता है.
0: जी जी.
1: रबी की फसल में गेहूं, चना, मसूर, मटर, सरसों, अलसी, ये जो क्षेत्र में हमारे यहाँ होती है तो सामान्य रूप से हमारी जलवायु है उनके लिए अनुकूल होती है. इसलिए स्थानीय जलवायु और मिट्टी की सिंचाई की सुविधा, पिछली फसल और जो किसान के उद्देश्य हैं उनको ध्यान में रखकर चयन करना चाहिए.
0: बिल्कुल.
1: तो ये बहुत जरूरी है कि हम जब खरीफ के अंतिम चरण में है तो हमें देख लेना चाहिए कि हमारे खेत की क्या स्थिति है, नमी कितनी है, उसमें क्या जरूरत है कि जैसे खाद डालना है आपको या उसकी, जैसे आपने खरीफ की कटाई कर दी तो उसके बाद में फिर उसकी जुताई करना होता है.
0: बिल्कुल.
1: तो सारी चीजें वो आपको पहले से देखने की जरूरत.
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा. तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि किस तरीके से हमें खरीफ के बाद तुरंत ही इन सारी चीजों को देखने की जरूरत है ताकि आगे की जो फसल का उत्पादन हम चाह रहे हैं हमारे वो मन के अनुसार हमें मिल जाए. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा.
1: तो देखिए, हमें कुछ बातें हैं जिनका हमें विशेष रूप से ध्यान देने की बहुत जरूरत है. जैसे पहले खेत की जो स्थिति है उसको समझना बहुत जरूरी है.
0: बिल्कुल.
1: अब खेत की स्थिति में क्या है कि किसान है जो खरीफ की समाप्ति हो जाती है तो वो अपने खेत का निरीक्षण करे, वो जाकर उसको देखे उसमें नमी कितना है, पानी की निकासी का कैसा रहा, ऐसा तो नहीं कि मिट्टी का कटाव हो गया हो, ऐसा तो नहीं कि जैविक जो खेत में अवशेष है वो कितने हैं या नहीं है.
0: बिल्कुल.
1: तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है. यदि खेत की मिट्टी बहुत कठोर हो गई है तो हो सकता है पानी की निकासी खराब है, या रबी की बुआई से पहले जो सुधार की योजना बना सकते हैं. तो इस तरह से हमें पहले उसकी स्थिति को अच्छे से समझना होगा. और इसके लिए जो हमारे जो गांव में बड़े बुजुर्ग है वो और बेहतर तरीके से हमारे युवाओं को और हमारे ऐसे भाइयों को बता सकते हैं, उनसे हम जान सकते हैं कि किस तरह हमें करना चाहिए. दूसरी हम बात करते हैं तो मिट्टी जो परीक्षण करना जरूरी होता है.
0: बिल्कुल.
1: मतलब जो परीक्षण का जो मतलब होता है वो क्या होता है कि हमें उसकी जो गुणवत्ता है उसकी जांच करना जरूरी होता है.
0: जी जी.
1: कि हमारी जो मिट्टी है उसकी जो उर्वरकता है वो कितनी है, वो उपयोगी है या नहीं है, उसमें किन संसाधनों की आवश्यकता पड़ सकती है. तो ये क्या है कि इसका जब मिट्टी की गुणवत्ता की जांच आप कर लेंगे तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि मेरी मिट्टी कैसी है, कितनी उपयुक्त है या मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए. तो एक तो है कि हमारे जो स्थानीय स्तर पर हम जांचते हैं कि जब मिट्टी का जो बोतल में भर के उसको उसकी परतें हम देखते हैं कि उसमें क्ले कितना है, तो वो सारी उस तरह से हम देख सकते हैं जो हम स्थानीय उपाय करते हैं. दूसरा, अगर आपके पास में नजदीकी कोई कृषि विज्ञान केंद्र है या आपके पास में ऐसे टूल्स है जो आपके ग्राम पंचायत या आसपास में, तो वहां भी इसका जांच की जा सकती है. इसके साथ ही एक सोचने वाली बात यह कि जब आपने मिट्टी की जुताई कर दी, बुआई कर दी खेत की, उसके पहले एक चीज ये भी है कि फसल का चुनाव है वो सोच समझ कर करना चाहिए.
0: बिल्कुल.
1: तो इसमें क्या होता है कि जैसे रबी की फसल का चयन एक तो बाजार का भाव देखकर कर लेते हैं हम लोग कि नहीं ये तो बहुत महंगी बिक रही है तो इसको करना जरूरी होता, लेकिन ये देखना काफी नहीं है.
0: बिल्कुल.
1: उसके लिए ये देखना जरूरी है किस सिंचाई की सुविधाएं कितनी है, मिट्टी जो है किस फसल के लिए उपयुक्त है, पिछले मौसम में कौन सी फसल लगी थी, और परिवार का जो खाद्य आवश्यकता उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। यदि परिवार को पोषण की प्राथमिकता है तो उसमें दलहन तिलहन और स्थानीय खाद्य जो फसलें हैं वो हमें उगाना चाहिए। इसके साथ में हमें ये भी देखना चाहिए कि कौन से खेत में कौन सी फसल करनी है, ऐसा नहीं कि हमने सब में एडजस्टी कर दी, तो हमें उस संतुलन को देखना होगा कि हमारे पास में सुविधाएं कितनी है, पानी की है या हमारे पास में संसाधन कितने हैं। तो आपने मान लो पिछली बार किसी खेत में गेहूं लगाया, अब वापस एक बार देखने की जरूरत है कि उसमें गेहूं लगाना है या नहीं लगाना,
0: बिल्कुल,
1: तो वो हमें जरूरी है। दूसरी चीज एक यहाँ भी देखने की जरूरत है कि जब हम पोषण की बात करते हैं हमारी खेती से, या हमारे परंपरागत खान पान की बात करते हैं जो स्थानीय है, तो उसमें क्या एक जो है वो जैव विविधता भी बीच में आती है हमारे, कि जो हमारे थाली की विविधता है उसको भी ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर के लिए जो हमारी फसलें हैं वो जो उगती है वो हम खाते हैं, तो हमें देखना चाहिए कि कौन कौन सी विविधताएं हैं वो हम कर सकते हैं। तीन चार पांच प्रकार की जैसे आपने अनाज कर दिया, सब्जियां हैं या तिलहन है दलहन है,
0: बिल्कुल,
1: तो उससे क्या है आपको अलग अलग प्रकार की जो शरीर की पोषण आवश्यकताएं हैं वो पूरी होगी,
0: बिल्कुल।
1: इसी तरह अगर आप देखें तो हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि फसल का जो चुनाव वो कैसे करें, तो इसमें क्या फसल चक्र है उस पर भी हमें विचार करना चाहिए,
0: बिल्कुल,
1: कि जैसे लगातार एक ही फसल उगाने के बजाय अलग अलग प्रकार की फसलें को प्राथमिकता दें, उनकी परिस्थितियों को समझें, तो विशेष रूप से जो दलहनी फसलें हैं फसल प्रणाली को शामिल करने में मिट्टी की जो प्रक्रिया है उसको कितना अच्छा है, समर्थन मिलता है या नहीं उसको हमें देखने की जरूरत है। तो हमें फसल चक्र अपनी स्थानीय परिस्थितियों को देखकर उसे अपनाने की जरूरत है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा, जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि खरीफ के बाद रबी की तैयारी अभी से हमें कैसे करनी है, और ढेर सारी बातों से आप हमें अवगत करवा रहे हैं। यही हम देखते हैं कि इसमें बीज का चुनाव भी बहुत जरूरी है, तो इसके लिए किसान भाई बहनों को क्या ध्यान रखने की जरूरत है?
1: देखिए बीज बहुत महत्वपूर्ण है, तो रबी की बुआई से पहले बीज की व्यवस्था जो है वो अंतिम समय तक नहीं टालें कि जब बुआई करें तभी, उसकी व्यवस्था पहले से करें। जैसे आपका घर का बीज है तो उसको साफ करना, स्वच्छता देखना, उसकी गुणवत्ता को देखना, उसमें से जो कमजोर बीज है उनको अलग करना, अच्छे बीजों को उपयोग करना, ये चीजें हमें देखने की जरूरत है। इसके साथ में बुआई से पहले उसका उपचार करना जो हम परंपरागत विधियों से करते हैं, जैसे गोमूत्र है, राख है, नीम की पत्तियां हैं, उन सबकी जो है उनसे उपचार करके उनको तैयार रखिए आप,
0: बिल्कुल,
1: ताकि बुआई के समय आपको एक साथ सारी चीजें ना करनी पड़े। उसकी अगर बीज में नमी है तो उसको थोड़ा सुखाए आप, उसकी नमी दूर करें, तो इस तरह से जो आपको उसको ध्यान रखने की जरूरत है।
0: बिल्कुल सर, और यही हम देखते हैं कि खेत की नमी और जैविक खाद और कई सारी चीजों की फसल में जरूरत रहती है, तो इनका ध्यान हमारे किसान भाई बहनों को कैसे रखना चाहिए?
1: देखिए खरीफ की फसल होती है उसको कटाई हो जाती है, उसके बाद में क्या होता है कि हमारे कई किसान भाई

0: खाद है, कंपोस्ट है, वो पहले से आप तैयार करें, क्योंकि आपको आगे जाकर खेत में डालना है, तो वो भी आप तैयार करके रखिए। जैसे आपने कंपोस्ट तैयार कर दिया तो 60 दिन पहले आपने उसको शुरू कर दिया, तो आपकी जब बुआई होगी तब आपको तैयार मिलेगा। तो उससे पहले आप छान कर रखिए उसको, आप बीज में मिलाकर उसको बोएं, उसके बाद खेत में डालना हो तो डालें। इस तरह से हमें जो है उन चीजों का ध्यान रखने की आवश्यकता है।
1: बिल्कुल सर, और यही फसल अवशेष को किस तरीके से हमारे किसान भाई बहन संसाधन बना सकते हैं?
0: देखिए, खरीफ की फसल के बाद जो डंठल या पत्तियां जो अवशेष बचते हैं वो जो जैविक खाद का काम करते हैं, इन्हें काटकर खेत में फैलाया जा सकता है, जिससे मल्च बोलते हैं, मल्चिंग करते हैं, वो किया जा सकता है। इसको कंपोस्ट में शामिल किया जा सकता है ताकि इससे बहुत अच्छी खाद बनती है।
1: बिल्कुल,
0: इसमें एक परंपरागत खाद है वो बहुत अच्छी जो है आपकी उन अवशेषों से तैयार होगी। इसी तरह एक बात ये भी यहाँ पे आती है कि खेत की जो मेड़ है और जल निकासी है उसको पहले से आप सुधार ले।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि वो भी बहुत जरूरी होती है कि मेड़ की मरम्मत कर ले, जैसे अगर टूटी हुई हो बारिश के दिनों में या टूटे हुए इससे को ठीक करने की आवश्यकता है। निकासी की व्यवस्था रखें, पानी और जल सिंचाई का वो प्रबंधन आप पहले से, पानी कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या हमारे पास उपलब्ध है, तो कितना कब कब देना है, वो सारी चीजें हैं वो हमें देखने की जरूरत है।
1: बिल्कुल सर, यही सर बुवाई का समय कैसे ध्यान में रखना है किसान भाई बहनों को?
0: देखिए, हम जो है कई वर्षों से हम खेती से जुड़े हुए हैं और हमारे जो बुजुर्ग है वो भी खेती करते आए हैं, तो रबी की जो फसल की बात करते हैं तो खरीफ की कटाई होने के बाद में हमने जुताई की, और हम क्या है कि लगभग आप देखेंगे तो अक्टूबर में उसकी बुआई कर देते हैं। तो हमें इसके लिए पहली चीज में ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको इसका ज्ञान नहीं है कि कब बुआई करनी है तो आप सबसे पहले हमारे जो संसाधन है वो हमारे गांव के बुजुर्ग है, आप उनसे बात करें, उसके बाद उनसे जान ले कि कब बुआई करना उचित रहता है। तो इस तरह से अक्टूबर और नवंबर मिड तक आप आराम से जो है इन सब की बुआई कर सकते हैं।
1: जी सर, तो जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि खरीफ के बाद रबी की हमें तैयारी कैसे करनी है, यही हमारे किसान भाई बहन अगर रबी की योजना लिखित रूप में बनाए तो इससे क्या लाभ होगा और कैसे बना सकते हैं वो?
0: देखिए, अगर योजना बनाते हैं तो जब बात योजना की आती है तो आपको परिणाम जो है वो बेहतर मिलते हैं अगर आप योजनाबंद काम करते हैं तो।
1: बिल्कुल,
0: तो जैसे आपने लिखा कि क्या करना है तो पहले आपने तय कर लिया खेत में कौन सी फसल बोनी है, बीज की मात्रा कितनी डालनी है, कौन सा बीज डालना है, मिट्टी है उसकी आपने जांच कर ली, मिट्टी का पोषण आपने देख लिया, जैविक खाद की मात्रा कितनी है, उसका उपलब्धता, उसका उपयोग देख लिया आपने, सिंचाई का संभावित जो स्रोत कौन सा होगा वो आपने देख लिया, कहाँ से पानी आएगा हमारी खेती के लिए, खेत में जो अवशेष है क्या आप उसको खेत में छोड़ रहे हो या कंपोस्ट में डाल रहे हो, या पशु जो खा रहे हैं उसको हम खेत में डाल रहे हैं कंपोस्ट में डाल रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: बुआई और निराई गुड़ जिसकी बात करते हैं वो जरूरत के अनुसार करें आप, उसमें देख लिए कितने दिन लगेंगे, श्रम की व्यवस्था क्या होगी, बैल होंगे या कैसे आप उनकी व्यवस्था करेंगे, बाजार से अगर कुछ लेना है तो क्यों लेना है, कैसे लेना, कितना लेना है।
1: बिल्कुल,
0: और तय करना है कि हमें ये सोचना चाहिए कि अधिक से अधिक हम घर की ही चीजें उपयोग करें, बाजार पे हम ना जाएं।
1: बिल्कुल सर,
0: तो इन चीजों का ध्यान रखें।
1: जी बिल्कुल, तो सर जैसा कि आपने ढेर सारी बातों से हमारे श्रोता साथियों को अवगत करवाया है, तो अंत में कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारे किसान भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं सभी किसान भाइयों को ये संदेश देना चाहूंगा कि खरीफ के बाद जो रबी की तैयारी है वो हमारी आने वाली फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल,
0: तो आप सोच समझकर आप उसकी तैयारी करें, समय से बुआई करें ताकि उत्पादन बेहतर हो और फसल है वो आपको सुरक्षित रहे और अच्छा उत्पादन आपको मिल सके।
1: बिल्कुल, तो सर मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: जी धन्यवाद।
1: जिनकी बहन बोलो अवड़े अपने वैस में मांगीलाल जी जुड़े तक कहा था ने एना आपड़ा ने घना असल तरीका तकी घना आकाने वाते बताड़ी है, जिनकी एना आपड़ा ने बताड़ी है कि आपड़ा खरीफ ने बाद सप्ते की पहला रबी ने फसल ने तैयारी कर भी है, तो आपड़ा खेत में स्थिति हमस भी होगा, मिट्टी परीक्षण में प्राथमिकता भी होगा, फसल में चुनाव होसी हमजी ने करवो पड़ेगा, फसल चक्र में आपड़ा हमजी सका, बीजा ने तैयारी टाइम माते करवी होगा, बीज उपचार करवो होगा, ने खाद भी बढ़ावी ने आपड़ा ने पहले तक किस रखो होगा। आशा करो हो कि हंगरी वाते आपने कमी होगा, क्योंकि अभी टाइम थे गयो है आपने अनस कार्यक्रम तक की सूटा पड़वानो, तो सूटा तो पड़ो पर साथ पहले हंगरी ना एक और गीत नंबर पड़ा सूटा।

मनु अनस्ते थाते हुए कार्यक्रम खेती बाड़ी तक की अमे पड़ा सुटा। आशा करो हो कि ऐसे कार्यक्रम में हमारी अब तक की जो भी बातें रही हैं आपने गम्य होंगा। तो आपने हमारे आज का कार्यक्रम केव लगे इन बारे में आप राय सुझाव अमने आली सको अमर अड़ा पता मे। हमारे पतु है कार्यक्रम खेती बाड़ी वाग रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपवा वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारो पिन कोड नंबर है 3200001। अजी वधारे जानकारी बल्लो आप मने फोन करी शको अमर अड़ा फोन नंबर माते। हमारो फोन नंबर है 9414082643। तो बहन बोलो फिर मलंगा अनस कार्यक्रम में अनस टाइम माते एक नया विषय निहाती तारुदी। राम राम राम राम।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, आपका पसंदीदा कार्यक्रम सच्चा बचपन, जहां हम बच्चों की खुशियों, उनकी जरूरतों, उनकी सुरक्षा और उनके उज्जवल भविष्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर बात करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: हर बच्चे की आंखों में एक सपना होता है। कोई कशिश डॉक्टर बनकर लोगों का इलाज करना चाहता है, तो कोई शिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ाना चाहता है। कोई खिलाड़ी बनकर देश का नाम रोशन करना चाहता है, तो कोई कलाकार बनकर अपनी प्रतिभा दुनिया के सामने लाना चाहता है।
1: जी बिल्कुल,
0: लेकिन क्या कशिश हर बच्चे को अपने सपनों को पूरा करने का समान अवसर मिल पाता है? आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि बच्चों के सपनों को साकार करने की राह कैसे आसान बनाई जा सकती है और हमें किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो बातें इस विषय को लेकर श्रोता साथियों से आज हमारी ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना दोस्तों को पहले ही एक प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले विषय बता चुके हैं, बातचीत की शुरुआत भी हो चुकी है श्रोता साथियों कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि बच्चों के सपनों को साकार करने की राह हम कैसे बनाएं।
1: बिल्कुल।
0: तो अंजलि जी, यहाँ पर हमारे श्रोता साथियों से हम कहना चाहेंगे कि बच्चों के सपनों को समझना हमारे लिए पहले जरूरी है, क्योंकि बच्चों के सपने उनके मन की इच्छाओं, रुचियों और उनकी कल्पनाओं से जन्म लेते हैं। कई बार साथियों बच्चे छोटी छोटी बातों में अपनी बड़ी इच्छाएं व्यक्त कर देते हैं। माता पिता और परिवार की ऐसे में जिम्मेदारी है कि वे बच्चों की बातों को ध्यान से सुने और उनकी रुचि को समझने का प्रयास करें।
1: बिल्कुल।
0: बताना चाहेंगे साथियों कि बच्चे की इच्छा को बिना जाने उसके भविष्य का फैसला कर देना उसके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हर बच्चा अलग होता है, किसी की पढ़ाई में रुचि होती है, किसी को खेल पसंद होता है, तो किसी को चित्रकारी, संगीत या नई चीजें बनाना अच्छा लगता है। अंजलि जी, इसलिए बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से करने के बजाय उनकी अपनी क्षमताओं को पहचानना हमें चाहिए। जब बच्चों को लगता है कि परिवार उनकी बात समझता है तो वे अपने सपनों के बारे में खुलकर बात करने लगते हैं।
1: बिल्कुल। यही बात करें कशिश के परिवार का सहयोग बच्चों को आगे बढ़ाता है। तो श्रोता साथियों, बच्चों के सपनों को पूरा करने में परिवार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है।
0: बिल्कुल।
1: परिवार का सहयोग केवल फीस भरने या किताबें खरीदने तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों को समय देना, उनकी समस्याएं सुनना और कठिन परिस्थितियों में उनका हौसला बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: जब कोई बच्चा असफल होता है तब उसे डांटने या उसका मजाक उड़ाने के बजाय दोबारा प्रयास करने के लिए हमें उसे प्रेरित करना चाहिए। क्योंकि कई बार परिवार आर्थिक कठिनाइयों के कारण बच्चों के सपनों को लेकर चिंतित रहते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों से बातचीत करके उपलब्ध संसाधनों के अनुसार रास्ते खोजे जा सकते हैं। सरकारी विद्यालयों, छात्रवृत्तियों, पुस्तकालयों और उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं की जानकारी लेकर बच्चों को आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है।
0: बिल्कुल।
1: जरूरी है कशिश की आर्थिक परेशानी के कारण बच्चे की प्रतिभा को शुरुआत में ही न रोक दिया जाए।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के आगे अगर बात करें कि लड़के और लड़कियों को समान अवसर हम कैसे दें, तो आज भी कई जगह बच्चों के भविष्य को लेकर लड़के और लड़कियों के बीच अंतर किया जाता है। लड़कों को श्रोता साथियों अपनी पसंद का कलर चुनने की छूट मिल जाती है, जबकि लड़कियों से कई बार उनकी इच्छाओं को छोड़ने की अपेक्षा की जाती है।
1: बिल्कुल।
0: और यही सोच बच्चों की प्रतिभा और उनके आत्मविश्वास दोनों को प्रभावित करती है। अंजलि जी, हम कहना चाहेंगे कि परिवार और समाज को ये बात समझनी होगी कि सपनों का कोई लिंग नहीं होता। लड़की भी वैज्ञानिक, खिलाड़ी, अधिकारी या उद्यमी बन सकती है और लड़का भी अपनी रुचि के अनुसार कला, संगीत या किसी अन्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है।
1: बिल्कुल।
0: बच्चों को उनकी योग्यता, मेहनत और रुचि के आधार पर अवसर मिलने चाहिए। समान अवसर मिलने पर बच्चे अपनी क्षमताओं को बेहतर तरीके से पहचान सकते हैं। अंजलि जी
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यही बात करते हैं शिक्षा और सही मार्गदर्शन के महत्व की।

0: श्रोता साथियों, सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए सही दिशा और लगातार प्रयास भी आवश्यक है।
1: बिल्कुल,
0: बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार पढ़ाई और करियर की जानकारी दी जानी चाहिए। शिक्षक, अभिभावक और समुदाय के अनुभवी लोग बच्चों से बात कर सकते हैं कि किस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए किन योग्यताओं, कौशल और तैयारियों की आवश्यकता होती है। विद्यालयों में बच्चों को केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए ही प्रेरित नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें सवाल पूछने, नई चीजें सीखने, रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने और अपनी गलतियों से सीखने का अवसर भी मिलना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: यदि किसी बच्चे को किसी विषय में परेशानी हो रही है तो उसे कमजोरी बताकर उसे हतोत्साहित करने के बजाय उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि सही मार्गदर्शन बच्चों को अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने का आत्मविश्वास भी देता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि श्रोता साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें बहुत अच्छी चल रही हैं, ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी क्यों ना हमारे साथियों को यहाँ पर एक और गीत हम सुनवाएं।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।
2: चकरक चीचा चो चकलो रम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडी गिडी गिडी गो इडी पाई विडी पाई चिकी चक चो गिली गिली मल सुलु सुलु मल मकनक हुकु बुकुरे टुकु बुकुरे चकलक बिको चिको सिली सिली सिली गो बगड़ दुम चकड़ दुम चिकी चक चो।

0: साथियों, गीत के बाद हम फिर शुरू करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि किस तरीके से बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए, उनके लक्ष्य की राह तक पहुंचाने के लिए शिक्षक और माता पिता किस तरीके से उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ये बात आती है कशिश कि हर बच्चे की सफलता की यात्रा एक जैसे नहीं होती। किसी को जल्दी सफलता मिलती है तो किसी को अपने लक्ष्य तक पहुँचने में अधिक समय लगता है।
1: बिल्कुल,
0: कई बार बच्चे परीक्षा में कम अंक लाते हैं, प्रतियोगिता में हार जाते हैं या किसी काम को पहली बार में पूरा नहीं कर पाते। ऐसी परिस्थितियों में उन्हें यह समझना जरूरी है कि असफलता उनके सपनों का अंत नहीं है। बच्चों को छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। जब वे किसी कठिन काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो उनकी मेहनत की सराहना करनी चाहिए। इससे उनमें धैर्य, आत्मविश्वास और दोबारा प्रयास करने की आदत विकसित होती है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, बच्चों को हर समय सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का दबाव डालने के बजाय उन्हें अपनी गति से सीखने और आगे बढ़ने का अवसर भी देना चाहिए।
2: जी हाँ साथियों, यही अगर बात करें अंजलि जी कि बच्चों के सपनों को पूरा करने में समुदाय की क्या भूमिका हो सकती है, तो बच्चों का भविष्य केवल उनके परिवार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि पूरा समुदाय भी इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दे सकता है।
1: जी जी,
2: जैसे कि गांव, मोहल्ले और समाज में बच्चों के लिए पढ़ने की जगह, खेलकूद की सुविधाएं, पुस्तकालय और रचनात्मक गतिविधियों के अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा सकते हैं। स्थानीय स्तर पर बच्चों की प्रतिभा पहचानने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित किए जा सकते हैं। साथ ही समुदाय के लोग जरूरतमंद बच्चों को किताबें उपलब्ध कराने, पढ़ाई में सहायता देने और छात्रवृत्ति जैसी सुविधाओं की जानकारी पहुंचाने में भी मदद कर सकते हैं।
1: बिल्कुल
2: श्रोता साथियों, यदि कोई बच्चा किसी विशेष क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो उसे उचित प्रशिक्षण या फिर मार्गदर्शन दिलाने का प्रयास भी समुदाय के द्वारा किया जा सकता है।
1: जी हाँ,
2: इस तरह सामूहिक सहयोग से अंजलि जी, उन बच्चों के लिए भी अवसर तैयार किए जा सकते हैं जिनके परिवार के पास सीमित संसाधन है।
0: बिल्कुल, ये बात आती है कि बच्चों के भविष्य से जुड़े निर्णय लेते समय उनकी राय सुनना भी जरूरी है। जी हाँ श्रोता साथियों, माता पिता अपने अनुभव के आधार पर बच्चों को सलाह दे सकते हैं, लेकिन उनकी इच्छाओं और रुचियों को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बच्चों को अपनी बात रखने, विकल्पों को समझने और अपनी पसंद के बारे में सोचने का अवसर मिलना चाहिए। कशिश, बच्चों को उचित मार्गदर्शन के साथ निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है तो उनमें जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। वे अपने लक्ष्य के प्रति अधिक गंभीर होते हैं और उनके लिए मेहनत करना सीखते हैं। बच्चों की बात सुनने का अर्थ यह नहीं है कि उन्हें हर निर्णय अकेले लेने दिया जाए, बल्कि उनके विचारों का सम्मान करते हुए सही और सुरक्षित रास्ता चुनने में भी मदद करनी चाहिए।
2: जी हाँ दिलीप जी, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बच्चों के सपनों को साकार करने की राह केवल बड़े विद्यालयों, महंगी किताबों या फिर आर्थिक संसाधनों से नहीं बनती। इस राह की शुरुआत घर में होने वाली छोटी छोटी बातचीत, बच्चों की बात ध्यान से सुनने, उनकी मेहनत की सराहना करने और उसे अपनी क्षमता पहचानने का अवसर देने से भी हो सकती है। साथियों, जब बच्चा अपने परिवार में सुरक्षित महसूस करता है, अपनी बात कह पाता है और गलतियां करने के बाद भी उसे आगे बढ़ने का अवसर मिलता है तो उसके भीतर अपने भविष्य को लेकर विश्वास मजबूत हो जाता है।
1: बिल्कुल,
2: हमें यह भी समझना होगा दोस्तों कि हर बच्चे की सफलता का अर्थ एक जैसा नहीं होता। किसी बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा प्राप्त करना सबसे बड़ा सपना हो सकता है तो किसी के लिए खेल के मैदान में अपनी पहचान बनाना या अपने हुनर से परिवार का सहारा बनना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
1: जी जी,
2: हमें बच्चों के सपनों को अपनी अधूरी इच्छाओं से नहीं जोड़ना चाहिए। उनके सामने हमें नए नए रास्ते खोलने चाहिए, न कि अपनी अपेक्षाओं का बोझ रखकर उनके रास्ते सीमित कर देने चाहिए। साथियों,
1: जी हाँ,
2: बच्चों को ये भरोसा हमारे द्वारा मिलना चाहिए कि उनकी रुचि, उनकी मेहनत और उनकी पहचान का सम्मान किया जा सकता है।
0: बिल्कुल कशिश, हम ऐसा परिवार और समाज बनाने का संकल्प ले जहाँ कोई बच्चा आर्थिक परेशानी, भेदभाव, डर या मार्गदर्शन की कमी के कारण अपने सपनों से दूर न हो। जहाँ बच्चे सवाल पूछ सके, अपनी प्रतिभा दिखा सके और जरूरत पड़ने पर सहायता मांग सके।
2: बिल्कुल,
0: याद रखिए श्रोता साथियों कि आज बच्चों को दिया गया प्रोत्साहन, शिक्षा और सहयोग आने वाले कल की मजबूत नींव है। बच्चों के सपनों को सुनिए, उनकी उड़ान को सराहना दीजिए और उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने का अवसर दीजिए, क्योंकि हर बच्चे के भीतर एक बेहतर भविष्य बनने की क्षमता छिपी होती है। इसलिए हमें बच्चों के सपनों को समझना है और उन्हें सही राह देनी है, क्योंकि जब तक हम बच्चों को इन सारी चीजों को लेकर समझाएंगे नहीं, मार्गदर्शन नहीं देंगे, सही क्या है, गलत क्या है, उसकी राय नहीं देंगे, तब तक बच्चे जो है वो अपने लक्ष्य को अच्छे से प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए माता पिता, शिक्षक का बच्चों के सपनों को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान होता है, वही उनके मार्गदर्शक होते हैं।
2: जी हाँ।
0: आशा करते हैं कशिश के आज कार्यक्रम में होने वाली जो बातचीत है वो श्रोता साथियों को बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।
2: बिल्कुल अंजलि जी।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अब ये समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातचीत रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वावे रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3200001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेश्वर को। नमस्कार।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो बागर रेडियो 90.8 FM।
1: लेकर हाजिर है श्रोताओं कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातचीत का विषय रहने वाला है कि हम सुनते सबकी है लेकिन समझते किसकी है।
0: बिल्कुल,
1: जैसा कि कशिश आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हम एक सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या

0: आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से अपनी बात कह रहे हो और सामने वाला आपकी बात सुन तो रहा हो लेकिन उसे समझने की कोशिश ही ना कर रहा हो? क्या कभी आपने महसूस किया है कि आप अपने मन की बात किसी को बताना तो चाहते हो लेकिन आपको डर लगता है कि कहीं वो आपको गलत न समझ ले? और क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी दूसरे की बात सुनी लेकिन उसे समझने से पहले ही उसके बारे में अपनी राय बना ली? अगर ऐसा आपके साथ हुआ है श्रोताओं, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में ये समस्या हमारे परिवारों में, दोस्तों के बीच, स्कूल कॉलेजों में, कार्यस्थल पर और समाज में भी दिखाई देती है।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि कशिश, हम दिन भर न जाने कितने लोगों से बात करते हैं कशिश, घर में माता पिता से बात करते हैं, भाई बहनों से, दोस्तों से, सहकर्मियों से और मोबाइल फोन के माध्यम से अनजान लोगों से भी। हम दूसरों की बातें भी सुनते हैं, अपनी बातें भी बताते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट भी पढ़ते हैं, वीडियो भी देखते हैं और अलग अलग विचारों से रूबरू भी होते हैं।
1: जी हाँ।
0: लेकिन श्रोताओं, क्या हमने कभी खुद से पूछा है कि इन सबके बीच हम वास्तव में कितने लोगों को समझ पाते हैं?
1: बिल्कुल,
0: तो आज इन्हीं बातों को लेकर हम हाजिर होंगे, लेकिन शुरुआत में हम सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत।
1: जी बिल्कुल, तो दोस्तों आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: भारतीय इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय आपको बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि हम सुनते सबके हैं लेकिन समझते किसके हैं, ये हमें जानना है। जागृति जी, सुनना और समझना दोनों अलग अलग बातें होती हैं। हम देखते हैं कि सुनने का मतलब है किसी की कही हुई बात को हमारे कानों तक पहुँचाना, जबकि समझने का अर्थ होता है उस बात के पीछे छिपे भाव, परिस्थिति, अनुभव और जरूरत को महसूस करने की कोशिश करना।
1: बिल्कुल।
0: कई बार कोई व्यक्ति कहता है कि वह ठीक है लेकिन उसके चेहरे पर उदासी हमें दिखाई देती है। कोई युवा कहता है कि उसे अपने भविष्य की चिंता है लेकिन लोग उसे गैर जिम्मेदार कहकर उसकी बात को टाल देते हैं। कोई बच्चा अपनी परेशानी बताना चाहता है साथियों लेकिन उसे ये कहकर चुप करा दिया जाता है कि अभी तुम छोटे हो, तुम्हें क्या ही पता चलता होगा। कोई बुजुर्ग अपने पुराने अनुभव साझा करना चाहते हैं लेकिन नई पीढ़ी उन्हें पुरानी सोच का व्यक्ति समझकर अनसुना कर देती है।
1: जी हाँ,
0: यानी कि जागृति जी, ऐसे में सवाल हम सभी के सामने ये है कि जब हम सब बोल रहे हैं, सब सुन भी रहे हैं, तो फिर एक दूसरे के बीच गलतफहमियां इतनी क्यों बढ़ रही है? श्रोता साथियों, शायद इसकी एक बहुत बड़ी वजह है और वो ये है कि हम दूसरों की बात समझने से पहले उसका जवाब तैयार करने लगते हैं। हम सामने वाले की पूरी बात सुनने के बजाय ये सोचने लगते हैं कि अब हमें क्या कहना है।
1: बिल्कुल।
0: कभी हम अपनी सोच को सही साबित करने लग जाते हैं तो कभी कभी सामने वाले की बात को जागृति जी हम अपने अनुभवों के आधार पर ही गलत मान लेते हैं।
1: जी हाँ,
0: इसलिए आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा जो विषय है कि हम सुनते सबकी हैं लेकिन समझते किसकी हैं, ये हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल कशिश, तो आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं। हमारी बातचीत में समझ की कमी क्यों आ रही है, युवाओं के जीवन में इसका क्या असर पड़ रहा है और हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करके दूसरों को बेहतर तरीके से कैसे समझ सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो आइए श्रोताओ, शुरू करते हैं आज की ये खास चर्चा को। जैसा कि कशिश, किसी की बात सुनने के लिए हमें केवल कुछ समय चाहिए होते हैं लेकिन किसी को समझने के लिए हमें समय के साथ धैर्य, संवेदनशीलता और खुले विचारों की भी जरूरत होती है।
0: बिल्कुल।
1: मान लीजिए श्रोताओं कि एक युवा अपने परिवार से कहता है कि वो अपने करियर में कुछ अलग करना चाहता है। वो पारंपरिक रास्ते की बजाय अपनी रुचि के अनुसार किसी दूसरे क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है। परिवार के सदस्य उसकी बात सुनते हैं लेकिन तुरंत कहते हैं कि इस क्षेत्र में भविष्य नहीं है। लोग क्या कहेंगे, तुम्हें वही करना चाहिए जो हम कह रहे हैं। या परिवार ने उसकी बात सुनी लेकिन क्या उसकी रुचि, उसके सपने और उसकी योजनाओं को समझने का प्रयास किया?
0: बिल्कुल।
1: हो सकता है श्रोताओं की परिवार की चिंता गलत न हो। माता पिता अपने बच्चों को सुरक्षित भविष्य देना चाहते हैं, ये हम सभी जानते हैं। वहीं दूसरी ओर युवा भी अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं। समस्या तब पैदा होती है श्रोताओं जब दोनों पक्ष एक दूसरे की बात को समझने की बजाय अपनी बात मनवाने में लग जाते हैं।
0: जी,
1: अगर परिवार युवा से पूछे कि तुम्हारी योजना क्या है, तुमने क्षेत्र के बारे में क्या जानकारी जुटाई है और हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं, तो बातचीत का परिणाम अलग हो सकता है।
0: बिल्कुल।
1: इसी तरह युवा भी परिवार की चिंताओं को समझने का प्रयास करे श्रोताओं, तो दोनों के बीच बेहतर तालमेल बन सकता है।
0: जी हाँ जागृति जी, और इस उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं कि हर असहमति का अर्थ दुश्मनी नहीं होता।
1: बिल्कुल।
0: कई बार श्रोता साथियों, दो लोग एक दूसरे का भला तो चाहते हैं लेकिन उनकी सोच, अनुभव और परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। ऐसे में समझदारी का मतलब हर बात से सहमत होना नहीं होता बल्कि असहमत होते हुए भी एक दूसरे की बात का सम्मान करना है।
1: बिल्कुल कशिश।
0: जैसा कि जागृति जी, हमारे समाज में अक्सर ये मान लिया जाता है कि जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है वही अपनी बात अच्छी तरह रखता है।
1: जी हाँ,
0: लेकिन वास्तव में अच्छा संवाद केवल बोलने से नहीं बनता श्रोताओं। उसमें सुनने की इच्छा, सवाल पूछने का तरीका और सामने वाले के विचारों को जगह देने की क्षमता भी शामिल होती है। इसलिए हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि क्या हम बातचीत इसलिए करते हैं कि हमें दूसरों को समझना है या इसलिए करते हैं कि हमें अपनी बात सही साबित करनी है।
1: जी हाँ कशिश, और हम देखते हैं कि आज का युवा ऐसी दुनिया में जी रहा है जहाँ जानकारी की कमी नहीं है। मोबाइल है, फोन है, इंटरनेट है और इन सब के माध्यम से कुछ ही सेकंड में हम दुनिया के किसी भी कोने की खबर जान सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: श्रोताओं, सोशल मीडिया पर हजारों लोगों के विचार पढ़ सकते हैं और अपनी बात भी आसानी से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं।
0: जी, जी।
1: लेकिन इतनी अधिक जानकारी और संवाद के बावजूद क्या हम एक दूसरे को पहले से बेहतर समझ रहे हैं? ये सवाल सोचने लायक है। आज हम देखते हैं कशिश की, कई बार किसी संदेश का जवाब देर से आने पर हम मान लेते हैं कि सामने वाला हमें नजरअंदाज कर रहा है।
0: बिल्कुल।
1: कोई हमारी पोस्ट पर प्रतिक्रिया नहीं देता है तो हमें लगता है कि उसे हमारी परवाह नहीं है। कोई हमारी बात से सहमत नहीं होता तो हम उसे गलत समझने लगते हैं।
0: जी हाँ,
1: की वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग भी हो सकती है। हो सकता है श्रोताओं के सामने वाला व्यस्त हो, किसी परेशानी में हो या उसे जवाब देने के लिए थोड़ा समय चाहिए हो। तो श्रोताओं, हम आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि इसका अर्थ ये नहीं कि मोबाइल या सोशल मीडिया खराब है। ये संवाद के महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन उनका उपयोग करते समय हमें समझना होगा कशिश कि हर बातचीत का समाधान संदेश भेज कर नहीं किया जा सकता।
0: बिल्कुल,
1: कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें सामने बैठकर शांति से समझना अधिक बेहतर होता है।
0: जी हाँ जागृति जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि युवा साथियों से हम कार्यक्रम के माध्यम से बातें कर ही रहे हैं और ये बातें हमारी आगे भी ऐसे ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी क्यों ना यहाँ पर श्रोता साथियों को एक और प्यारा सा गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथी सुन लेते हैं यह गीत।

0: साथ ही इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि हमारी बातें चल रही थी कि हम सुनते सबकी है लेकिन समझते किसकी है, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की थी। वही आप जानते हैं कि दोस्तों के बीच गलतफहमी और अधूरी बातें किस तरह से है, यानी कि कशिश रिश्ता हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों के साथ हम खुशियां बांटते हैं, परेशानियां बताते हैं और कई बार ऐसी बातें भी साझा करते हैं जिन्हें परिवार से कहने में हमें झिझक होती है, लेकिन दोस्ती में भी गलतफहमी पैदा हो सकती है। इसीलिए आपसे कहना चाहेंगे श्रोता साथी इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हो सकता है कि जिस व्यक्ति को हम घमंडी समझ रहे हों वो वास्तव में संकोची हो, जिसे हम लापरवाह मान रहे हो वो किसी परेशानी से गुजर रहा हो, और जिसे हम कमजोर समझ रहे हो वो अपनी कठिन परिस्थिति से निकलने के लिए लगातार प्रयास कर रहा हो। इसलिए किसी को समझने से पहले उसके बारे में अपनी राय बनाने में जल्दबाजी हमें नहीं करनी चाहिए।
1: जी हाँ जागृति जी। साथी श्रोता साथियों, क्या हम केवल वही सुनते हैं जो हमें अच्छा लगता है, ये सवाल खुद से भी हमें पूछना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि जब कोई हमारी तारीफ करता है तो हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे विचारों का समर्थन कर रहा है, तो हम उसकी बात ध्यान से सुनते हैं। लेकिन जब कोई हमारी गलती बताता है जागृति जी, तो हमारी सोच उससे अलग हो जाती है।
0: बिल्कुल,
1: और हम उसे धैर्य से नहीं सुन पाते। ऐसे में श्रोता साथियों, हो सकता है कि हमारा इरादा उसे दुख पहुंचाने का न रहा हो, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि हमारे व्यवहार का उस पर क्या असर पड़ा। हम अपनी बात स्पष्ट कर सकते हैं, लेकिन सामने वाले की भावना को बिना सुने खारिज कर देना उचित बात नहीं होती।
0: बिल्कुल,
1: हमारे युवा साथियों को ये सीखना चाहिए जागृति जी कि अपनी राय रखना जरूरी है, लेकिन अपनी राय पर दोबारा विचार करने के लिए तैयार रहना भी उतना ही जरूरी होता है।
0: जी हाँ।
1: समझदार व्यक्ति वो नहीं है जिसे हर सवाल का जवाब पता हो, बल्कि वह है जो जरूरत पड़ने पर दूसरों से सीखने के लिए तैयार हो।
0: जी हाँ कशिश, और अब सवाल ये है कि हम अपने व्यवहार में ऐसा क्या बदलाव करें जिससे हमारी बातचीत बेहतर हो सके और हम दूसरों को अधिक अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो सबसे पहला बदलाव है, बात काटने की आदत को हमें कम करना है, जवाब देने से पहले समझने की कोशिश करनी है, सवाल पूछना है, आरोप नहीं लगाना है।
1: बिल्कुल,
0: और हर समस्या का तुरंत समाधान देने की कोशिश नहीं करनी है। साथ ही अपनी राय को अंतिम सच न माने, बातचीत के लिए मोबाइल को थोड़ी देर दूर रख दे, अपनी गलती को स्वीकार करना सीखिए, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अवसर दे। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरों को समझने की शुरुआत खुद को समझने से होती है।
1: बिल्कुल,
0: जब हम अपनी भावना, गुस्से, जल्दबाजी और पूर्वाग्रह को पहचानना सीखते हैं कशिश, तब हम दूसरों की बात को और अधिक धीरे से सुन पाते हैं। इन बदलावों के लिए हमें किसी विशेष प्रशिक्षण या बड़े साधन की आवश्यकता नहीं है।
1: जी,
0: जरूरत है तो केवल अपने व्यवहार पर थोड़ा ध्यान देने की और हर दिन बेहतर संवाद की दिशा में एक कदम बढ़ाने की।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसलिए हमारे युवा साथियों को एक छोटी सी सीख याद रखने की आवश्यकता है। जैसे कि दोस्तों, कल्पना कीजिए कि एक दिन हम सब तय कर लें कि किसी की बात पूरी सुने बिना उसके बारे में निर्णय नहीं करेंगे।
0: बिल्कुल,
1: किसी की परेशानी को छोटा नहीं समझेंगे, किसी की असहमति को अपना अपना नहीं मानेंगे और अपनी बात रखने के साथ साथ दूसरों की बात के लिए भी जगह बनाएंगे।
0: जी हाँ,
1: ऐसे में प्रश्न है कि क्या हमारी बातचीत में बदलाव नहीं आएगा? शायद जागृति जी, घर में छोटी छोटी बातों पर होने वाले झगड़े कम हो सके, दोस्तों के बीच गलतफहमियों को दूर करने का अवसर हमें मिले और युवा अपने सपनों और परेशानियों के बारे में खुलकर बात भी कर सके।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही हमें ये समझना होगा कि किसी को

0: समझना एक दिन का काम नहीं है। कभी हम किसी की बात सही समझेंगे तो कभी गलती करेंगे और कभी हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत महसूस होगी।
1: बिल्कुल
0: महत्वपूर्ण तो ये है कि हम सीखने की इच्छा को बना कर रखें।
1: जी हाँ कशिश, और साथ ही हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कि श्रोता साथियों हम सबकी बातें सुनते तो हैं लेकिन कई बार हमें समझने से चूक जाते हैं और इसी वजह जल्दबाजी, पहले से बनी हुई राय, अपनी बात सही साबित करने की इच्छा और सामने वाले की परिस्थिति को समझने के लिए समय न निकालना हो सकती है। आज के कार्यक्रम से बस इतना याद रखिए श्रोताओं कि किसी को सुनना एक अच्छी शुरुआत है लेकिन उसकी बात को समझने की कोशिश करना एक बेहतर रिश्ता बनाने की दिशा में अपना महत्वपूर्ण कदम है। पहली बार जब आपको आपके माता पिता कोई सलाह दे श्रोताओं तो उनकी चिंता को समझने की आप कोशिश कीजिएगा। जब आपका कोई दोस्त अपनी परेशानी आपको बताए तो उसकी बात पूरी सुनिएगा। जब कोई व्यक्ति आपसे असहमत हो तो उसे गलत ठहराने से पहले उसके विचारों को जानिएगा। और जब कोई आपकी बात न समझ पाए तो गुस्सा करने के बजाय शांतिपूर्वक अपनी बात दोबारा समझाने का प्रयास करना, क्योंकि कई बार कशिश रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए हमें बड़े से बड़े वादों की नहीं बल्कि थोड़े से धैर्य, कुछ अच्छे सवालों और ध्यान से सुनने की जरूरत होती है। और अब आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेना चाहेंगे पर अंत में आपसे कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि बातें तो हर कोई करता है पर एहसास समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ सुन लेना काफी नहीं है, दिल से सुनना भी जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: राय अलग हो सकती है हमारी पर सम्मान बना रहना बहुत जरूरी है। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब समझने की कोशिश जारी हो।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो इन्हीं आशाओं के साथ अब हम कार्यक्रम से विदा लेना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं श्रोता साथियों कि आज के इस कार्यक्रम में जो बातचीत रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी, तो विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले आपको सुनाना चाहेंगे यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत।
1: बिल्कुल।

साथ ही इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज बाबर रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को। नमस्कार।

अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्वों में करो भोजन। हो गए क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी तो की एनीमिया रोग अपने नहीं थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, आ सब अनियमित लक्षण है। होवे भाई बहनों, आ लक्षण आपने में देखा तो आपने अपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाएंगे एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे। आंगनवाड़ी केंद्र व राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार में गोली निःशुल्क मिले है। होवे एनीमिया तक की बचा बनने आपने में खवाना में दाल पत्तेदार सब्जी गुड़ बाजरा तिल नींबू ने संतरा गोभी तरबूज आंवला टमाटर नु सेवन करवो सुवे। होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जियन दार खंगा तो एनीमिया तक की बची सकंगा। वागा रेडियो एवं वानतरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाघ रेडियो।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वग रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिर है श्रोता कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी से मजबूत गांव को लेकर। अंजलि, जिस गांव की महिलाएं जागरूक होती है उस गांव की नींव मजबूत होती है। जिस गांव की महिलाएं निर्णय लेने में भागीदारी करती है उस गांव का विकास केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे समुदाय तक पहुंचता है। और जिस गांव की महिलाएं अपने अधिकारों कर्तव्य और क्षमताओं को पहचान लेती है उस गांव को आत्मनिर्भर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए श्रोता साथियों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही बात करने वाले हैं ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी से गांव किस तरह से मजबूत बन सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी बातें ढेर सारी रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआती दस्तूर को निभाते हुए क्यों न हम हमारे श्रोता साथियों को एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथ ही सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं ग्रामीण युवाओं की भागीदारी से मजबूत गांव को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: तो अंजलि, हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, गाँव की कल्पना करते ही हमारे मन में खेत खलिहान पशुधन कुएं तालाब हरे भरे पेड़ लोकगीत और आपसी सहयोग की तस्वीर उभरती है। अंजलि,
1: बिल्कुल,
0: इस तस्वीर में महिलाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। महिलाएं घर संभालती हैं, बच्चों की देखभाल करती है, खेती किसानों में सहयोग देती है, पशुओं की देखभाल करती है और परिवार की अनेक आवश्यकताओं को पूरा करती है। इसके साथ ही वे स्थानीय परंपरा, लोक कला, भाषा, संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान को भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, लेकिन एक सवाल हमारे सामने आता है कि क्या गाँव के विकास में महिलाओं के योगदान को उतना महत्व मिलता है जितना मिलना चाहिए? क्या गांव की योजनाएं बनाते समय महिलाओं की राय सुनी जाती है? क्या ग्राम सभा, पंचायत और सामुदायिक बैठकों में महिला अपनी बात खुलकर रख पाती हैं? श्रोता साथियों, इन सवाल पर विचार करना इसलिए जरूरी है क्योंकि गांव का विकास तभी संपूर्ण होगा जब उसमें गांव के प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होगी। महिलाओं को केवल जिम्मेदारियां निभाने तक सीमित न रखकर उन्हें निर्णय लेने, नेतृत्व करने और विकास की दिशा तय करने के अवसर भी मिलने चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए आज हम कार्यक्रम में इन्हीं विषय पर ढेर सारी बातों से श्रोता साथियों को अवगत करवा रहे हैं कि किस तरीके से ग्रामीण जीवन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है।
0: जी हाँ अंजलि, जैसे कि ग्रामीण जीवन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर हमारे श्रोता साथियों को हम बताएं, तो साथियों, भारत की जीवन शैली में महिलाओं का योगदान बहुत व्यापक है। हम देखते हैं कि सुबह घर के कामकाज से लेकर खेतों में मेहनत करने तक, पशुओं की देखभाल से लेकर परिवार के भोजन और बच्चों की शिक्षा तक महिलाएं अनेक जिम्मेदारी निभाती है। कई महिलाएं जंगल से लकड़ी और चारा लाने, पानी की व्यवस्था करने, बीजों को संभालने तथा फसल की बुवाई और कटाई में भी योगदान देती है। महिलाओं के पास गांव के जीवन से जुड़ा हुआ व्यवहारिक ज्ञान होता है। वे जानते हैं कि किस मौसम में कौन सी फसल अच्छी होती है, पशुओं की देखभाल कैसे करनी है, भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है और पानी का उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। इसके बावजूद हम देखते हैं कि कई बार उनके काम को परिवार की सामान्य जिम्मेदारी मानकर उसका आर्थिक और सामाजिक महत्व कम आंका जाता है। हमें ये समझना होगा श्रोता कि महिलाओं का श्रम केवल घर तक सीमित नहीं है बल्कि वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज की नींव का हिस्सा है। अगर गांव की महिलाओं को अपनी योग्यता दिखाने, नए कौशल सीखने और निर्णय लेने के अवसर मिले तो उनके अनुभव का लाभ पूरे गांव को मिल सकता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, यही बात करते हैं कि गांव के विकास में महिलाओं की भागीदारी का क्या अर्थ है। तो श्रोता साथियों, महिलाओं की भागीदारी का अर्थ केवल किसी बैठक में उपस्थित होना नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ अपनी राय रखना, समस्याओं की पहचान करना, समाधान सुझाना और विकास से जुड़े निर्णयों में सक्रिय भूमिका निभाना है।
0: बिल्कुल।
1: उदाहरण के लिए, गांव में पेयजल की समस्या है, यदि योजना बनाते समय उन महिलाओं से चर्चा की जाए तो प्रतिदिन पानी की व्यवस्था करती है तो समस्याओं को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। इसी प्रकार विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति, स्वास्थ्य केंद्र की सुविधाएं, गांव की सफाई, सड़क, बिजली, सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा जैसे विषयों पर श्रोता साथियों महिलाओं के सुझाव उपयोगी हो सकते हैं। जब महिलाएं विकास योजना में भाग लेती हैं, तो योजनाओं में परिवारों की वास्तविक आवश्यकताओं को शामिल करने की संभावना बढ़ती है।
0: बिल्कुल।
1: इससे जागृति जी, संसाधनों का बेहतर उपयोग और सामुदायिक सहयोग मजबूत हो सकता है और सच्चा स्वराज वही है जिसमें गाँव के लोगों को अपने गांव के विकास की दिशा तय करने का अवसर मिले और महिलाओं की आवाज भी निर्णयों में बराबर महत्व हो।
0: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम बताएं कि ग्राम सभा और पंचायत में महिलाओं की आवाज को किस तरह से मजबूती मिलनी चाहिए। तो श्रोता, ग्राम सभा गांव के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने का महत्वपूर्ण मंच है। यहां गांव की जरूरतें, विकास कार्य और उपलब्ध संसाधनों पर विचार किया जाता है। हम देखते हैं अंजलि कि ग्रामीण महिलाओं को ग्राम सभा में भाग लेना होगा और अपनी समस्याओं तथा सुझावों को स्पष्ट रूप से रखना होगा।
1: बिल्कुल।
0: मान लीजिए श्रोताओं कि किसी गांव में लंबे समय से नाली की सफाई नहीं हो पा रही है, बरसात में पानी जमा हो जाता है और गंदगी फैलती है। महिलाएं ग्राम सभा में इस विषय को उठाकर नियमित सफाई की व्यवस्था बनाने का सुझाव भी दे सकती है अंजलि। इससे हम कह सकते हैं कि अगर महिलाओं की भागीदारी रहेगी तो उनकी बात सुनी भी जाएगी और उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार भी किया जाएगा।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है कि किस तरीके से महिलाओं की भागीदारी से गांव मजबूत बन सकते हैं, तो बातें निरंतर आगे और भी यूं ही कार्यक्रम के माध्यम से बनी रहेंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना ग्राम सभा और पंचायत में महिलाओं की आवाज को लेकर कि किस तरीके से महिलाओं की भागीदारी में होनी चाहिए, यही बात करते हैं शिक्षा और जागरूकता से सशक्त होती महिलाएं।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, शिक्षा महिलाओं को केवल पढ़ना लिखना ही नहीं सिखाती बल्कि अपने अधिकारों को समझने, सही जानकारी प्राप्त करने और आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेने की क्षमता भी देती है। एक शिक्षित महिला सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकती है, बैंक से जुड़े काम समझ सकती है, बच्चों की शिक्षा में सहयोग दे सकती है और स्वास्थ्य संबंधित सही जानकारी के आधार पर जागृति से परिवार को जागरूक कर सकती है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि शिक्षा के साथ साथ महिलाओं को मोबाइल और सुरक्षित उपयोग की जो जानकारी है वो होना भी जरूरी है, क्योंकि अभी का समय जो है वो हम देख रहे हैं कि डिजिटल हो गया है और इस समय में अगर महिलाओं को डिजिटल साक्षरता, कौशल प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम और ऐसी चीजों के बारे में पता होगा तो वो ऑनलाइन होने वाली धोखाधड़ी और कई ऐसी गंभीर चीजों से बच भी सकती हैं।
2: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ हम हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि महिलाओं को संगठित करने में स्वयं सहायता समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे समय में महिलाएं नियमित रूप से मिलती है, बचत करती है, आर्थिक विषयों पर चर्चा करती है और आजीविका से जुड़े अवसरों पर विचार भी करती है। श्रोता, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाएं स्थानीय जरूरतों के अनुसार कई गतिविधियां शुरू कर सकती है, जैसे कि सिलाई कढ़ाई और कपड़ों से संबंधित काम, पापड़, अचार, मसाले और अन्य खाद्य पदार्थ बनाना, हस्तशिल्प, बांस और स्थानीय सामग्री से उपयोगी वस्तुएं तैयार करना, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और कृषि आधारित गतिविधियां करना, स्थानीय उत्पादों की पैकिंग और बिक्री का विपणन करना। इन गतिविधियों के लिए केवल मेहनत ही पर्याप्त नहीं है, महिलाओं को गुणवत्ता, लागत, उचित मूल्य, बाजार की मांग और बचत की जानकारी भी मिलनी चाहिए। जब महिलाएं अपनी आय अर्जित करती है अंजलि और आर्थिक निर्णयों में भाग लेती है तो उनका आत्मविश्वास बढ़ सकता है, वे परिवार की जरूरतों को पूरा करने में अपना सहयोग देती है और गांव में रोजगार के लिए नए अवसर पैदा कर सकती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। वे खेतों में बीज बोने, निराई करने, फसल काटने, अनाज साफ करने और भंडारण जैसे कार्यों में योगदान देती है। पशुपालन में चारा पानी की व्यवस्था, दूध निकालने और पशुओं की देखभाल जैसे काम भी अनेक महिलाएं करती हैं।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन श्रोता साथियों, कई बार महिलाओं के कृषि संबंधित योगदान को उचित पहचान नहीं मिलती। उन्हें किसान के रूप में प्रशिक्षण, कृषि संबंधित जानकारी, उपकरणों और बाजार तक पहुंच के अवसर मिलने चाहिए, क्योंकि जागृति जी, जब उन्हें इन सारी चीजों के बारे में पता होगा तभी वह स्थानीय ज्ञान के साथ आधुनिक तकनीक की जो चीजें हैं उनको लेकर गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अपना योगदान दे सकती हैं।
2: जी हाँ अंजलि, जैसा कि जल, जंगल, जमीन और पर्यावरण संरक्षण के बारे में हम बात करें तो ग्रामीण जीवन प्रकृति पर निर्भर करता है। पानी, जंगल, जमीन, पशु पक्षी और खेती गांव की आजीविका का आधार है।
1: बिल्कुल,
2: इन संसाधनों के संरक्षण में महिलाओं की भागीदारी बहुत उपयोगी हो सकती है। कहना चाहेंगे श्रोताओं कि अगर गांव की महिलाएं मिलकर तय करें कि प्रत्येक परिवार वर्षा के पानी को बचाने के लिए प्रयास करेगा और पौधों की देखभाल करेगा तो ये एक सामूहिक अभियान बन सकता है।
1: बिल्कुल,
2: पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी विभागों की जिम्मेदारी नहीं है श्रोताओं, ये पूरे समुदाय की जिम्मेदारी है। महिलाओं के अनुभव और सुझाव इस जिम्मेदारी को निभाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, यही बात आती है स्वास्थ्य, पोषण और बच्चों की शिक्षा की, क्योंकि हम देखते हैं कि एक मजबूत गांव के लिए स्वस्थ परिवार और शिक्षित बच्चे आवश्यक हैं।
1: बिल्कुल,
0: ग्रामीण महिलाएं परिवार के स्वास्थ्य, भोजन, स्वच्छता और बच्चों की देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यदि महिलाओं को पौष्टिक भोजन, स्वच्छ पेयजल, नियमित स्वास्थ्य जाँच, टीकाकरण और स्वच्छता के बारे में सही जानकारी मिले तो परिवार और समुदाय में जागरूकता बढ़ सकती है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि बच्चों की शिक्षा में भी माताओं की भागीदारी उपयोगी है।
1: बिल्कुल,
0: बच्चों से नियमित बातचीत करना, उनकी पढ़ाई में रुचि लेना, विद्यालय से संपर्क रखना और घर में सीखने का अच्छा वातावरण बनाना उनके विकास में सहयोग देता है। इसके साथ ही बच्चों की शिक्षा केवल माताओं की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पिता, परिवार, शिक्षक और समुदाय को मिलकर उसमें सहयोग करना चाहिए।
2: जी हाँ अंजलि, साथ ही ग्रामीण महिलाओं के सामने भी बहुत सारी चुनौतियाँ आती है, उन चुनौतियों का सामना करके हमें आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए और आगे बढ़ने का अवसर देना किसी पर उपकार करना नहीं है बल्कि उन्हें समान अधिकार और उचित अवसर प्रदान करना है। साथ ही पुरुषों, परिवार और समुदाय के सहयोग की बात करें तो गांव का विकास तभी मजबूत होगा जब महिलाएं और पुरुष एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे।
0: बिल्कुल,
2: महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का अर्थ पुरुषों की भूमिका को कम करना नहीं श्रोताओं, इसका अर्थ है कि परिवार और समुदाय की जिम्मेदारियां मिलकर निभाई जाए।
0: बिल्कुल जागृति जी, यही हम देखते हैं कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के व्यवहारिक उपाय भी हमें अपनाने होंगे। श्रोता साथियों, गाँव में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे कि पहला, ग्राम सभा और पंचायत की बैठकों में महिलाओं को समय पर सूचना दी जाए और उन्हें अपनी बात रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। दूसरी बात आती है कि महिलाओं के स्व सहायता समूहों को मजबूत बनाया जाए, उन्हें बचत, बैंकिंग, उद्यम, विपणन और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाए। इसके साथ स्थानीय स्तर पर कौशल प्रशिक्षण आयोजित किए जा सकते हैं ताकि महिलाएं अपने अनुभव और रुचि के अनुसार रोजगार के अवसर तलाश सके। गांव की समस्याओं पर महिलाओं के साथ जागृति जी अलग से चर्चा करने के लिए महिला सभाओं जैसे मंचों का उपयोग किया जाए। इन चर्चाओं से प्राप्त सुझावों को ग्राम पंचायत की विकास योजनाओं में शामिल करने का प्रयास भी किया जा सकता है। इसी के साथ महिलाओं को खेती, जल संरक्षण, पर्यावरण, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े कार्यक्रमों में नेतृत्व करने के अवसर मिलने चाहिए।
2: बिल्कुल,
0: स्थानीय रेडियो, सामुदायिक बैठकों और अन्य संचार माध्यमों से सफल ग्रामीण महिलाओं के अनुभव साझा किए जा सकते हैं ताकि दूसरी महिलाएं भी प्रेरित हो सके। इसी के साथ श्रोता साथियों, महिलाओं के समय श्रम का सम्मान किया जाना चाहिए, घर और बाहर की जिम्मेदारियों को अधिक समान रूप से बांटने की दिशा में प्रयास किए जा सकते हैं।
2: जी हाँ,
0: इस तरीके से कह सकते हैं जागृति जी कि ये छोटे छोटे कदमों से गांव में सहयोग, विश्वास, सामूहिक जिम्मेदारी की भावना मजबूत हो सकती है।
2: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं कि गांव को सशक्त करने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है, ये बातें निरंतर आगे भी छोटी मोटी रह गई वो करेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल,

0: साथ ही इस गीत के साथ ही विदा लेना चाहेंगे, पर अंत में इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको कहना चाहेंगे, आज के इस कार्यक्रम में हमने जाना कि ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी से गांव किस प्रकार मजबूत बन सकते हैं। महिलाएं केवल परिवार की देखभाल करने वाली नहीं बल्कि गांव की अर्थव्यवस्था, संस्कृति, शिक्षा, पर्यावरण और विकास की महत्वपूर्ण भागीदारी है।
1: बिल्कुल,
0: तो हम सब मिलकर ऐसा गांव बनाने का संकल्प लें जहां हर महिला को अपनी बात कहने का अवसर मिले, उसके ज्ञान का सम्मान हो, उसकी मेहनत को पहचान मिले और उसे आगे बढ़ने के लिए आवश्यक सहयोग प्राप्त हो। इसीलिए याद रखिए श्रोताओं, महिलाओं को मिलेगा सम्मान तभी गांव आत्मनिर्भर बनेगा। हर महिला की होगी भागीदारी तभी विकास की होगी तैयारी। जब गांव की महिलाएं आगे आएंगी खुशहाली की नई राह बनेगी।
1: बिल्कुल, तो जागृति जी जैसा कि बातें ढेर सारी हो गई है और समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पता बताना चाहेंगे ताकि आज का ये कार्यक्रम हमें कैसा लगा उसके लिए वह राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
0: हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज वागर रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपरा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3970001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
1: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को। नमस्कार।

दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: कार्यक्रम में हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं श्रोता साथियों से लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे जो व्यक्ति हैं उनके साथ परिवार का व्यवहार कैसा हो। जी जी हाँ श्रोता साथियों, जब हमारे परिवार में कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो हम उसकी देखभाल करते हैं, उसे समय पर दवाई देते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं और उसके जल्दी ठीक होने की कामना करते हैं। लेकिन जब बीमारी कुछ दिनों की न होकर महीनों या वर्षों तक चलती है तब स्थिति मनीषा थोड़ी अलग हो जाती है। बीमार व्यक्ति का शरीर तो बीमारी से लड़ रहा ही होता है लेकिन उसका मन भी कई तरह की परिस्थितियों से गुजरता है।
1: जी हाँ,
0: उसे अपने भविष्य की चिंता होती है, कभी वह दूसरों पर निर्भर होने से परेशान होता है तो कभी उसे लगता है कि वह अपने परिवार पर बोझ बन गया है। ऐसे समय में परिवार का व्यवहार उस व्यक्ति के लिए बहुत मायने रखता है। परिवार के लोगों के कुछ मीठे बोल, थोड़ी सी समझदारी और साथ बैठकर बिताया गया समय उनके मन को हिम्मत दे सकता है। वहीं बार बार चिढ़ना, ताने देना या उसकी परेशानी को छोटा समझना उसके दुख को और बढ़ा सकता है। इसलिए आज के कार्यक्रम का विषय है कि लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति के साथ परिवार का व्यवहार कैसा होना चाहिए और किन किन बातों का हमें ध्यान रखने की जरूरत है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो इस विषय को लेकर कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
0: बिल्कुल,
1: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुना दें।
0: जी हाँ,
1: तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: मेरे साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति के साथ परिवार का व्यवहार कैसा हो। श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि हमारे जीवन में परिवार का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। परिवार वह जगह है जहाँ हमें प्यार मिलता है, अपनापन मिलता है, सुरक्षा और भावनात्मक सहारा मिलता है। जब जीवन में खुशियाँ आती है तब परिवार हमारे साथ खुशियाँ बांटता है, और जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं तब परिवार हमारा सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। क्योंकि श्रोता साथियों, जब परिवार का कोई सदस्य लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहा हो तब परिवार की जिम्मेदारी है वो और भी बढ़ जाती है।
1: बिल्कुल
0: कहना चाहेंगे साथियों कि लंबे समय तक चलने वाली बीमारी केवल शरीर को प्रभावित नहीं करती बल्कि व्यक्ति के मन, सोच, विश्वास और जीवन जीने के तरीके में भी असर डालती है। लगातार दवाइयां लेना, बार बार अस्पताल जाना, शारीरिक कमजोरी, काम करने में परेशानी और दूसरे लोगों पर निर्भर रहना, इस स्थिति में अंजलि जी हम देखते हैं कि व्यक्ति वो मानसिक रूप से थक जाता है। कभी कभी वह व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, अकेलापन महसूस करने लगता है या ऐसे लगने लगता है कि वह उसके परिवार पर बोझ बन चुका है।
1: बिल्कुल मनीषा, हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक बीमार रहता है तो उसके जीवन की दिनचर्या ही बदल जाती है। वह पहले की तरह काम नहीं कर पाता, अपनी पसंद की जगह पर नहीं जा पाता और कई बार घर के छोटे छोटे कामों के लिए भी उसे दूसरों की मदद लेनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में श्रोता साथियों, उस व्यक्ति के मन में अनेक विचार आते हैं। उसे अपने काम की चिंता हो सकती है, परिवार की आर्थिक स्थिति की चिंता हो सकती है, क्या यह डर सता सकता है कि वह दोबारा पहले की तरह सामान्य जीवन जी पाएगा या नहीं। कई बार ये देखने पर लगता है मनीषा कि बीमार व्यक्ति चुप रहता है, किसी से बात नहीं करता या छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता है, लेकिन उसके मन में चल रही परेशानी को समझना भी जरूरी है। हर बार उसकी चुप्पी को जिद या गुस्सा समझना सही नहीं है। परिवार को चाहिए कि वह व्यक्ति की शारीरिक परेशानियों के साथ साथ उसकी भावनाओं को समझे, उससे प्यार से बात करे, उसे यह भरोसा दिलाए कि बीमारी के कारण उसके प्रति परिवार का प्यार और सम्मान कम नहीं हुआ है।
0: जी हाँ,
1: इसी के साथ हम देखते हैं कि लंबे समय तक बीमारी रहने पर व्यक्ति को कभी कभी ऐसा लगता है कि उसकी वजह से परिवार के बाकी सदस्यों को परेशानी उठानी पड़ रही है। उसे लगता है कि घर के लोग उसके लिए अपना काम छोड़ते हैं, उसके इलाज पर पैसे खर्च करते हैं, उसकी देखभाल में सभी का समय लगता है। यदि परिवार के सदस्य बार बार ये कहें कि तुम्हारी वजह से घर का सारा काम बढ़ गया है या तुम्हारे इलाज में बहुत खर्चा हो रहा है, तो ऐसी बातें बीमार व्यक्ति के मन को गहरी चोट पहुंचा सकती है।
0: जी हाँ,
1: इसलिए परिवार को ये समझना चाहिए कि बीमारी किसी की इच्छा से नहीं आती। कोई भी व्यक्ति जानबूझकर बीमार नहीं रहना चाहता, इसलिए उसे अपनी बीमारी के लिए शर्मिंदा या दोषी ठहराना उचित नहीं है। इसके बजाय परिवार के सदस्यों को उससे अपनेपन का एहसास कराना चाहिए। उससे कहें कि परिवार में हर व्यक्ति कभी न कभी किसी न किसी परेशानी से गुजरता रहता है, ऐसे समय में एक दूसरे का साथ देना ही परिवार की असली ताकत है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि लंबे समय तक बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति को श्रोता साथियों केवल दवाई और इलाज की जरूरत नहीं होती है बल्कि उसे अपने परिवार का प्यार और अपनेपन की भी जरूरत होती है। कई बार परिवार के लोग इलाज, दवाइयाँ और घरेलू जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं अंजलि जी कि हम देखते हैं कि बीमार व्यक्ति के साथ बातचीत करना भूल जाते हैं। ऐसे में श्रोता साथियों, व्यक्ति को यह महसूस होने लगता है कि अब परिवार के पास उसके लिए समय नहीं है, वो अपने मन की बातें कहने से हिचकता है। इसलिए श्रोता साथी कहना चाहेंगे कि परिवार को प्रतिदिन कुछ समय बीमार व्यक्ति के साथ बिताने चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि उसका दिन कैसा रहा, वह कैसा महसूस कर रहा है और उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। इसके साथ ही श्रोता साथी सामान्य विषय पर हम बातचीत भी कर सकते हैं, पुरानी अच्छी यादों को साझा कर सकते हैं, उसकी पसंद का गीत सुन सकते हैं, उसकी रुचि के अनुसार हम कोई गतिविधि भी कर सकते हैं। यह भी जरूरी है श्रोता साथियों कि बातचीत का हर विषय बीमारी तक सीमित न रहे। यदि व्यक्ति को किताबें पढ़ना, रेडियो सुनना, पौधों की देखभाल करना या बच्चों के साथ समय बिताना पसंद है तो उसकी क्षमता और चिकित्सीय सलाह के अनुसार उस गतिविधियों में उनकी मदद करनी चाहिए।
1: बिल्कुल मनीषा, तो जैसा कि आज कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से हम ढेर सारी बातों को जान पा रहे हैं कि किस तरीके से कोई बीमार व्यक्ति है तो परिवार के सदस्यों को कैसे उनका ध्यान रखना है और उनके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए।
0: जी,
1: तो और भी आगे बातें निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि मनीषा, गीत से पहले आपने बताया था कि किस तरीके से परिवार के जो सदस्य हैं उन्हें बीमार व्यक्ति से बातचीत करनी चाहिए, पुरानी यादें साझा करनी चाहिए। यही अब बात आती है कि छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान रखें। यानी कि श्रोता साथियों, बीमारी के दौरान व्यक्ति की जिंदगी कई बार दवाइयों और जांच तक सीमित हो जाती है। ऐसे में उसकी पसंद और रुचियों को महत्व देना जरूरी है। यदि उसकी सेहत अनुमति देती है तो उसे पसंद की किताब पढ़ने, संगीत सुनने या परिवार के साथ समय बिताने के अवसर दें। उनकी छोटी छोटी उपलब्धियों की सराहना करें, लेकिन किसी काम के लिए उन पर दबाव न डालें। इसी के साथ कहना चाहेंगे कि यदि बीमार व्यक्ति लंबे समय तक उदास रहता है, बहुत अधिक चिंता करता है या जीवन के प्रति निराशा व्यक्त करता है तो उनकी बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। परिवार को डॉक्टर से बात करनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सहायता लेनी चाहिए। शरीर के साथ मन की सेहत की देखभाल भी जरूरी है, क्योंकि सही समय पर सहायता मिलने से व्यक्ति को अपनी परेशानी से निपटने में मदद मिल सकती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर बात करें कि उनकी भावना और मानसिक स्वास्थ्य की ध्यान रखने की, तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि लंबे समय तक चलने वाली बीमारी के साथ मानसिक तनाव भी वो भी बढ़ सकता है। व्यक्ति को चिंता, निराशा, अकेलापन, बेचैनी या भविष्य को लेकर डर महसूस हो सकता है। कुछ लोगों को अपने शरीर में आए बदलावों को स्वीकार करने में कठिनाइयां होती हैं, जबकि श्रोता साथियों, कुछ लोगों को दूसरों पर निर्भर रहने में भी दुख होने लगता है। हम देखते हैं कि परिवार को इन भावनाओं को गंभीरता से लेना चाहिए। बीमार व्यक्ति से यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वह हर समय सकारात्मक रहे या हमेशा मुस्कुराता रहे। उसे दुखी होने, डर महसूस करने और अपनी परेशानियों के बारे में बात करने का भी अधिकार है। कहना चाहेंगे साथियों कि परिवार को ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहां वह किसी बिना झिझक के अपने मन की बात को साझा कर सके। यदि व्यक्ति लंबे समय तक उदास रहता है, किसी भी गतिविधि में रुचि नहीं लेता है, बहुत अधिक चिंता करता है या निराशा व्यक्त करता है तो डॉक्टर से बात करना हमारे लिए उचित हो सकता है। जरूरत पड़ने पर मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की मदद भी हम ले सकते हैं।
0: बिल्कुल मनीषा, क्योंकि हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि लंबे समय से बीमार व्यक्ति की देखभाल केवल दवाई देने और अस्पताल ले जाने तक सीमित नहीं है। उसे प्यार, सम्मान, धैर्य और भावनात्मक सहयोग की भी जरूरत होती है। हमें याद रखना चाहिए कि किसी व्यक्ति का महत्व इस बात से तय नहीं होता कि वह कितना काम करता है या कितना पैसा कमाता है। वह हमारे परिवार का सदस्य है, उसकी भावनाओं का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। परिवार के सदस्यों को चाहिए कि वे देखभाल की जिम्मेदारियां मिलकर निभाएं, बीमार व्यक्ति की बात सुने और उसे अकेलापन महसूस न होने दें। साथ ही उसकी देखभाल करने वाले व्यक्ति की थकान और जरूरतों का भी ध्यान रखें। याद रखिए साथियों कि हर बीमारी को हम तुरंत ठीक नहीं कर सकते, लेकिन अपने प्यार, व्यवहार और सहयोग से बीमार व्यक्ति के कठिन समय को जरूर आसान बना सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए श्रोता साथियों, आपको यही कहना चाहेंगे कि जो भी बीमार व्यक्ति है उससे बातें कीजिए। अगर उन्हें किसी भी तरीके का अकेलापन लग रहा है तो उन्हें महसूस करिए, उन्हें समझिए और समझाइए कि किस तरीके से बीमारी आना स्वाभाविक है। लेकिन अगर उस बीमारी से अगर वो लंबे समय से जूझ रहे हैं तो उनके आत्मसम्मान, भावनाओं, इच्छाओं और जीवन के प्रति उम्मीदों को समझने की जिम्मेदारी हमारी है। जब किसी परिवार में कोई व्यक्ति बीमार होता है तो परिवार की दिनचर्या बदलती है। कई बार योजनाएं रुक जाती हैं, खर्च बढ़ जाते हैं, जिम्मेदारियां पहले से अधिक हो जाती हैं। ऐसे समय में थकान, चिंता और परेशानी महसूस होना स्वाभाविक है। इसलिए बीमार व्यक्ति की देखभाल करने वाले की जरूरतों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्हें भी आराम, सहयोग और अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर मिलना चाहिए।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति के साथ परिवार का व्यवहार उसके जीवन अनुभव को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बीमारी के दौरान व्यक्ति को केवल दवाई या जांच उपचार की जरूरत नहीं होती है, बल्कि उसे सम्मान, अपनापन, धैर्य और भावनात्मक सहारे की भी आवश्यकता होती है। कहना चाहेंगे साथियों कि परिवार को चाहिए कि वो बीमार व्यक्ति की बातें सुने, उनकी भावनाओं को समझे, उनकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखे और उनकी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का सम्मान करें। अगर हम उनकी तुलना दूसरों से करते हैं तो वो निराश हो सकते हैं और उनकी बीमारी है वो ज्यादा बढ़ सकती है। तो श्रोता साथियों, उनकी तुलना हमें किसी से नहीं करनी है और उनसे अच्छे से बात करने की हमें कोशिश करनी है।
0: बिल्कुल मनीषा, तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमने ढेर सारी बातों को जाना और अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: बिल्कुल,
0: हम विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही अब हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से विदा लेना चाहेंगे और आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य वाग रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपरा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को और आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर को। नमस्कार।

थारी में पासो लावो जुनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। भारतीय खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी ना तो जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर में स्वस्थ राकंगा। बाबर रेडियो एवं बागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाघ रेडियो 90.8 FM।

नमस्कार श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सपनों की उड़ान को। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर। स्वीकार कीजिएगा साथियों मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज फिर से लेकर हाजिर हूँ श्रोता साथियों कार्यक्रम में जिंदगी से जुड़े एक नए सवाल के साथ में, जिसका जवाब शायद किसी किताब में हमें नहीं मिलेगा बल्कि हमारे अपने व्यवहार में छिपा हुआ है। दोस्तों, कभी आपने किसी से कोई बात कही और सामने वाले से आपको जवाब मिला नहीं? ऐसा हुआ है, किसी ने आपके प्रस्ताव को ठुकरा दिया, किसी दोस्त ने आपकी मदद करने से मना कर दिया, किसी ने आपकी बात मानने से इनकार कर दिया, किसी नौकरी अवसर या प्रतियोगिता में आपका सिलेक्शन ही नहीं हुआ, या कभी ऐसा भी हुआ होगा आपके साथ कि आपने किसी रिश्ते में पूरी ईमानदारी से कदम बढ़ाए हैं और सामने से सिर्फ आपको एक शब्द मिला और वो मिला नहीं, और उस एक शब्द के बाद मन में आपकी कितनी बातें चलने लगी है, जैसे कि इन्होंने मुझे मना कैसे कर दिया, मेरी बात की कोई कीमत नहीं है क्या, अब मैं भी इनसे बात नहीं करूंगा या करूंगी, जब इन्हें मेरी जरूरत होगी तब मैं देखूंगी इन्हें अब। लेकिन आज के कार्यक्रम में जो विषय हमारा बातचीत का है उसका सवाल थोड़ा सा अलग है, और वो ये है कि क्या किसी का ना सुनने के बाद भी हम उसका सम्मान बनाए रख सकते हैं हमारे दिल में? अगर इसका जवाब जानो श्रोता साथियों तो हाँ बिल्कुल, हमें ऐसा करना चाहिए, बल्कि कई बार इंसान का असली व्यक्तित्व तब सामने आता है जब उसे अपनी इच्छा के खिलाफ जवाब मिलता है। श्रोता साथियों, हाँ सुनकर खुश होना आसान है, लेकिन ना सुनकर भी सम्मान बनाए रखना, ये होती है हमारी परिपक्वता। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं इसी विषय को लेकर आपसे ढेर सारी बातें करूंगी। हम जानेंगे कि किस प्रकार से जब हम किसी के मुंह से हमारी बातों को लेकर ना सुनते हैं तो फिर भी उस व्यक्ति के लिए हमें अपने मन में सम्मान क्यों बनाकर रखना चाहिए। तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो आइए दोस्तों पहले इसी दस्तूर को निभाते हुए

श्रोता साथी, इस गीत के बाद आप सभी का तहे दिल से स्वागत है फिर से कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले विषय से जुड़ी बातें मेरी आपसे रही थी और आज के इस कार्यक्रम में जो विषय हमारा रहने वाला है बातचीत का, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आज हम बात कर रहे हैं कि क्या किसी का ना सुनने के बाद भी हम उसका सम्मान बनाए रख सकते हैं। श्रोता साथियों, अगर इस विषय से जुड़ी बातों को आगे बढ़ाऊं तो ना हमेशा आपके खिलाफ नहीं होता, ये बात हम सभी को समझनी होगी। यानी कि सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ना का अर्थ हमेशा तुम गलत हो नहीं होता। किसी व्यक्ति ने आपके प्रस्ताव को मना किया है तो हो सकता है कि उसकी परिस्थिति अलग हो। किसी दोस्त ने साथ आने से मना किया है तो ये जरूरी नहीं है कि वो आपकी दोस्ती को महत्व नहीं देता। किसी अधिकारी ने आपका सुझाव स्वीकार नहीं किया तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका विचार ही बेकार था। दोस्तों, कई बार सामने वाले के पास अपनी एक अलग वजह होती है ना कहने की। या तो उसके पास समय नहीं हो सकता, या उसकी प्राथमिकता अलग हो सकती है, या फिर उसकी सीमाएं भी अलग हो सकती हैं। वह किसी और की जिम्मेदारी में व्यस्त हो सकता है, या फिर उसे सच में आपकी बात सही नहीं लगी। दोस्तों, हमें ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति को ना कहने का अधिकार है, ठीक वैसे ही जैसे हमें हाँ या ना कहने का अधिकार होता है। और यही जो समझ है वो हमारे रिश्ते में सम्मान को बना कर रखती है। अब बात करते हैं हमारे युवाओं की। तो अगर हमारे युवा साथी कोई सपना देख रहे हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, अपना काम शुरू करना चाहते हैं, या किसी क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो रास्ते में ना मिलना उनके लिए असामान्य नहीं है। आप किसी जगह नौकरी के लिए गए युवा साथियों, हम आपको नहीं रख सकते, आपको ये सुनने को मिला। आपने प्रतियोगिता दी, आपका चयन नहीं हुआ। आपने किसी से अपने काम में सहयोग मांगा, उन्होंने कहा हम मदद नहीं कर पाएंगे। साथियों, अब सवाल यह नहीं है कि ना क्यों मिला, सवाल तो ये है ना मिलने के बाद आप अपने अंदर क्या बचा कर रखते हैं, गुस्सा या हिम्मत? क्योंकि एक ना आपकी पूरी कहानी का आखिरी पन्ना नहीं है। कभी कभी ना केवल यह बताता है कि यह रास्ता अभी नहीं खुला, दूसरा रास्ता तलाशो। इसलिए कभी भी किसी के ना को सुनकर हमें ये नहीं जानना चाहिए कि ये व्यक्ति हमारे खिलाफ है। अब यहाँ पर एक और बात आपसे करना चाहूंगी कि जब कोई हमें मना करता है श्रोता साथियों, तो हमारे अंदर दो चीजों का फर्क होना चाहिए, अस्वीकार और आत्मसम्मान का। जैसे कि किसी का आपको मना करना उसके अधिकार का हिस्सा हो सकता है, लेकिन उस ना के कारण खुद को छोटा समझ लेना ये हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करता है। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है और आपका चयन नहीं हुआ। आप कह सकते हैं कि मैं असफल हो गया, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हैं कि इस बार मेरा चयन नहीं हुआ, अब मुझे अपनी तैयारी को और बेहतर करने की जरूरत है। ऐसे में दोस्तों दोनों वाक्यों में बहुत फर्क है। पहला वाक्य व्यक्ति को अपनी असफलता से जोड़ देता है और दूसरा वाक्य व्यक्ति को उसके प्रयासों से जोड़ देता है। यानी कि एक परिणाम आपकी पहचान नहीं हो सकता। हम अक्सर शब्दों से ज्यादा अपनी प्रतिक्रिया से रिश्ते खराब करते हैं। किसी ने हमें मना किया, हमने तुरंत जवाब दे दिया, ठीक है फिर कभी बात मत करना। लेकिन कुछ समय बाद जब गुस्सा शांत होता है तो हमें लगता है शायद मैंने उसे कुछ ज्यादा ही बोल दिया। इसलिए दोस्तों, एक छोटी सी आदत बहुत काम आ सकती है और वो ये है कि तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय आपको थोड़ी देर रोक कर सोचना चाहिए, एक गहरी सांस लेनी चाहिए और अपने आप से पूछना चाहिए कि मुझे दुख किस बात का हुआ है। क्या मुझे सच में उस व्यक्ति से समस्या है, या मुझे सिर्फ अपनी उम्मीद पूरी न होने का दुख है? दोस्तों, आपके द्वारा पूछे गए ये सवाल आपके जीवन में बहुत कुछ बदल सकते हैं, क्योंकि कई बार हमें इंसान से नहीं अपनी अधूरी उम्मीदों से गुस्सा होता है और हम ऐसे ही किसी और पर अपना सारा गुस्सा उतार देते हैं। तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से मेरी आपसे बहुत अच्छी चली रही है, ये बातें मैं आगे भी करना चाहूंगी, लेकिन अभी यहाँ पर सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

दोस्तों, इस गीत के बाद मैं फिर से रुक करना चाहूंगी कार्यक्रम में। जैसा कि बातचीत का विषय आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा जुड़ा हुआ है कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि जब हम किसी के मुंह से हमारे वाक्यों को लेकर ना सुनते हैं तो उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में सम्मान फिर भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो गीत से पहले जैसा कि ढेर सारी बातें जानी थी, यही एक बात आपसे करना चाहूंगी कि सम्मान का मतलब सहमत होना कभी नहीं होता श्रोता साथियों। यानी कि किसी का सम्मान करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसकी हर बात से सहमत हो। आप सामने वाले की बात से असहमत भी हो सकते हैं। आप अपनी बात को मजबूती से रख सकते हैं। आप किसी निर्णय को गलत भी मान सकते हैं, लेकिन फिर भी भाषा और व्यवहार में मर्यादा आप रख सकते हैं। आप कह सकते हैं जैसे कि मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन अभी मेरी राय अलग है, या आपने मना किया, मैं आपकी परिस्थिति का सम्मान करता हूँ। या आप ये भी कह सकते हैं श्रोता साथियों कि मुझे आपकी बात पसंद नहीं आई, लेकिन मैं बिना अपमान किए आपकी बात रखना चाहता हूँ।

है कि अगर हमने किसी के मना करने के बाद भी सम्मान से उससे बात की तो हम कमजोर दिखेंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। सम्मान देना कमजोरी नहीं होता बल्कि आत्मनियंत्रण होता है। साथियों, गुस्सा करना आसान है, बदला लेना आसान है, ताने देना भी आसान है और रिश्ता तोड़ देना भी आसान है, लेकिन ये कहना तुम्हारा निर्णय तुम्हारा है और मेरा व्यवहार मेरी जिम्मेदारी है, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। जिस दिन इंसान ये समझ जाता है उस दिन वह दूसरे के व्यवहार से अपनी शांति को नियंत्रित होने से बचा लेता है। जैसे कि एक कल्पना कीजिए, आप एक युवा किसी बड़े संस्थान में नौकरी के लिए आवेदन करता है, वह पूरी तैयारी कर रहा है, इंटरव्यू भी देता है, लेकिन जब जवाब आता है तब वह बोलता है कि आपका चयन नहीं हो पाया। वह घर आता है, कुछ देर चुप रहता है, फिर अपने दोस्तों से कहता है, मुझे बुरा लगा है लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि मुझ में सुधार की जरूरत कहाँ है। फिर वह अपनी कमियाँ लिखता है, अगली बार बेहतर तैयारी करता है। अब श्रोता साथियों ध्यान दीजिएगा, उसने ना को स्वीकार किया लेकिन अपने सपनों को ना नहीं कहा, और यहीं से असली सपनों की उड़ान की शुरुआत हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी बातचीत का सवाल सिर्फ इतना था कि क्या ना सुनने के बाद भी सम्मान बनाए रखना संभव है। तो आज की बातों से आप समझ पाए हैं कि हाँ, ऐसा बिल्कुल संभव है, क्योंकि शायद यही हमारे व्यक्तित्व का सबसे खूबसूरत मौका होता है, या फिर कहें तो यही हमारे व्यक्तित्व की सबसे खूबसूरत परीक्षा भी हो सकती है। क्योंकि जिंदगी में हर जगह हमें अपनी पसंद का जवाब नहीं मिलेगा और हर सपना पहली कोशिश में हमारा पूरा नहीं होगा, लेकिन एक चीज जो है वो हमेशा हमारे साथ में रहेगी, वो है कि हम प्रतिक्रिया कैसे देते हैं। याद रखिए, किसी की ना आपकी कीमत तय नहीं करता और किसी की असहमति आपका सम्मान कम नहीं करती। कभी कभी जिंदगी हमें रोकती नहीं, बस हमारा रास्ता बदलती है। इसलिए अगली बार जब आपको कोई ना कहे तो कुछ पल रुकिए और खुद से कहिए कि मैं तुम्हारे निर्णय का सम्मान करता हूँ, लेकिन अपने सपने से पीछे नहीं हटूंगा। और यही सोच श्रोता साथियों आपको भीड़ से अलग बनाएगी, क्योंकि सपनों की उड़ान सिर्फ मंजिल तक पहुँचने का नाम नहीं है, ये उस सफर में अपने भीतर के इंसान को बचा रखने का नाम भी है। तो ना सुनिए, समझिए और स्वीकार कीजिए, लेकिन अपनी उम्मीद, अपनी मेहनत और अपनी गरिमा को ना मत कहिए दोस्तों। इसी खूबसूरत सोच के साथ कार्यक्रम सपनों की उड़ान से मैं विदा लेना चाहूंगी, क्योंकि बातें पूरी हो चुकी है और समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और प्यारे से गीत के साथ में।

श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज के इस कार्यक्रम सपनों की उड़ान से मैं विदा लेना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी मेरी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्र द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पानेशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा धर की दोस्ती करवी है।
1: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की, जब हर तभी तो गांव होवे, न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके। शिक्षा तो किस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
0: हिंडो स्कूल जा, अपने अपना भी अपना पूरा करो।
1: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: होवे जयवरे सब सोरा भरेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
1: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। जागृति बुन, आप कार्य सोचू है, अगर आप बूंदी रुकी जाएगा तो हूँ था है। नाना अंजलि बुन हूँ था का, अरे जागृति बुन आपड़ी जो नदिया है ये रुकी जाएगा, खेतर बंजर थे जाएगा, ने आपड़ो जीवन जो है ये भी रुकी जाएगा। ओ अंजलि बुन इतने से मन का कह है कि पानी तो काल है, पानी तो किस आपड़ो जीवन है। होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ये आज धरती माता नु संबल है। होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि मरने खुल्लो नी राखू, बारिश ने पानी नो संग्रह करू। आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी ने जीवन सफल थी सागा। होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ पानी बचाओ, ने अपनी धरती में हरी भरी राखो। जल जीवन है आ अपनी पहचान है, हर बूंद मोल आपड़े जानो। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है डॉक्टर कलाम से सीख, सपने वही जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें।
0: बिल्कुल
1: मनीषा, हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में कई सारे सपने होते हैं। हम देखते हैं कि हर इंसान के मन में कोई ना कोई सपना होता है। कोई चाहता है कि वो डॉक्टर बने, कोई शिक्षक बने, कोई चाहता है कि वो वैज्ञानिक किसान बनकर अपने खेती में नई ऊंचाइयों तक ले जाए, तो कोई अपने गांव में ऐसा काम करना चाहता है जिससे समुदाय का जीवन बेहतर हो सके।
0: जी हाँ।
1: किसी का सपना परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने का होता है, तो कोई पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। लेकिन श्रोता साथियों, सवाल यह है कि क्या केवल सपना देख लेने से मंजिल मिल जाती है? क्या परिस्थितियां हमारे सपनों से बड़ी होती है? और जब रास्ते में असफलता आए, लोग हमारा मजाक उड़ाए या साधन कम पड़ जाए, तब हमें क्या करना चाहिए? इन्हीं सवालों के जवाब हमें डॉक्टर कलाम के जीवन से मिलते हैं। उनका जीवन किसी कहानी की तरह केवल प्रेरणा देने वाला नहीं है, बल्कि यह समझाने के लिए है कि सपनों को सच्चाई में बदलने के लिए सोच, मेहनत, अनुशासन, ज्ञान और निरंतर प्रयास कितने जरूरी है। आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि डॉक्टर कलाम ने अपने जीवन से हमें क्या सिखाया, उनके विचार हमारे गाँव, कस्बों, विद्यालय और परिवार के लिए कितने उपयोगी है, और हम अपने जीवन में उन सीखों को कैसे अपना सकते।
0: जी हाँ,
1: बातें ढेर सारी होगी कार्यक्रम के माध्यम से, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।

0: श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत की बात आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही दिया था कि आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर कलाम से सीख, सपने वही हैं जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। जी हाँ श्रोता साथियों, सपना देखना और लक्ष्य तय करना दोनों अलग अलग बातें हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई विद्यार्थी कहता है कि मुझे बड़ा अधिकारी बनना है, यह उसका सपना है, लेकिन श्रोता साथियों जब वह यह तय करता है कि उसे कौन सी परीक्षा देनी होगी, किन विषयों की पढ़ाई करनी होगी और उसकी तैयारी है वो कैसी जांची जाएगी, तो उसका सपना है वो लक्ष्य के रूप में दिखाई देने लगता है। डॉक्टर कलाम का जीवन भी श्रोता साथियों हमें यही प्रेरणा देता है कि अपने सपनों को केवल कल्पनाओं तक सीमित न रखें, उन्हें पूरा करने के लिए स्पष्ट दिशा हमें बनानी है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। इसलिए हम श्रोता साथियों को आज कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि हमें हमारे जीवन में कुछ ऐसे सपने देखने हैं जिन्हें आगे ले जाकर हम हमारे जीवन में सुखी हो सकें, क्योंकि डॉक्टर कलाम का जो जीवन है वो हमें यही सीख देता है कि किस तरीके से हमें हमारे जीवन में सपने देखने चाहिए और निरंतर प्रयास करने हैं। साथियों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उनका परिवार साधारण था। बचपन में उन्होंने जीवन की सादगी, मेहनत और जिम्मेदारी को करीब से देखा। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे बिना किसी कठिनाई के अपनी हर जरूरत पूरी कर सके, लेकिन सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई और सीखने की इच्छा को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उनके जीवन में हमें पहली सीख मिलती है कि किसी व्यक्ति की शुरुआत उसकी अंतिम मंजिल से तय नहीं होती। हम किसी परिवार में पैदा हुए हैं, हमारे पास कितने पैसे हैं, हमारे गाँव में कितनी सुविधाएं हैं या हमारे घर में पढ़ाई का माहौल कैसा है, ये बातें हमारे सामने चुनौतियां जरूर खड़ी कर सकती हैं, लेकिन हमारी क्षमताओं और भविष्य का पूरा निर्णय नहीं करती। हमारे समाज में हम देखते हैं कि कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पास महंगी किताबें नहीं हैं, पढ़ाई के लिए अलग कमरा नहीं है या घर में बिजली और इंटरनेट जैसी सुविधाएं भी हमेशा उपलब्ध नहीं रहती। कई बच्चे परिवार की जिम्मेदारियों के बीच पढ़ाई करते हैं। कुछ बच्चों को स्कूल पहुँचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसे में कभी कभी उन्हें लगता है कि बड़े परिवार देखना उनके लिए संभव नहीं है, लेकिन डॉक्टर कलाम का जीवन हमें बताता है कि सपना देखने के लिए महंगे साधनों से ज्यादा जरूरी है सीखने की लगन और उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग। पुस्तकालय की किताब, शिक्षक की अच्छी सलाह, किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन या किसी छोटी सी गलती से मिली सीख भी हमारे भविष्य की दिशा बदल सकती है। इसलिए बच्चों और युवाओं को अपनी परिस्थिति से निराश होने के बजाय ये देखना चाहिए कि उनके पास सीखने के कौन कौन से अवसर मौजूद हैं। यदि कोई विषय कठिन लगता है तो शिक्षक से कैसे पूछें, किताब समझ में नहीं आती है तो किसी साथी की मदद लें, और घर में पढ़ने का शांत स्थान नहीं है तो परिवार के साथ मिलकर पढ़ाई के लिए एक निश्चित समय तय करें। याद रखिए कि साधारण परिस्थितियों में जन्म लेना कोई कमी नहीं है। अपने सपनों को परिस्थितियों के कारण छोड़ देना वह बाधा है जिसे प्रयास और सही मार्गदर्शन से कम

0: किया जा सकता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि उन्हें स्वयं से कुछ सवाल पूछने चाहिए। क्या मैं अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहता हूँ, इस लक्ष्य को पाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे अपनी दिनचर्या में कौन कौन से बदलाव करने चाहिए, आज मैं ऐसा कौन सा छोटा सा काम कर सकता हूँ जो मेरे लक्ष्य के मुझे करीब ले जाएगा। श्रोता साथियों, जब इन सवालों के जवाब हम खोजने लगते हैं तो हमें अपनी दिशा है वो हमें समझ आने लगती है। याद रखिए श्रोता साथियों कि लक्ष्य बड़ा हो सकता है लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हमारे छोटे छोटे कदम है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि इसी भी बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें छोटे छोटे प्रयासों से ही शुरू करना चाहिए।
0: बिल्कुल मनीषा, डॉक्टर कलाम के नाम के साथ सपनों का विचार बहुत गहराई से जुड़ा है। उनके संदेश का मूल भाव यह है कि सपना केवल वह कल्पना नहीं है जो हमें सोते समय देखते हैं, सपना वह लक्ष्य है जो हमें जागते हुए काम करने, सीखने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी बच्चे का सपना शिक्षक बनने का है तो केवल ये कहना पर्याप्त नहीं है कि एक दिन में शिक्षक बनूंगा, उसे अपनी पढ़ाई मजबूत करनी होगी, भाषा और विषयों की समझ बढ़ानी होगी, नियमित अभ्यास करना होगा और परीक्षा की तैयारी करनी होगी। यदि किसी युवा का सपना अपना व्यवसाय शुरू करना है तो उसे बाजार की जरूरतें समझनी होंगी, खर्च और आमदनी का हिसाब लिखना होगा और छोटे स्तर से काम शुरू करने की तैयारी करनी होगी। इसी तरह यदि कोई किसान चाहता है कि उसकी खेती से अच्छी आमदनी हो तो वह नई कृषि तकनीकों, मिट्टी की जांच, पानी के उचित उपयोग, फसल विविधीकरण और बाजार की जानकारी प्राप्त करने की दिशा में कदम उठा सकता है। सपना यह भी है कि बेहतर जीवन हमें जीना है लेकिन उसे पूरा करने का रास्ता जानकारी, मेहनत तो सही निर्णय से होकर गुजरता है। कई बार हम अपने जीवन में बड़े लक्ष्य तो बना लेते हैं मनीषा, लेकिन उन्हें छोटे छोटे कामों में नहीं बांटते। हमें लगता है कि मंजिल बहुत दूर है इसलिए शुरुआत करना ही मुश्किल हो जाता है। और इसका एक सरल उपाय है श्रोता साथियों, अपने लक्ष्य को छोटे चरणों में बांटना। यदि आपको परीक्षा में अच्छे अंक लाने हैं तो हर दिन पढ़ाई का समय तय करें। यदि आपको कोई नया हुनर सीखना है तो सप्ताह में कुछ घंटे उसके अभ्यास के लिए रखें। यदि आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो पहले अपने कौशल, उपलब्ध अवसरों और जरूरी प्रशिक्षण की जानकारी जुटाएं।
1: जी हाँ,
0: सपनों की असली ताकत इस बात में नहीं कि वह कितना बड़ा है बल्कि इस बात में है कि वह हमें कितना जिम्मेदार बनाता है।
1: जी हाँ,
0: ऐसा सपना जो हमें हर दिन कुछ नया सीखने, अपनी कमियों को पहचानने और कल से बेहतर बनने के लिए प्रेरित करे, वही जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता खुलता है। इसलिए आज अपने आप से पूछिए कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं उसके लिए क्या सीख रहा हूँ और आगे अगले जो 7 दिन हैं उसमें मुझे ऐसा कौन सा काम करना है जो मुझे अपने लक्ष्य के ओर थोड़ा करीब लेकर जाए।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारी श्रोता साथियों से बातें चली रही हैं, तो ये बातें हमारी आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी। लेकिन क्यों ना साथियों के मनोरंजन के लिए कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ की ओर। जैसा कि आज कार्यक्रम में मनीषा हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है, यही बात करें तो श्रोता साथियों, डॉक्टर कलाम विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध हुए, लेकिन उनके जीवन यात्रा में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान था। उन्होंने पढ़ाई के माध्यम से अपनी रुचियों को समझा, वैज्ञानिक ज्ञान हासिल किया और देश की प्रगति में योगदान भी दिया। उनका जीवन यह दिखाता है कि शिक्षा केवल परीक्षा पास करने या प्रमाण पत्र हासिल करने का साधन नहीं है। शिक्षा हमें सोचने, सवाल पूछने, समस्याओं को समझने और उनके समाधान खोजने की क्षमता देती है। जब कोई बच्चा सीखता है पढ़ना, तो उसके सामने दुनिया को समझने के नए रास्ते खुलते हैं। जब वह गणित सीखता है तो हिसाब किताब और तर्क करने की क्षमता विकसित होती है। विज्ञान उसे प्रकृति, स्वास्थ्य, ऊर्जा और तकनीक के बारे में सवाल पूछना सिखाती है। सामाजिक विज्ञान उसे समाज, इतिहास, नागरिक अधिकारों और जिम्मेदारियों की जानकारी देता है।
1: बिल्कुल,
0: शिक्षा का महत्व केवल बच्चों तक सीमित नहीं है। वयस्क व्यक्ति भी जीवन के किसी भी चरण में नई चीजें सीख सकता है। कोई महिला पढ़ना लिखना चाहती है तो वो पढ़ना लिखना सीख कर बैंक के कामकाज समझ सकती है, अपने बच्चों की पढ़ाई में मदद कर सकती है या सरकारी योजनाओं की जानकारी स्वयं पढ़ सकती है। कोई युवा डिजिटल कौशल सीख कर रोजगार के नए अवसर तलाश सकता है। कोई किसान जो है वो प्रशिक्षण लेकर अपनी खेती से जुड़े निर्णय बेहतर बना सकता है। हमारे समुदाय में कई बार मनीषा लोग कहते हैं कि अब उम्र निकल गई, अब पढ़ कर क्या करेंगे, लेकिन सीखने की कोई एक निश्चित उम्र नहीं होती। जरूरी यह है कि व्यक्ति अपनी जरूरत पहचानने और शुरुआत करने का साहस कैसे करता है। शिक्षा का अर्थ केवल स्कूल जाना भी नहीं है, अपने अधिकारों को जानना, स्वास्थ्य संबंधित सही जानकारी समझना, आर्थिक निर्णय सोच समझ कर लेना, नई तकनीक का जिम्मेदारी से उपयोग करना और किसी गलत सूचना की जांच करना भी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। डॉक्टर कलाम से प्रेरणा लेते हुए हमें अपने गाँव और समुदाय में ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहाँ बच्चों के सवालों को दबाया चाहे, लड़कियों की शिक्षा को कम महत्व न दिया जाए और आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे परिवारों के बच्चों को भी सीखने के अवसर मिले। माता पिता अपने बच्चों से केवल यह न पूछे कि आज कितने अंक आए, बल्कि यह भी पूछे कि आज क्या नया सीखा, कौन सा सवाल मन में आया, किस बात को समझने में कठिनाई हुई। जब घर में सवाल पूछना गलत नहीं माना जाएगा, तब बच्चों में सीखने का आत्मविश्वास बढ़ेगा। शिक्षा हमें केवल आजीविका कमाने के योग्य नहीं बनाती, बल्कि हमें अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेने की क्षमता भी देती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि सपने मनुष्य के जीवन को दिशा देने का कार्य करते हैं। जब कोई विद्यार्थी डॉक्टर, वैज्ञानिक, शिक्षक, इंजीनियर, सैनिक, कलाकार, समाज सेवी बनने का सपना देखता है साथियों, तो उसके मन में एक लक्ष्य जन्म लेता है। यह लक्ष्य उसे आगे बढ़ने, पढ़ने, सीखने और अपने कौशल को विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन श्रोता साथियों, केवल सपना देख लेना पर्याप्त नहीं है। यदि कोई व्यक्ति महान बनने की इच्छा रखता है परंतु उसके लिए मेहनत नहीं करता है, तो उसका सपना है वो केवल कल्पना बनकर रह जाता है। डॉक्टर कलाम के विचारों का वास्तविक अर्थ यही है साथियों, कि सपनों को अपने कर्म से जोड़ें। सच्चा सपना वह है जो हमारे जीवन की प्राथमिकताओं को सफलता में बदल दे। श्रोता साथियों, वह हमें समय का महत्व समझाए, अनुशासन बनाए रखे और असफलता के बाद सफलता तक पहुँचने के लिए हमें प्रेरित करें।
0: बिल्कुल मनीषा, यही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि जब हम किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो अक्सर उसकी उपलब्धियां हमें दिखाई देती है, हमें उसका सम्मान, पुरस्कार और प्रसिद्धि नजर आती है। लेकिन मनीषा, उसके पीछे के अभ्यास, कठिन निर्णय, गलतियां और निराशा के क्षण उतनी आसानी से हमें दिखाई ही नहीं देते। डॉक्टर कलाम का वैज्ञानिक जीवन हमें यह भी समझाता है कि बड़ी उपलब्धियां जो है वो एक दिन में हासिल नहीं होती। विज्ञान के क्षेत्र में किसी योजना को सफल बनाने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं।
1: जी हाँ,
0: परिणामों का अध्ययन करना पड़ता है और कमियों को दूर करना पड़ता है, क्योंकि हर प्रयास जो है वो अपेक्षित परिणाम दे ये जरूरी नहीं, लेकिन हर प्रयास के पीछे कुछ सीखने का अवसर अवश्य मिल सकता है। कल्पना कीजिए श्रोता साथियों कि कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल हो जाता है, उसके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता यह कि वह अपने आप को कमजोर मान ले, पढ़ाई छोड़ दे और यह सोचने लगे कि मुझसे कुछ नहीं होगा। दूसरा रास्ता ये कि वह अपनी तैयारी की समीक्षा करे, समझे कि किस विषय में कठिनाई हुई, शिक्षक से मदद मांगे और एक नई योजना बनाकर दोबारा प्रयास करें। इस तरह कोई युवा नौकरी के लिए आवेदन करता है लेकिन उसका चयन नहीं होता, वह अपने कौशल की कमियों को पहचान सकता है, साक्षात्कार का अभ्यास कर सकता है और दूसरी जगह अवसर तलाश सकता है। कोई महिला छोटा व्यवसाय शुरू कर सकती है, शुरुआत में अपेक्षित बिक्री नहीं होगी, वह ग्राहकों की जरूरत समझकर अपने उत्पाद, कीमत या काम करने के तरीकों में सुधार कर सकती है। इसका अर्थ यह है, यह नहीं है श्रोता साथियों कि हर असफलता के बाद बिना सोचे वही काम बार बार करते रहना चाहिए। असफलता से सीखने का मतलब है अपने तरीकों का मूल्यांकन करना, जरूरत पड़ने पर सलाह लेना और बेहतर योजना के साथ आगे बढ़ना।
1: बिल्कुल,
0: हमें बच्चों को यह समझाना चाहिए कि किसी एक परीक्षा के अंक, किसी एक प्रतियोगिता का परिणाम या किसी एक अवसर का छूट जाना आपके पूरे जीवन की योग्यता का प्रमाण नहीं होता। व्यक्ति की क्षमताएं अनेक होती है, किसी को विज्ञान में रुचि होती है, किसी को खेती में, तो किसी को खेल में, तो किसी को कला में, तो किसी को दूसरों की मदद करने में। सफलता का रास्ता हर व्यक्ति के लिए एक जैसा नहीं होता। जरूरी है कि हम अपनी रुचि पहचाने, अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं और सही दिशा में निरंतर प्रयास करें। इसलिए जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो अपने आप से सवाल पूछें कि क्या हुआ, इससे मैंने क्या सीखा, अगली बार मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। ये सवाल निराशा को सीखने के अवसर में बदलने में मदद करते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि डॉक्टर कलाम का मानना था कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए उसके नागरिकों, विशेषकर युवाओं को बड़े सपने देखने चाहिए। वह सपने व्यक्ति को अपने सीमाओं से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करता है। यदि श्रोता साथियों, कोई विद्यार्थी केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने की सोच तक सीमित रहता है तो उसकी प्रगति है वो सीमाओं में बंधी रहती है। लेकिन श्रोता साथियों, यदि वह विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करने, नई खोज करने, समाज की समस्याओं का समाधान करने और देश की उन्नति में और देश की उन्नति के योगदान के लिए सपना देखता है तो उसकी मेहनत है वो सफल होती है। श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि बड़े सपने देखने का अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी वास्तविक स्थिति को अनदेखा कर दें। इसका अर्थ यह है कि हम अपनी वर्तमान स्थिति को आगे भी संभाल कर आगे बढ़ने की कोशिश करें। हमें यह समझना चाहिए कि आज हम जहां है वही हमारा भविष्य समाप्त नहीं होता है। उदाहरण के लिए श्रोता साथियों, एक विद्यार्थी यदि वैज्ञानिक बनना चाहता है तो उसे विज्ञान की पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, प्रयोग करने की आदतें विकसित करनी चाहिए और अपनी जिज्ञासा को जीवित करने के लिए निरंतर मेहनत करनी चाहिए। एक खिलाड़ी को नियमित अभ्यास करने चाहिए, अपनी शारीरिक क्षमताओं को विकसित करना चाहिए और हार मानने के बाद भी आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, तभी अंजलि जी हम देखते हैं कि वो सपने हैं वो पूरा कर सकता है।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा था। इस तरीके से कार्यक्रम में श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी कार्यक्रम के माध्यम से। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वाग रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, हम बातें कर रहे थे डॉक्टर कलाम से, सीख सपने वही है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। यहीं अगर बात करें कि असफलताओं से हमें घबराना नहीं चाहिए इसकी, तो अंजलि जी, हम देखते हैं कि जीवन में असफलता आना स्वाभाविक है। कोई भी व्यक्ति श्रोता साथियों हर प्रयास में सफल नहीं होता है। कई बार हम पूरी मेहनत करने के बाद भी अपेक्षित कर परिणाम जो चाहते हैं वो नहीं पा पाते हैं। ऐसे समय में श्रोता साथियों, निराश होना आसान होता है, लेकिन अपने प्रयासों को छोड़ देना उचित नहीं है। डॉक्टर कलाम का जीवन असफलताओं से सीखने की हमें प्रेरणा देता है। उनके वैज्ञानिक जीवन की शुरुआत श्रोता साथियों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रेरणा है। हम देखते हैं श्रोता साथियों की विद्यार्थी परीक्षा में कम अंक आने पर अपनी कमियों का विश्लेषण करता है। कोई खिलाड़ी हारने के बाद अपनी तकनीक को सुधारने की कोशिश करता है, और एक उद्यमी अपने अनुभव को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। हम देखते हैं कि प्रत्येक असफलता हमें समझने, आगे बढ़ने और प्रयास और मेहनत करने की सीख देती है। श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि असफलता का अर्थ यह नहीं है कि हम योग्य नहीं हैं। कई बार इसका अर्थ केवल यह होता है कि हमारी तैयारी, रणनीति और तरीका जो था वो थोड़ा पर्याप्त नहीं हो पाया। इसलिए श्रोता साथियों, हमें असफलता से डरने और घबराने के बजाय उसे सीख लेने की कोशिश करनी है, आगे बढ़ने की प्रेरणा लेनी है, और हम उन असफलताओं से क्या सीख सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं वो सारी जानकारी हमें लेनी है।
1: बिल्कुल मनीषा, किसी भी सपने को पूरा करने के लिए इच्छा के साथ अनुशासन भी जरूरी है। कई बार हम कुछ नया शुरू करने के लिए बहुत उत्साहित होते हैं, पहले दिन खूब मेहनत करते हैं, दूसरे दिन भी काम करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हमारी नियमितता टूट जाती है, फिर हम अपने लक्ष्य से दूर होने लगते हैं। डॉक्टर कलाम का जीवन अध्ययन, वैज्ञानिक कार्य और देश के प्रति समर्पण से जुड़ा रहा है। उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए हम समझ सकते हैं कि नियमित प्रयास ही हमारी क्षमताओं को विकसित करता है। अनुशासन का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति को हर समय काम करते ही रहना चाहिए। इसका अर्थ है अपनी जरूरी कामों, आराम, स्वास्थ्य, जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना। विद्यार्थी के लिए समय पर पढ़ाई, पर्याप्त नींद और अभ्यास जरूरी है। कामकाजी व्यक्ति के लिए अपने काम की योजना बनाना, स्वयं जिम्मेदारी लेना, समय पर निभाना और नई चीजें सीखना महत्वपूर्ण है। गांव में रहने वाले युवाओं के लिए भी समय का सही उपयोग बहुत लाभदायक हो सकता है। यदि कोई युवा रोजगार की तलाश में है तो वह प्रतिदिन कुछ समय कौशल प्रशिक्षण, नौकरी की जानकारी, आवेदन की तैयारी के लिए निर्धारित समय निकाल सकता है। किसी महिला को अपना काम शुरू करना है तो वह घर की जिम्मेदारियों के बीच परिवार के सहयोग से नियमित समय निकाल सकती है। इस तरह छोटी छोटी आदतें समय के साथ बड़ा बदलाव ला सकती है। रोज थोड़ा पढ़ना, नियमित अभ्यास करना, समय पर काम पूरा करना और गलतियों को सुधारना, ये सभी कदम हमें अपने लक्ष्य के और करीब ले जाते हैं। इसलिए साथियों, सफलता हमेशा किसी बड़े अवसर से नहीं शुरू होती, कई बार वह एक छोटे निर्णय से शुरू होती है। आज का जो समय है, उस दिन हम अगर जल्दी उठें, पढ़ाई अपनी समय पर पूरी करें और कुछ नया कौशल सीखें, तो ये हमारे जीवन में हमारी खुशियों को फिर से लौटाता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि सपनों को साकार करने के लिए सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास होना भी आवश्यक है। यदि व्यक्ति हर काम शुरू करने से पहले सोच ले कि वह असफल हो जाएगा और उससे प्रयास नहीं होंगे, तो अंजलि जी, हम देखते हैं कि असफलता है वो निश्चित होती है। डॉक्टर कलाम का जीवन आत्मविश्वास का हमें प्रेरणा देता है। साथियों, उन्होंने अपनी सीमाओं को पहचाना, लेकिन अपनी सीमाओं को स्थायीता में नहीं बांधा। उन्होंने ज्ञान और अनुभव के माध्यम से अपनी क्षमताओं को विकसित किया। कहना चाहेंगे कि साथियों, आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार ही न करे और स्वयं को हमेशा सही माने। वास्तविक आत्मविश्वास वह है जो श्रोता साथियों, जिसमें हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखते हुए अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास करें। सकारात्मक सोच हमें कठिन परिस्थितियों में भी संभालने और प्रेरणा लेने की सीख देती। जब कोई विद्यार्थी कठिन विषय का सामना करता है तो वह यह सोचता है कि अभ्यास के माध्यम से वह समझ सकता है। जब किसी व्यक्ति को नौकरी या प्रतियोगिता में असफलता मिलती है तो अंजलि जी, हम देखते हैं कि वह अपनी तैयारी की समीक्षा कर सकता है और अपने प्रयास को बेहतर बनाने का प्रयास कर सकता है।
1: बिल्कुल मनीषा, डॉक्टर कलाम एक वैज्ञानिक थे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है सवाल पूछना, प्रमाण तलाशना और किसी बात को समझने के लिए तर्क का उपयोग करना। हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी श्रोता साथियों, यह सोच बहुत उपयोगी है। यदि किसी फसल में रोग लग रहे हैं तो केवल अनुमान लगाने के बजाय कृषि विशेषज्ञ से जानकारी लेना उपयोगी है। यदि किसी बच्चे को बार बार बुखार आ रहा है तो घरेलू धारणाओं पर निर्भर रहने के बजाय स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। यदि मोबाइल पर कोई संदेश आता है तो किसी योजना के तहत सभी लोगों को तुरंत पैसे मिलेंगे तो अपनी निजी जानकारी देने से पहले आधिकारिक स्रोत की पुष्टि करें। वैज्ञानिक सोच हमें हर पुरानी बात को गलत मानना नहीं सिखाती, वह हमें यह समझने में मदद करती है कि किस परंपरा, दावे या जानकारी को उसके कारण, प्रमाण और प्रभाव के आधार पर कैसे परखना है। इसलिए श्रोता साथियों, डॉक्टर कलाम से प्रेरणा लेते हुए हम अपने बच्चों और युवाओं को सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करें, गलत उत्तर देने के डर से उन्हें चुप न कराएं। यदि हमें स्वयं किसी सवाल का जवाब नहीं मालूम तो मिलकर जानकारी खोजें, ऐसी चीजें हमें करनी चाहिए।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि किसी व्यक्ति की महानता केवल उसकी उपलब्धियों से नहीं बल्कि उसके चरित्र से भी निर्धारित होती है। डॉक्टर कलाम अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, लेकिन श्रोता साथियों, उन्होंने सादगी, विनम्रता को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा माना है। यदि श्रोता साथियों, वे विद्यार्थी से हम देखते थे अंजलि जी कि वे विद्यार्थी से संवाद करते थे, शिक्षकों का सम्मान करते थे और ज्ञान को जीवन भर सीखने की प्रक्रिया मानते थे। उनका यह संदेश श्रोता साथियों हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ईमानदारी किसी की स्थायी सफलता की श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि ईमानदारी है वो किसी की स्थायी सफलता की नींव होती है। यदि कोई व्यक्ति छल, धोखा या अनुचित संसाधनों के माध्यम से किसी को ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है तो अंजलि जी हम देखते हैं कि वो अपने जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं कर सकता। साथ ही साथियों कहना चाहेंगे कि अगर हम अपने जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो हमारे जीवन में सादगी और ईमानदारी और विनम्रता बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल मनीषा, कलाम का जीवन देश के वैज्ञानिक विकास और राष्ट्रीय प्रगति से गहराई से जुड़ा रहा है। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और रक्षा अनुसंधान से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों में योगदान दिए हैं। वे भारत के 11वें राष्ट्रपिता बने और विशेष रूप से बच्चों और युवाओं के बीच अपने प्रेरक विचारों के लिए याद किए जाते हैं। उनके जीवन से यह संदेश मिलता है कि देश के विकास के लिए केवल बड़े पदों पर बैठे लोगों का योगदान पर्याप्त नहीं है, हर नागरिक अपनी जगह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एक शिक्षक ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाकर देश का भविष्य बदल सकता है। एक किसान सुरक्षित और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाकर खाद्य सुरक्षा में योगदान देता है। एक स्वास्थ्यकर्मी लोगों को सही स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ता है। एक महिला अपने परिवार और समुदाय में शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक निर्णयों में भागीदारी बढ़ाकर समाज को आगे ले जा सकती है। इसी तरह युवा अपने गाँव में पुस्तकालय की व्यवस्था बनाने, बच्चों को पढ़ाई में मदद करने, पानी बचाने, स्वच्छता अभियान चलाने या शिक्षित जानकारी साझा करने जैसी पहलों में योगदान दे सकते हैं। देशभक्ति केवल बड़े नारों में नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाने में दिखाई देती है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, नियमों का पालन करना, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना, जरूरतमंद लोगों की सहायता करना भी जिम्मेदार नागरिकों होने की पहचान है। हम अक्सर सोचते हैं कि देश में बदलाव लाने के लिए कोई बड़ी संस्था या बड़ा बजट या बड़ा पद होना जरूरी है, लेकिन बदलाव की शुरुआत स्थानीय स्तर से भी हो सकती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज का विद्यार्थी ऐसे समय में जी रहा है जब प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और तकनीकी है वो तेजी से बदल रही है। इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल माध्यम उन्हें ज्ञान प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध कराए हैं, लेकिन श्रोता साथियों इनके साथ ही ध्यान भटकने, तुलना करने और तुरंत सफलता पाने की उचित जो चुनौतियां हैं वो भी अंजलि जी बढ़ती जा रही हैं। ऐसे समय में श्रोता साथियों डॉक्टर कलाम के विचार हमारे लिए बहुत ही प्रासंगिक हो जाते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए, हमें दूसरों की सफलता देखकर निराश होने के बजाय उनसे सीख लेनी चाहिए। कहना चाहेंगे साथियों कि सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली उपलब्धियां किसी व्यक्ति के पूरे संघर्ष की दिशा तय नहीं करती हैं। वास्तविक सफलता के पीछे अंजलि जी हम देखते हैं कि अक्सर कई वर्षों का अभ्यास, असफलताएं और धैर्य छिपा होता है। इसीलिए साथियों हमें अपनी तुलना दूसरों से करने के बजाय अपनी प्रगति पे ध्यान देना चाहिए।
1: बिल्कुल मनीषा, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से श्रोता साथियों को इस बात को समझाना चाहेंगे कि किसी व्यक्ति का सपना पूरे समुदाय के सहयोग से किस तरीके से आगे बढ़ सकता है। श्रोता साथियों, एक गांव में आरती नाम की लड़की रहती थी। उसे पढ़ाई में रुचि थी, वह आगे चलकर विज्ञान की शिक्षिका बनना चाहती थी, लेकिन उसके गांव में उच्च कक्षाओं की पढ़ाई के साधन सीमित थे। घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत नहीं थी। धीरे धीरे आरती को लगने लगा कि शायद उसका सपना केवल सपना ही रह जाएगा। एक दिन विद्यालय में शिक्षक ने विद्यार्थियों से उनके भविष्य के बारे में पूछा। आरती ने झिझकते हुए अपनी इच्छा जताई। शिक्षक ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसे अपनी पढ़ाई की योजना बनाने में मदद की। उन्होंने बताया कि किस विषय पर ध्यान देना जरूरी है और छात्रवृत्ति और आगे की पढ़ाई से संबंधित जानकारी कहाँ से मिल सकती है।
0: बिल्कुल।
1: आरती ने नियमित अध्ययन शुरू किया। कुछ विषय कठिन लगते थे, इसलिए उसने अपने साथ

0: समझना है कि व्यक्तिगत प्रयास के साथ सही मार्गदर्शन, परिवार का सहयोग, शिक्षा के अवसर और समुदाय की भागीदारी भी जरूरी है। आरती का सपना तभी आगे बढ़ पाया जब उसने खुद प्रयास किया, उसके आसपास के लोगों ने उसके प्रयास को महत्व दिया। हमारे गांव में भी ऐसे कई बच्चे और युवा हो सकते हैं जिनके भीतर प्रतिभा है, लेकिन उन्हें केवल सही जानकारी, प्रोत्साहन या एक अवसर की जरूरत है। हम किसी का पूरा भविष्य तय नहीं कर सकते, लेकिन उसके रास्ते में आने वाली बाधाओं को कम करने में सहयोग जरूर कर सकते हैं। डॉक्टर कलाम के जीवन से मिली प्रेरणा यह व्यवहारिक रूप हमें देती है कि अपने सपने के लिए मेहनत करना और दूसरों को भी आगे बढ़ने का अवसर हमें देना चाहिए।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो चुकी हैं।
0: जी हाँ।
1: और समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ से विदा लेना चाहेंगे और आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ वाग रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल को
0: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन के भरपूर तत्व में करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके, जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है। होवे भाई बोलो, आ लक्षण आपने अपने में देखा है, तो आपने अपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में जाइए, एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे। आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार में गोरी निःशुल्क मिले है। होवे एनीमिया तकी बचा बल्ले आपने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे। होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दाल खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा। वागर रेडियो एवं वागतरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेषर। स्वागत करती हूं दोस्तों आप सभी का हमारे आज के इस कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम कार्यक्रम का सिलसिला हमारा आपके साथ बना रहता है सोमवार से शनिवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। और इसी बीच दोस्तों आप अपनी फरमाइश गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे कार्यक्रम में नए हैं और आप भी अपनी फरमाइश की गीत सुनना चाहते हैं, हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ज़रूर पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। आपको करना कुछ नहीं है, आपको लिखना है फिल्म का नाम, गीत के बोल, आप कहां से इस फरमाइश को सुनना चाह रहे हैं वहां का आपको नाम लिखना है, साथ ही फरमाइशकर्ताओं के नाम लिखकर भेज देना है व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। हमारा नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, हमें इंतज़ार रहेगा आपके फरमाइश गीतों का। अब जैसा कि कार्यक्रम में फरमाइशों का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो मैं बढ़ना चाहूँगी हमारी पहली फरमाइश के गीत की ओर। दोस्तों पहली फरमाइश हमारे बीच आई है बलकेश्वर कॉलोनी आगरा से। फिल्म का नाम है कबूल, गीत के बोल हैं तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं सरिता चौरसिया, सुमित चौरसिया कानपुर से हैं, सुजाता चौरसिया, पंकज चौरसिया, दीहू और पीहू दिया चौरसिया जी। इसी बीच हमारे और भी श्रोता साथी जुड़ रहे हैं पंडरपुर सिटी से, प्रशांत सिंधे, सुनीता सिंधे, यशा सिंधे, सिंधे कृष्णा घोड़के जी। और भी हमारे दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं इसी गीत के साथ मस्तान पुन्ना से, अनंता भगत, अरुणा चेतन, सुलोचना भगत, चेतन भगत। मोहाली पंजाब से जुड़ रहे हैं बबल मल्होत्रा, प्रकाश मल्होत्रा। बागपत उत्तर प्रदेश से जुड़ना चाह रहे आसिफ अली खान, मोमिन अनास, मुस्कान सादिक अली खान, सारिक अली खान। और भी हमारे दोस्त जुड़ना चाह रहे अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गुणाने, अर्चना गुणाने, हीरामन शंडे, प्रणय प्रसिद्धि जी। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूंगी, रघुवीर नगर से। फिल्म का नाम है सौदागर। गीत के बोल हैं श्रोता साथियों, ये इलो इलो क्या है, ये इलो इलो। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं दिलावर खान, हसीना बानो, एलियाज नायब, लड्डू जी और भी हमारे श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। मैं आपको नाम बताना चाहूँगी, गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं शिशपाल अकेला, तेजपाल प्रजापति जी और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं, अजित कसना, मया देवी, ऋतिक आदित्य कसाना जी। मुरादाबाद से अजित कसना, मया देवी, ऋतिक आदित्य कसाना, लदावली से जुड़ रहे हैं ये। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं गुणवंत श्रीवास, करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक श्रीवास, आयुष श्रीवास। छत्तीसगढ़ से मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमो, मानस राज। तो आइए दोस्तों, मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल हैं ये इलो इलो क्या है, ये इलो इलो। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूंगी। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों, ये फरमाइश आई है धमतरी छत्तीसगढ़ से। पत्थर के फूल गीत के बोल हैं, कभी तो छलिया लगता है। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में, फतेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हियांश कुमार चंदन और भी हमारे श्रोता साथी इस गीत के साथ जुड़ रहे हैं। मुंडा टोला डोरी लोहारा से हैं डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम, चंचल नेताम, माहिर नेताम, कामेश नेताम जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाहते हैं। आपको नाम बताना चाहूंगी, मेरठ से हैं अनिल जैन, सेम जैन, मुस्कान मास्टर, जीवीएम जैन, आदि जैन, अंश जैन, भव्यजन, अंशिका जैन। तो आइए दोस्तों मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल हैं, कभी तो छलिया लगता है, कभी दीवाना लगता है।

श्रोता साथी, उस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूंगी दोस्तों। फिल्म का नाम है सिर्फ तुम, गीत के बोल हैं एक मुलाकात जरूरी है सनम। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम, चंचल नेताम और भी हमारे दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं और सुनना चाहते हैं इसी गीत को। छत्तीसगढ़ से हैं नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पुनाराम देवांगन, कृष्णा देवांगन जी। खोपटी महाराष्ट्र से हैं बंडू लोहार, चंद्रकला पोपलगढ़, देवीदास पोपलगढ़, हरिबाऊ बेड़वे, बंडू पोपलगढ़ जी। भोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार और भी साथी जुड़ रहे हैं। डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद मंदुरकर, कुमार गुरु मंदुरकर। यवतमाल से हैं निशा रानी नागरिकल, निनेश नागरिकल, आरव अर्पिता जी। इसी बीच हमारे साथी जुड़ना चाह रहे हैं दुर्गा कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट, अंकित कांगड़ा। तो आइए श्रोता साथियों, मनोरंजन कर लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल हैं एक मुलाकात जरूरी है सनम। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, जैसा कि फरमाइशों का सिलसिला कार्यक्रम के माध्यम से बहुत अच्छा चल रहा है, ढेरों फरमाइशों के गीत और कह सकते हैं कि फरमाइश गीतों के साथ हम मनोरंजन कर रहे हैं साथियों, इसी बीच बढ़ते हैं फिर से हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूँगी। फिल्म का नाम है विजय पथ, गीत के बोल है राह में उनसे मुलाकात हो गई। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक जी, और भी हमारे दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं इसी गीत के साथ में। आपको मैं नाम बताना चाहूंगी, साथ ही जुड़ रहे हैं नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवाड़कर, निमन नवाड़कर, विशाल नवाकर महाराष्ट्र से हैं, सोपान ताइडे, नारायण इंगले, आशीष मोहेरकर जी, श्री रामपुर से जुड़ रहे हैं अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहित दले, इश्के दले, जीविका दले, सनिका दले, पुनावले पुड़े से हैं अजय सोनवानी, करिश्मा सोनवानी, अविका सोनवानी, विशाखा सोनवानी जी, श्री रामपुर से जुड़ रहे हैं अशोक कुमार, रविका, जीविका, सानू कुमार, अर्चना कुमार, पुनावले से अजय सोनवानी, करिश्मा सोनवानी, अविका सोनवानी, शायसा सोनवानी जी, लोरमी चिचड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ मरावी जी, साथियों डुमराव बिहार से जोड़ रहे हैं डब्ल्यू अंसारी, सोनम अदीबा, दानिश अंसारी जी, बक्सर से एजरा अंसारी खातून, एहताब मेहताब और कल्लू मल्लू अंसारी जी। तो आइए श्रोता साथियों मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल हैं राह में उनसे मुलाकात हो गई।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूंगी, सहारनपुर से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों फिजा, गीत के बोल हैं आजा माहिया। फरमाइश करता जुड़ रहे हैं मसूर हसन, शाइना हसन अक्सा, अदीब नाजमा, आफिया इब्राहिम, सद्दाम जी। और भी हमारे श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में, ताज बदन सारी गुलाम शाबी रही मेहराज जहां, जोधपुर राजस्थान से रमेश चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और हिमांश जी। और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं नेहरू चौक पैठन से सुरेश जाधव, नीता जाधव, आरती प्रसाद, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव। तो आइए श्रोता साथियों मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल हैं आजा माहिया, तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, जैसा कि कार्यक्रम का सिलसिला बना हुआ था सुबह 11 बजे से, जिसे आप सुन पा रहे थे प्रस्तुतकर्ता कशिश पारेशर के साथ में, आप इसे सुन पाएंगे मेरे साथ में, यानी कि आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में। साथियों, इसी सिलसिले को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है नेहरू चौक पैठण से। फिल्म का नाम है दिल से, गीत के बोल हैं छल छैया छैया। इस गीत की फरमाइश करता है डॉक्टर सुरेश जाधव, अनिता जाधव, आरती जाधव, पुषा जाधव, प्रसाद जाधव, सोनम जाधव, बेबी सिया जाधव। जलाना शहर से जुड़ना चाह रहे हैं सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, चंदन जाधव, एकता जी जाधव और संगीता जी जाधव। इस गीत के अनुरोध करता है सदर बाजार मारवाड़ भिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्रन चौहान, जी नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक जी चौहान। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं जाखोत राजस्थान से शंभुदाल खटक, विमला देवी खटक, अंबरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा जी खटक। इस गीत के अनुरोध करता है बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फुरुद्दीन अब्बासी, सुहानजी अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। तो आइए साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है दिल से, गीत के बोल ही चल छैया छैया। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है यताला महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है उपहार, गीत के बोल है मैं एक राजा तू एक रानी। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी जी ने। इस गीत की फरमाइश करता है शंकरलाल जयसवाल, गणेशलाल जयसवाल, शिवप्रसाद जयसवाल, अपर्णव जयसवाल, दुर्गेश्वरी जयसवाल, राखी जयसवाल और तृप्ति जी जयसवाल। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं खड़वा मध्य प्रदेश से बेबी सालिया खत्री, बेबी आयशा खत्री, बेबी जिखरा जी खत्री। खड़वा से जुड़ना चाह रहे हैं शाहिद हसैन और अनस भाई जी। इस गीत की अनुरोध करता है जैन मंदिर वाले गरी गुरावली से साहिद हुसैन अंसारी, नरसी अंसारी, नूरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद फेक जी अंसारी। धनोरी तेलीवाला से जुड़ रहे निसार सलमानी, नौसाद सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू। जाफराबाद से जुड़ना चाह रहे हैं श्री सुधाकर राज यादव, प्रशांत राज यादव, जंगुताई राज यादव, कुमारी सचिन, कुमार सचिन, प्रथमेश सरवद, हर्षिता और सानवी जी देशमुख और प्रणाली जी देशमुख। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं मैं एक राजा तू एक रानी। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।
1: मैं एक राजा

0: आइए साथियों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है दादरी गेट भवानी से। फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन, गीत के बोल ही आंख है भरी भरी। इस गीत की फरमाइश करता है कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुन्हाजी मेहरा। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं सरगांव छत्तीसगढ़ से, दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति वर्मा, शिवांशी वर्मा। इस गीत के अनुरोध करता है महाराष्ट्र से रानी रामा, सुरभि और केदार जी। वासिम महाराष्ट्र से जुड़ना चाह रहे मास्टर विठल सुरेशी, सुषमा सुरेशी, परिधि सुरेशी, मायरा सुरेशी। इस गीत के अनुरोध करता है आकोट से विनायक भिंडी, श्रीमती मंगला जी भिंडी, विजय शुभम, पवन जरी और सजीव जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा, नोखीलाल जी वर्मा। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है, गीत के बोल ही आंख है भरी भरी। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाग रेडियो 90.8 FM पर।
1: बेटा आंसू पी के भी जो मुस्कुराए वही तो जमाने को जीत पाए।

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है चूरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से। फिल्म का नाम है अवतार। गीत के बोल ही चलो बुलावा आया है। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने और महेंद्र कपूर जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, माला ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानु शानू, बब्बन मीनू काना, हरिप्रिया जी ठाकुर। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। अमरावती से हीरामन शिंदे, सिद्धार्थ जी गोड़ानी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दली, सविता दली, अनिकेत दली, रोहिणी दली, ऋषिकेश दली, जीविका दली, सानिका जी दली। पुनावले पुणे से जुड़ रहे हैं अजय सोनू ने, करिश्मा सोनू ने, अविका सोनू ने, विशाखा सोनू ने जी। श्रीरामपुर से जुड़ना चाह रहे डी अशोक कुंभार, अविका जीविका, सोनू कुंभार, अर्चना जी कुंभार। पुनावले से जुड़ रहे हैं अजय सोनू ने, करिश्मा सोनू ने, अविका सोनू ने और साइशा सोनू ने जी। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही चलो बुलावा आया है। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM।

अयशोदा साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है रजिया सुल्तान। गीत के बोल ही जलता है बदन। इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है चन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, संजुगिता श्रीवास, रंजन शाहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हेमंत नामदेव, नंदनी नामदेव, नेहा नामदेव, निशा नामदेव, छन्नूलाल श्रीवास, रंजन शाहू जी। यूपी से जुड़ना चाह रहे हैं सुरेश चौरासिया, श्रीमती सरोज चौरासिया, शिवा शिवानी जी चौरासिया। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ से गुणवत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक जी श्रीवास, बेबी आयुष श्रीवास। बेलतारा छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं मोहन सिंह राज, अनिता राज, सोमे सोमो और मानस सिंह राज। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही जलता है बदन। इस गीत को आवाज़ दी है लता जी ने। तो आइए साथियों सुनते हैं श्रोता साथियों की फरमाइश की इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

Yeah.

0: मदहोशियां तेरी, ये सियाकारियां तेरी, ये खूनी रंगीनियां तेरी, तेरी सल्तनत का तख्ता उलट देने को है।
1: आइए श्रोता साथियों, इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है आगरा से। फिल्म का नाम है रंग, गीत के बोल ही तुझे ना देखो तो चैन मुझे आता नहीं है। इस गीत को आवाज दी है अलका जी ने और कुमार सोनू जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है श्रीमती सरिता चौरासिया, सुमित चौरासिया, वीर और अभिरजी चौरासिया। कानपुर से जुड़ना चाह रहे श्रीमती सुजाता चौरासिया, पंकज चौरासिया, पीयू और दियाजी चौरासिया। और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनीजा, पुनम गगनीजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा जी। झारखंड से जुड़ रहे मोहम्मद यासीन अंजान, साइना नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया जी। इस गीत के अनुरोध करता है उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान नाज, नवाजिक शेख, दानिश शेख, कमन अफरीदी जी। सहारनपुर उत्तर प्रदेश से जुड़ना चाह रहे हैं राधा नामदेव, अभिषेक नामदेव, अपनाज नामदेव। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत की बोल ही तुझे ना देखो तो चैन मुझे आता नहीं है। इस गीत को आवाज़ दी है अलका जी ने और कुमार सोनू जी ने। तो आइए साथियों सुनते हैं श्रोता साथियों की फरमाइश के इस गीत को।

श्रोता साथियों, भी हमने अलका जी और कुमार सोनू जी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थी, तुझे ना देखूँ तो चैन मुझे आता नहीं है। इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है मस्तानपुरा सी। गीत के बोल हैं, भर दो झोली मेरी। इस गीत की फरमाइश करता है अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत, सुलोचना जी भगत और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। छत्तीसगढ़ से महेंद्र मरकाम, जया मरकाम, गजेंद्र मरकाम, राजेंद्र जी, ज्वंती, ममता जी, मंजू, मानसी, सुरेंद्र मरकाम। बरेली से जुड़ना चाह रहे मोहम्मद यासीन अंसारी, शमशील अंसारी, नरसिंह अंसारी, शमा अंसारी, महिनूर जी अंसारी और अंसारी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। श्रीरामपुर महाराष्ट्र से जुड़ना चाह रहे नासिर शेख, नाहिद शेख, अहमदनगर से जुड़ना चाह रहे हैं जुमेद मुजावर, सबिहा मुजावर, मिखाइल जी मुजावर, जुमेब जी मुजावर। छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं नरेन नेताम, कुसुम जी नेताम। इससे भी जुड़ना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इजनान, नरगिस जी खातून। जमशेदपुर से जुड़ना चाह रहे हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया, तमन्ना जी भाटिया। इस गीत के अनुरोध करता है पंजाब से सुभाष गोदरा, विमला गोदरा, इंदु पार्वती, हिमांशु जी गोदरा और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रही हैं। पत्रोट से विजय अंबटेकर, सुनीता अंबटेकर, अक्षय अंबटेकर, राधिका अंबटेकर, ऋषिकेश जी अंबटेकर। इस गीत के अनुरोध करता है कुंभार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन, पांडुरंग जी कुंभार। इसी बीच जुड़ना चाह रहे पटियाला दुर्ग से संजय कुमार शाहू, शजिया शाहू, शशांक शाहू, सीमाजी शाहू। खड़वा से जुड़ना चाह रहे हैं अब्दुल गफ्फार डावर जी, अब्दुल हक डावर जी, जिया हक डावर जी, मोहम्मद उमर डावर जी। भाटापारा छत्तीसगढ़ से जुड़ रही हैं सोहन जोशी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं सिंडी से सुरेश मालोदी, वर्षा मालोदी, श्रद्धा मालोदी, मानसी मालोदी। इस गीत के अनुरोध करता है मलियाना सरधाना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन। सरधाना मेरठ से जुड़ रहे हैं आदि जैन, अंश जैन, भव्यजी जैन। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से जुड़ रही महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी गोस्वामी, टिम्पल डिम्पल, मीनाक्षी निशा और तुलसी जी गोस्वामी। नेपानगर मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नितिन शाह, शुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। गोरखेड़ा पित्रामल से जुड़ रहे हैं विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मय मुणत, चेतन नाहटा, दिला दीक्षा और कोश जी पवार। इस गीत के अनुरोध करता है भीड़ शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, अंजलि करवा, बाल प्रसाद करवा, जयश्री मिलेत्री, रामनिवास अग्रवाल, धनजय बिट्टू, बीबी कुटलेश जी। नवाशहर पंजाब से जुड़ रहे हैं गंगादीप थांदी, दीप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बीबी वामिका पानी जी थांदी। खेल बाजार पानीपत से जुड़ना चाह रही नरेश मल्होत्रा, लक्ष्मी मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापाजी नानक चंद मल्होत्रा। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से जुड़ रही हैं पीयूष सिक्का, कुनिका सिक्का, डुग्गू सिक्का, भाविका जी सिक्का। धुलापुर उत्तर प्रदेश से जुड़ना चाह रही हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाज पंकज, काजल सीमा, मानवी तनवी, लक्ष्य सोहिनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह जी। टिकमगढ़ मध्य प्रदेश से जुड़ना चाह रही पजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरविंदर सिंह चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, अंकिता जोशी, लक्ष्मी ध्रुव, बेबी वेदय जोशी, बेबी हंसिका जी जोशी। जगदलपुर छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं पूनम जी नायडू। खड़वा मध्य प्रदेश से जुड़ना चाह रही हैं अब्दुल गफ्फार डावर जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाघ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारे आज के कार्यक्रम कैसे लगे, उसके लिए आप अपने डायल सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोताओं, दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति को सभा समाप्त करने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ हम दोबारा मिलेंगे अगली सभा में। तब तक के लिए नमस्कार।

श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाक रेडियो 90.8 FM और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट। साथियों, अब वक्त है शाम के खास कार्यक्रमों का जो आपके हर पल को बनाएगा खास, तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए आज के शाम के कार्यक्रम की रूपरेखा। साथियों, शाम 5 बजे शुरू होगा कार्यक्रम आराधना, भक्ति शांति और सुकून से भरे सुरों के साथ दिन भर की थकान को अलविदा कहने का समय। इसी के साथ अगला कार्यक्रम होगा शाम 5:30 पर युवाओं की आवाज, जहां सपने बोलते हैं, विचार उड़ान भरते हैं और युवा अपनी बात खुलकर रखते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी आपके रेडियो साथी जागृति भट्ट यानी कि मैं और कशिश पाराशर। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है श्रोता साथियों शाम 6 बजे कार्यक्रम सच्चा बचपन। इसे लेकर आएंगी हमारे रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे बच्चों की मासूमियत, मुस्कान और बचपन की यादों से भरा प्यारा सा सफर। अगली कड़ी में हमारा कार्यक्रम है खेतीबाड़ी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। ये कार्यक्रम किसानों के काम की बात, जमीन से जुड़ी सच्ची जानकारी और अनुभव है। इसे लेकर आएंगे हमारे रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट यानी के मैं। श्रोता साथियों, जैसे कि कार्यक्रमों की रूपरेखा चल रही है तो हम अगला कार्यक्रम आपको बताते हैं। अगला कार्यक्रम शुरू होगा 7 बजे और इस कार्यक्रम का नाम है सच्चा स्वराज। साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे समाज, सोच और सच्चाई से जुड़ी आवाज जो हमें जागरूक बनाती है। अगली कड़ी में हमारा कार्यक्रम होगा हमारा स्वास्थ्य, जो कि सेहत और सम्मान की बातों के साथ होगा। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। इसे लेकर आएंगी आरजे कशिश पाराशर और हमारे रेडियो साथी मनीषा पटेल। अगली कड़ी में हमारा कार्यक्रम है समस्या समाधान, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 8 बजे। तो श्रोताओं, जैसे कि कार्यक्रमों की रूपरेखा मैं आपको बता रही हूँ तो अंत में आप सुनेंगे रात 9 बजे शाम में कसले। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सुनेंगे अल्फाज जो छू जाए, एहसास जो ठहर जाए, सुकून भरी रात की शुरुआत। तो श्रोताओं, शाम की घड़ियां यूं ही नहीं गुजरती, ये वो पल है जहाँ भक्ति भी है, युवा सोच भी है, बचपन की हंसी भी है, किसान की मेहनत भी है, सच की आवाज भी है, सेहत और सम्मान की बात भी है, संगीत का जादू भी है और गजलों का सुकून भी है। यही है हमारी शाम और यही है हमारा वागर रेडियो। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना से।

0: भविष्य के आधार पर सब आज का निर्णय लेना चाहते हैं। भविष्य में सुख मिले, भविष्य सुरक्षित हो, ऐसे निर्णय आज लेने का प्रयत्न रहता है सबका।
1: आप अपने जीवन को देखिए, क्या आपके अधिकतर निर्णय के पीछे भविष्य का विचार नहीं होता?
0: और हो भी क्यों ना, अपने जीवन को सरल और सुखमय बनाने का प्रयत्न करने का अधिकार सबका है।
1: पर भविष्य तो कोई नहीं जानता, केवल कल्पना ही की जा सकती है। तो जीवन के सारे महत्वपूर्ण निर्णय कल्पनाओं के आधार पर ही करते हैं हम। क्या निर्णय करने का कोई तीसरा मार्ग हो सकता है? विचार कीजिए। सारे सुखों का आधार धर्म है और वो धर्म मनुष्य के हृदय में बसता है। तो प्रत्येक निर्णय से पूर्व स्वयं अपने हृदय से ये प्रश्न अवश्य पूछ लेना कि ये निर्णय स्वार्थ से जन्मा है या धर्म से। क्या इतना पर्याप्त नहीं? भविष्य के बदले धर्म का विचार करने से क्या भविष्य अधिक सुखपूर्ण नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए।

0: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जो नदिया है ये रुके जाएगा, खेतर बंजर थे जाएगा, ने आपड़ो जीवन जो है ये भी रुके जाएगा। ओ अंजलि बुन, इतले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है। होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है। होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा। होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो, जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। थारी में पासो लावो चूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा ज्वार रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी ना तू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राखंगा। बागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: लेकर हाजिर है श्रोताओं कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातचीत का विषय रहने वाला है कि हम सुनते सबकी है लेकिन समझते किसकी है।
0: बिल्कुल,
1: जैसा कि कशिश, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हम एक सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या श्रोताओं आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से अपनी बात कह रहे हो और सामने वाला आपकी बात सुन तो रहा हो लेकिन उसे समझने की कोशिश ही ना कर रहा हो। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आप अपने मन की बात किसी को बताना तो चाहते हो लेकिन आपको डर लगता है कि कहीं वो आपको गलत ना समझ ले? और क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी दूसरे की बात सुनी लेकिन उसे समझने से पहले ही उसके बारे में अपनी राय बना ली? अगर ऐसा आपके साथ हुआ है श्रोताओं, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में ये समस्या हमारे परिवारों में, दोस्तों के बीच, स्कूल कॉलेजों में, कार्यस्थल पर और समाज में भी दिखाई देती है।
0: बिल्कुल,
1: जैसा कि कशिश, हम दिन भर न जाने कितने लोगों से बात करते हैं कशिश, घर में माता पिता से बात करते हैं, भाई बहनों से, दोस्तों से, सहकर्मी से और मोबाइल फोन के माध्यम से अनजान लोगों से भी। हम दूसरों की बातें भी सुनते हैं, अपनी बातें भी बताते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट भी पढ़ते हैं, वीडियो भी देखते हैं और अलग अलग विचारों से रूबरू भी होते हैं।
0: जी हाँ।
1: लेकिन श्रोताओं, क्या हमने कभी खुद से पूछा है कि इन सबके बीच हम वास्तव में कितने लोगों को समझ पाते हैं?
0: बिल्कुल,
1: तो आज इन्हीं बातों को लेकर हम हाजिर होंगे लेकिन शुरुआत में हम सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत।
0: जी बिल्कुल, तो दोस्तों आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय आपको बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि हम सुनते सबके हैं लेकिन समझते किसके हैं, ये हमें जानना है। जागृति जी, सुनना और समझना दोनों अलग अलग बातें होती हैं। हम देखते हैं कि सुनने का मतलब है किसी की कही हुई बात को हमारे कानों तक पहुंचाना, जबकि समझने का अर्थ होता है उस बात के पीछे छिपे भाव, परिस्थिति, अनुभव और जरूरत को महसूस करने की कोशिश करना।
1: बिल्कुल।
0: कई बार कोई व्यक्ति कहता है कि वह ठीक है लेकिन उसके चेहरे पर उदासी हमें दिखाई देती है। कोई युवा कहता है कि उसे अपने भविष्य की चिंता है लेकिन लोग उसे गैर जिम्मेदार कहकर उसकी बात को टाल देते हैं। कोई बच्चा अपनी परेशानी बताना चाहता है साथियों, लेकिन उसे ये कहकर चुप करा दिया जाता है कि अभी तुम छोटे हो, तुम्हें क्या ही पता चलता होगा। कोई बुजुर्ग अपने पुराने अनुभव साझा करना चाहते हैं लेकिन नई पीढ़ी उन्हें पुरानी सोच का व्यक्ति समझकर अनसुना कर देती है।
1: जी हाँ,
0: यानी कि जागृति जी, ऐसे में सवाल हम सभी के सामने ये है कि जब हम सब बोल रहे हैं, सब सुन भी रहे हैं, तो फिर एक दूसरे के बीच गलतफहमियां इतनी क्यों बढ़ रही है? श्रोता साथियों, शायद इसकी एक बहुत बड़ी वजह है और वो ये है कि हम दूसरों की बात समझने से पहले उसका जवाब तैयार करने लगते हैं। हम सामने वाले की पूरी बात सुनने के बजाय ये सोचने लगते हैं कि अब हमें क्या कहना है।
1: बिल्कुल।
0: कभी हम अपनी सोच को सही साबित करने लग जाते हैं तो कभी कभी सामने वाले की बात को, जागृति जी, हम अपने अनुभवों के आधार पर ही गलत मान लेते हैं।
1: जी हाँ।
0: इसलिए आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा जो विषय है कि हम सुनते सबकी हैं लेकिन समझते किसकी हैं, ये हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल कशिश, तो आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं। हमारी बातचीत में समझ की कमी क्यों आ रही है, युवाओं के जीवन में इसका क्या असर पड़ रहा है और हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करके दूसरों को बेहतर तरीके से कैसे समझ सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो आइए श्रोताओं, शुरू करते हैं आज की ये खास चर्चा को। जैसा कि कशिश, किसी की बात सुनने के लिए हमें केवल कुछ समय चाहिए होते हैं लेकिन किसी को समझने के लिए हमें समय के साथ धैर्य, संवेदनशीलता और खुले विचारों की भी जरूरत होती है।
0: बिल्कुल।
1: मान लीजिए श्रोताओं कि एक युवा अपने परिवार से कहता है कि वो अपने करियर में कुछ अलग करना चाहता है। वो पारंपरिक रास्ते के बजाय अपनी रुचि के अनुसार किसी दूसरे क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है। परिवार के सदस्य उसकी बात सुनते हैं लेकिन तुरंत कहते हैं कि इस क्षेत्र में भविष्य नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: लोग क्या कहेंगे, तुम्हें वही करना चाहिए जो हम कह रहे हैं। या परिवार ने उसकी बात सुनी लेकिन क्या उसकी रुचि, उसके सपने और उसकी योजनाओं को समझने का प्रयास किया?
0: बिल्कुल।
1: हो सकता है श्रोताओं की परिवार की चिंता गलत न हो। माता पिता अपने बच्चों को सुरक्षित भविष्य देना चाहते हैं, ये हम सभी जानते हैं। वहीं दूसरी ओर युवा भी अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं। समस्या तब पैदा होती है श्रोताओं जब दोनों पक्ष एक दूसरे की बात को समझने के बजाय अपनी बात मनवाने में लग जाते हैं।
0: जी हाँ।
1: अगर परिवार युवा से पूछे कि तुम्हारी योजना क्या है, तुमने क्षेत्र के बारे में क्या जानकारी जुटाई है और हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं, तो बातचीत का परिणाम अलग हो सकता है।
0: बिल्कुल।
1: इसी तरह युवा भी परिवार की चिंताओं को समझने का प्रयास करे श्रोताओं, तो दोनों के बीच बेहतर तालमेल बन सकता है।
0: जी हाँ जागृति जी, और इस उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं कि हर असहमति का अर्थ दुश्मनी नहीं होता।
1: बिल्कुल।
0: कई बार श्रोता साथियों, दो लोग एक दूसरे का भला तो चाहते हैं लेकिन उनकी सोच, अनुभव और परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। ऐसे में समझदारी का मतलब हर बात से सहमत होना नहीं होता बल्कि असहमत होते हुए भी एक दूसरे की बात का सम्मान करना है।
1: बिल्कुल कशिश।
0: जैसा कि जागृति जी, हमारे समाज में अक्सर ये मान लिया जाता है कि जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है वही अपनी बात अच्छी तरह रखता है।
1: जी हाँ।
0: लेकिन वास्तव में अच्छा संवाद केवल बोलने से नहीं बनता श्रोताओं, उसमें सुनने की इच्छा, सवाल पूछने का तरीका और सामने वाले के विचारों को जगह देने की क्षमता भी शामिल होती है। इसलिए हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि क्या हम बातचीत इसलिए करते हैं कि हमें दूसरों को समझना है या इसलिए करते हैं कि हमें अपनी बात सही साबित करनी है।
1: जी हाँ कशिश, और हम देखते हैं कि आज का युवा ऐसी दुनिया में जी रहा है जहाँ जानकारी की कमी नहीं है। मोबाइल है, फोन है, इंटरनेट है और इन सब के माध्यम से कुछ ही सेकंड में हम दुनिया के किसी भी कोने की खबर जान सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: श्रोताओं, सोशल मीडिया पर हजारों लोगों के विचार पढ़ सकते हैं और अपनी बात भी आसानी से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं।
0: जी जी।
1: लेकिन इतनी अधिक जानकारी और संवाद के बावजूद क्या हम एक दूसरे को पहले से बेहतर समझ रहे हैं? ये सवाल सोचने लायक है। आज हम देखते हैं कशिश की, कई बार किसी संदेश का जवाब देर से आने पर हम मान लेते हैं कि सामने वाला हमें नजरअंदाज कर रहा है।
0: बिल्कुल।
1: कोई हमारी पोस्ट पर प्रतिक्रिया नहीं देता है तो हमें लगता है कि उसे हमारी परवाह नहीं है। कोई हमारी बात से सहमत नहीं होता तो हम उसे गलत समझने लगते हैं।
0: जी हाँ।
1: जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग भी हो सकती है। हो सकता है श्रोताओं कि सामने वाला व्यस्त हो, किसी परेशानी में हो या उसे जवाब देने के लिए थोड़ा समय चाहिए हो। तो श्रोताओं, हम आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि इसका अर्थ ये नहीं कि मोबाइल या सोशल मीडिया खराब है। ये संवाद के महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन इनका उपयोग करते समय हमें समझना होगा कशिश की हर बातचीत का समाधान संदेश भेज कर नहीं किया जा सकता।
0: बिल्कुल,
1: कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें सामने बैठकर शांति से समझना अधिक बेहतर होता है।
0: जी हाँ जागृति जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि युवा साथियों से हम कार्यक्रम के माध्यम से बातें कर ही रहे हैं और ये बातें हमारी आगे भी ऐसे ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी क्यों ना यहाँ पर श्रोता साथियों को एक और प्यारा सा गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथी सुन लेते हैं यह गीत।

0: जन्म।
1: साथ ही इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि हमारी बातें चल रही थी कि हम सुनते सबकी है लेकिन समझते किसकी है, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की थी। वहीं आप जानते हैं कि दोस्तों के बीच गलतफहमी और अधूरी बातें किस तरह से है, यानी कि कशिश रिश्ता हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों के साथ हम खुशियां बांटते हैं, परेशानियां बताते हैं और कई बार ऐसी बातें भी साझा करते हैं जिन्हें परिवार से कहने में हमें झिझक होती है, लेकिन दोस्ती में भी गलतफहमी पैदा हो सकती है। इसीलिए आपसे कहना चाहेंगे श्रोता साथियों इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हो सकता है कि जिस व्यक्ति को हम घमंडी समझ रहे हो वो वास्तव में संकोची हो, जिसे हम लापरवाह मान रहे हो वो किसी परेशानी से गुजर रहा हो, और जिसे हम कमजोर समझ रहे हो वो अपनी कठिन परिस्थिति से निकलने के लिए लगातार प्रयास कर रहा हो। इसलिए किसी को समझने से पहले उसके बारे में अपनी राय बनाने में जल्दबाजी हमें नहीं करनी चाहिए।
2: जी हाँ जागृति जी। साथी श्रोता साथियों, क्या हम केवल वही सुनते हैं जो हमें अच्छा लगता है, ये सवाल खुद से भी हमें पूछना चाहिए।
1: बिल्कुल,
2: क्योंकि जब कोई हमारी तारीफ करता है तो हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे विचारों का समर्थन कर रहा है, तो हम उसकी बात ध्यान से सुनते हैं। लेकिन जब कोई हमारी गलती बताता है जागृति जी, तो हमारी सोच उससे अलग हो जाती है।
1: बिल्कुल,
2: और हम उसे धैर्य से नहीं सुन पाते। ऐसे में श्रोता साथियों, हो सकता है कि हमारा इरादा उसे दुख पहुंचाने का न रहा हो, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि हमारे व्यवहार का उस पर क्या असर पड़ा। हम अपनी बात स्पष्ट कर सकते हैं, लेकिन सामने वाले की भावना को बिना सुने खारिज कर देना उचित बात नहीं होती।
1: बिल्कुल,
2: हमारे युवा साथियों को ये सीखना चाहिए जागृति जी कि अपनी राय रखना जरूरी है, लेकिन अपनी राय पर दोबारा विचार करने के लिए तैयार रहना भी उतना ही जरूरी होता है। क्योंकि समझदार व्यक्ति वह नहीं है जिसे हर सवाल का जवाब पता हो, बल्कि वह है जो जरूरत पड़ने पर दूसरों से सीखने के लिए तैयार हो।
1: जी हाँ कशिश, और अब सवाल ये है कि हम अपने व्यवहार में ऐसा क्या बदलाव करें जिससे हमारी बातचीत बेहतर हो सके और हम दूसरों को अधिक अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो सबसे पहला बदलाव है, बात काटने की आदत को हमें कम करना है, जवाब देने से पहले समझने की कोशिश करनी है, सवाल पूछना है, आरोप नहीं लगाना है।
2: बिल्कुल,
1: और हर समस्या का तुरंत समाधान देने की कोशिश नहीं करनी है। साथ ही अपनी राय को अंतिम सच न माने, बातचीत के दौरान मोबाइल को थोड़ी देर दूर रख दे, अपनी गलती को स्वीकार करना सीखिए, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अवसर दे। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरों को समझने की शुरुआत खुद को समझने से होती है।
2: बिल्कुल,
1: जब हम अपनी भावनाओं, गुस्से, जल्दबाजी और पूर्वाग्रह को पहचानना सीखते हैं कशिश, तब हम दूसरों की बात को और अधिक धैर्य से सुन पाते हैं। इन बदलाव के लिए हमें किसी विशेष प्रशिक्षण या बड़े साधन की आवश्यकता नहीं है। जरूरत है तो केवल अपने व्यवहार पर थोड़ा ध्यान देने की और हर दिन बेहतर संवाद की दिशा में एक कदम बढ़ाने की।
2: बिल्कुल जागृति जी, इसलिए हमारे युवा साथियों को एक छोटी सी सीख याद रखने की आवश्यकता है। जैसे कि दोस्तों कल्पना कीजिए कि एक दिन हम सब तय कर लें कि किसी की बात पूरी सुने बिना उसके बारे में निर्णय नहीं करेंगे।
1: बिल्कुल,
2: किसी की परेशानी को छोटा नहीं समझेंगे, किसी की असहमति को अपना अपमान नहीं मानेंगे और अपनी बात रखने के साथ साथ दूसरों की बात के लिए भी जगह बनाएंगे।
1: जी हाँ,
2: ऐसे में प्रश्न है कि क्या हमारी बातचीत में बदलाव नहीं आएगा? शायद जागृति जी, घर में छोटी छोटी बातों पर होने वाले झगड़े कम हो सके, दोस्तों के बीच गलतफहमियों को दूर करने का अवसर हमें मिले और युवा अपने सपनों और परेशानियों के बारे में खुलकर बात भी कर सके।
1: बिल्कुल
2: साथियों, हमें ये समझना होगा कि किसी को समझना एक दिन का काम नहीं है। कभी हम किसी की बात सही समझेंगे तो कभी गलती करेंगे और कभी हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत महसूस होगी।
1: बिल्कुल,
2: महत्वपूर्ण तो ये है कि हम सीखने की इच्छा को बना कर रखें।
1: जी हाँ कशिश, और साथ ही हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कि श्रोता साथियों, हम सबकी बातें सुनते तो हैं लेकिन कई बार उन्हें समझने से चूक जाते हैं, और इसी वजह जल्दबाजी, पहले से बनी हुई राय, अपनी बात सही साबित करने की इच्छा और सामने वाले की परिस्थिति को समझने के लिए समय न निकालना हो सकती है। आज के कार्यक्रम से बस इतना याद रखिए श्रोताओं कि किसी को सुनना एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन उसकी बात को समझने की कोशिश करना एक बेहतर रिश्ता बनाने की दिशा में अपना महत्वपूर्ण कदम है। अगली बार जब आपको आपके माता पिता कोई सलाह दे श्रोता हो तो उनकी चिंता को समझने की आप कोशिश कीजिएगा। जब आपका कोई दोस्त अपनी परेशानी आपको बताए तो उसकी बात पूरी सुनिएगा। जब कोई व्यक्ति आपसे असहमत हो तो उसे गलत ठहराने से पहले उसके विचारों को जानिएगा। और जब कोई आपकी बात न समझ पाए तो गुस्सा करने के बजाय शांतिपूर्वक अपनी बात दोबारा समझाने का प्रयास करना, क्योंकि कई बार कशिश रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए हमें बड़े से बड़े वादों की नहीं बल्कि थोड़े से धैर्य, कुछ अच्छे सवालों और ध्यान से सुनने की जरूरत होती है। और अब आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेना चाहेंगे, पर अंत में आपसे कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि बातें तो हर कोई करता है, पर एहसास समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ सुन लेना काफी नहीं है, दिल से सुनना भी जरूरी है।
2: बिल्कुल,
1: राय अलग हो सकती है हमारी, पर सम्मान बना रहना बहुत जरूरी है। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब समझने की कोशिश जारी हो।
2: बिल्कुल जागृति जी, तो इन्हीं आशाओं के साथ अब हम कार्यक्रम से विदा लेना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं श्रोता साथियों कि आज के इस कार्यक्रम में जो बातचीत रही वो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले आपको सुनवाना चाहेंगे यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथ ही इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, बागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन तो आयरन थे भरपूर तत्व करो भोजन हो वे, क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है। होवे भाई बहनों, आ लक्षण आपने अपने में देखाए तो आपने अपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे। आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है। होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे। होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दाल खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा। वागर रेडियो एवं वागतरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सभी सुन रहे हैं

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, आपका पसंदीदा कार्यक्रम सच्चा बचपन, जहां हम बच्चों की खुशियों, उनकी जरूरतों, उनकी सुरक्षा और उनके उज्जवल भविष्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर बात करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: हर बच्चे की आंखों में एक सपना होता है। कोई कशिश डॉक्टर बनकर लोगों का इलाज करना चाहता है, तो कोई शिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ाना चाहता है, कोई खिलाड़ी बनकर देश का नाम रोशन करना चाहता है, तो कोई कलाकार बनकर अपनी प्रतिभा दुनिया के सामने लाना चाहता है।
0: जी बिल्कुल।
1: लेकिन क्या कशिश हर बच्चे को अपने सपनों को पूरा करने का समान अवसर मिल पाता है? आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि बच्चों के सपनों को साकार करने की राह कैसे आसान बनाई जा सकती है और हमें किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो बातें इस विषय को लेकर श्रोता साथियों से आज हमारी ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना दोस्तों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले विषय बता चुके हैं और बातचीत की शुरुआत भी हो चुकी है श्रोता साथियों कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि बच्चों के सपनों को साकार करने की राह हम कैसे बनाएं।
1: बिल्कुल,
0: तो अंजलि जी यहाँ पर हमारे श्रोता साथियों से हम कहना चाहेंगे कि बच्चों के सपनों को समझना हमारे लिए पहले जरूरी है, क्योंकि बच्चों के सपने उनके मन की इच्छाओं, रुचियों और उनकी कल्पनाओं से जन्म लेते हैं। कई बार साथियों बच्चे छोटी छोटी बातों में अपनी बड़ी इच्छाएं व्यक्त कर देते हैं। माता पिता और परिवार की ऐसे में जिम्मेदारी है कि वे बच्चों की बातों को ध्यान से सुने और उनकी रुचि को समझने का प्रयास करें।
1: बिल्कुल,
0: बताना चाहेंगे साथियों कि बच्चे की इच्छा को बिना जाने उसके भविष्य का फैसला कर देना उसके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हर बच्चा अलग होता है, किसी की पढ़ाई में रुचि होती है, किसी को खेल पसंद होता है, तो किसी को चित्रकारी, संगीत या नई चीजें बनाना अच्छा लगता है। अंजलि जी, इसलिए बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से करने के बजाय उनकी अपनी क्षमताओं को पहचानना हमें चाहिए। जब बच्चों को लगता है कि परिवार उनकी बात समझता है तो वे अपने सपनों के बारे में खुलकर बात करने लगते हैं।
1: बिल्कुल, यही बात करें कशिश के परिवार का सहयोग बच्चों को आगे बढ़ाता है। तो श्रोता साथियों, बच्चों के सपनों को पूरा करने में परिवार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है।
0: बिल्कुल,
1: परिवार का सहयोग केवल फीस भरने या किताबें खरीदने तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों को समय देना, उनकी समस्याएं सुनना और कठिन परिस्थितियों में उनका हौसला बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: जब कोई बच्चा असफल होता है तब उसे डांटने या उसका मजाक उड़ाने के बजाय दोबारा प्रयास करने के लिए हमें उसे प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि कई बार परिवार आर्थिक कठिनाइयों के कारण बच्चों के सपनों को लेकर चिंतित रहते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों से बातचीत करके उपलब्ध संसाधनों के अनुसार रास्ते खोजे जा सकते हैं। सरकारी विद्यालयों, छात्रवृत्तियों, पुस्तकालयों और उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं की जानकारी लेकर बच्चों को आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है।
0: बिल्कुल,
1: जरूरी है कशिश की आर्थिक परेशानी के कारण बच्चे की प्रतिभा को शुरुआत में ही न रोक दिया जाए।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के आगे अगर बात करें कि लड़के और लड़कियों को समान अवसर हम कैसे दें, तो आज भी कई जगह बच्चों के भविष्य को लेकर लड़के और लड़कियों के बीच अंतर किया जाता है। लड़कों को श्रोता साथियों अपनी पसंद का करियर चुनने की छूट मिल जाती है, जबकि लड़कियों से कई बार उनकी इच्छाओं को छोड़ने की अपेक्षा की जाती है।
1: बिल्कुल,
0: और यही सोच बच्चों की प्रतिभा और उनके आत्मविश्वास दोनों को प्रभावित करती है। अंजलि जी, हम कहना चाहेंगे कि परिवार और समाज को ये बात समझनी होगी कि सपनों का कोई लिंग नहीं होता। लड़की भी वैज्ञानिक, खिलाड़ी, अधिकारी या उद्यमी बन सकती है और लड़का भी अपनी रुचि के अनुसार कला, संगीत या किसी अन्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है।
1: बिल्कुल,
0: बच्चों को उनकी योग्यता, मेहनत और रुचि के आधार पर अवसर मिलने चाहिए। समान अवसर मिलने पर बच्चे अपनी क्षमताओं को बेहतर तरीके से पहचान सकते हैं। अंजलि जी
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा, यही बात करते हैं शिक्षा और सही मार्गदर्शन के महत्व की। तो श्रोता साथियों, सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए सही दिशा और लगातार प्रयास भी आवश्यक है।
0: बिल्कुल,
1: बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार पढ़ाई और करियर की जानकारी दी जानी चाहिए। शिक्षक, अभिभावक और समुदाय के अनुभवी लोग बच्चों से बात कर सकते हैं कि किस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए किन योग्यताओं, कौशल और तैयारियों की आवश्यकता होती है। विद्यालयों में बच्चों को केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए ही प्रेरित नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें सवाल पूछने, नई चीजें सीखने, रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने और अपनी गलतियों से सीखने का अवसर भी मिलना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: यदि किसी बच्चे को किसी विषय में परेशानी हो रही है तो उसे कमजोरी बताकर उसे हतोत्साहित करने के बजाय उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि सही मार्गदर्शन बच्चों को अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने का आत्मविश्वास भी देता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि श्रोता साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें बहुत अच्छी चल रही है, ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी क्यों ना हमारे साथियों को यहाँ पर एक और गीत हम सुनवाएं।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।
2: चकरक चीचा चो चकलो रम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडी गिडी गिडी गो इडी पाई विडी पाई चिकी चक चो गिली गिली मल सुलु सुलु मल मकनक हुकु बुकुरे टुकु बुकुरे चकलक बिको चिको सिली सिली सिली गो बगड़ दुम चकड़ दुम चिकी चक चो

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि किस तरीके से बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए, उनके लक्ष्य की राह तक पहुंचाने के लिए शिक्षक और माता पिता किस तरीके से उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ये बात आती है कशिश कि हर बच्चे की सफलता की यात्रा एक जैसी नहीं होती। किसी को जल्दी सफलता मिलती है तो किसी को अपने लक्ष्य तक पहुँचने में अधिक समय लगता है।
1: बिल्कुल,
0: कई बार बच्चे परीक्षा में कम अंक लाते हैं, प्रतियोगिता में हार जाते हैं या किसी काम को पहली बार में पूरा नहीं कर पाते। ऐसी परिस्थितियों में उन्हें यह समझना जरूरी है कि असफलता उनके सपनों का अंत नहीं है। बच्चों को छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। जब वे किसी कठिन काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो उनकी मेहनत की सराहना करनी चाहिए। इससे उनमें धैर्य, आत्मविश्वास और दोबारा प्रयास करने की आदत विकसित होती है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, बच्चों को हर समय सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का दबाव डालने के बजाय उन्हें अपनी गति से सीखने और आगे बढ़ने का अवसर भी देना चाहिए।
1: जी हाँ साथियों, यही अगर बात करें अंजलि जी कि बच्चों के सपनों को पूरा करने में समुदाय की क्या भूमिका हो सकती है, तो बच्चों का भविष्य केवल उनके परिवार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि पूरा समुदाय भी इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दे सकता है।
0: जी जी,
1: जैसे कि गांव, मोहल्ले और समाज में बच्चों के लिए पढ़ने की जगह, खेलकूद की सुविधाएं, पुस्तकालय और रचनात्मक गतिविधियों के अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा सकते हैं। स्थानीय स्तर पर बच्चों की प्रतिभा पहचानने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित किए जा सकते हैं। साथ ही समुदाय के लोग जरूरतमंद बच्चों को किताबें उपलब्ध कराने, पढ़ाई में सहायता देने और छात्रवृत्ति जैसी सुविधाओं की जानकारी पहुंचाने में भी मदद कर सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, यदि कोई बच्चा किसी विशेष क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो उसे उचित प्रशिक्षण या फिर मार्गदर्शन दिलाने का प्रयास भी समुदाय के द्वारा किया जा सकता है।
0: जी हाँ,
1: इस तरह सामूहिक सहयोग से अंजलि जी, उन बच्चों के लिए भी अवसर तैयार किए जा सकते हैं जिनके परिवार के पास सीमित संसाधन है।
0: बिल्कुल, यह बात आती है कि बच्चों के भविष्य से जुड़े निर्णय लेते समय उनकी राय सुनना भी जरूरी है। जी हाँ श्रोता साथियों, माता पिता अपने अनुभव के आधार पर बच्चों को सलाह दे सकते हैं, लेकिन उनकी इच्छाओं, रुचियों को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बच्चों को अपनी बात रखने, विकल्पों को समझने और अपनी पसंद के बारे में सोचने का अवसर मिलना चाहिए। कशिश, जब बच्चों को उचित मार्गदर्शन के साथ निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है तो उनमें जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। वे अपने लक्ष्य के प्रति अधिक गंभीर होते हैं और उनके लिए मेहनत करना सीखते हैं। बच्चों की बात सुनने का अर्थ यह नहीं है कि उन्हें हर निर्णय अकेले लेने दिया जाए, बल्कि उनके विचारों का सम्मान करते हुए सही और सुरक्षित

0: सुरक्षित रास्ता चुनने में भी मदद करनी चाहिए।
1: जी हाँ दिलेश जी, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बच्चों के सपनों को साकार करने की राह केवल बड़े विद्यालयों, महंगी किताबों या फिर आर्थिक संसाधनों से नहीं बनती। इस राह की शुरुआत घर में होने वाली छोटी छोटी बातचीत, बच्चों की बात ध्यान से सुनने, उनकी मेहनत की सराहना करने और उसे अपनी क्षमता पहचानने का अवसर देने से भी हो सकती है। साथियों, जब बच्चा अपने परिवार में सुरक्षित महसूस करता है, अपनी बात कह पाता है और गलतियां करने के बाद भी उसे आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, तो उसके भीतर अपने भविष्य को लेकर विश्वास मजबूत हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: हमें यह भी समझना होगा दोस्तों कि हर बच्चे की सफलता का अर्थ एक जैसा नहीं होता। किसी बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा प्राप्त करना सबसे बड़ा सपना हो सकता है, तो किसी के लिए खेल के मैदान में अपनी पहचान बनाना या अपने हुनर से परिवार का सहारा बनना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
0: जी।
1: हमें बच्चों के सपनों को अपनी अधूरे इच्छाओं से नहीं जोड़ना चाहिए, उनके सामने हमें नए नए रास्ते खोलने चाहिए, न कि अपनी अपेक्षाओं का बोझ रख कर उनके रास्ते सीमित कर देने चाहिए। साथियों,
0: जी हाँ,
1: बच्चों को यह भरोसा हमारे द्वारा मिलना चाहिए कि उनकी रुचि, उनकी मेहनत और उनकी पहचान का सम्मान किया जा सकता है।
0: बिल्कुल कशिश, हम ऐसा परिवार और समाज बनाने का संकल्प ले जहाँ कोई बच्चा आर्थिक परेशानी, भेदभाव, डर या मार्गदर्शन की कमी के कारण अपने सपनों से दूर न हो, जहाँ बच्चे सवाल पूछ सके, अपनी प्रतिभा दिखा सके और जरूरत पड़ने पर सहायता मांग सके।
1: बिल्कुल,
0: याद रखिए श्रोता साथियों कि आज बच्चों को दिया गया प्रोत्साहन, शिक्षा और सहयोग आने वाले कल की मजबूत नींव है। बच्चों के सपनों को सुनिए, उनकी उड़ान को सराहना दीजिए और उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने का अवसर दीजिए, क्योंकि हर बच्चे के भीतर एक बेहतर भविष्य बनने की क्षमता छिपी होती है। इसलिए हमें बच्चों के सपनों को समझना है और उन्हें सही राह देनी है, क्योंकि जब तक हम बच्चों को इन सारी चीजों को लेकर समझाएंगे नहीं, मार्गदर्शन नहीं देंगे, सही क्या है, गलत क्या है, उसकी राय नहीं देंगे, तब तक बच्चे जो है वो अपने लक्ष्य को अच्छे से प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए माता पिता, शिक्षक का बच्चों के सपनों को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान होता है, वही उनके मार्गदर्शक होते हैं।
1: जी,
0: आशा करते हैं कशिश के आज कार्यक्रम में होने वाली जो बातचीत है वो श्रोता साथियों को बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: बिल्कुल अंजलि जी।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अब ही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातचीत रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हां श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वाग रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
1: नमस्कार।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमारा वारा हंग्र भाई बनो ने आपनी बोन अंजलि नो राम राम। किसान भाई बोन आप हमरी रहो आपड़ो सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM माते। मैं आप सबनु घणीमान स्वागत करा हूँ हमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम की भाई बोनो अमे हमारे टाइम माते हाजिर थे सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नया विषय ने हाथे। तो भाई बोनो आज हमारे कार्यक्रम में अब तक की बातचीत नो विषय है कि खरीफ ने बाद आपड़े रबी नी खेती करा हूँ। तो अवड़े तकी आपड़े एनी तैयारी हरते शुरू करवी है, कई कई बातों ध्यान रखवू है, इने वारा में असे आपड़े वाते करवा वारा हूँ। तो वाते तमारी आप तो ये घना का नहीं रहेगा, पण कार्यक्रम शुरू कर इने पहले आपने हमरा भी दा गीत ने मोरे करा अपनी वाते। तो बायन बोनो आप हमबरता रहसू आपड़ो रेडियो अपनी वाते वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: सारी चीजें हैं वो आपको पहले से देखने की जरूरत है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि किस तरीके से हमें खरीफ के बाद तुरंत ही इन सारी चीजों को देखने की जरूरत है, ताकि आगे की जो फसल का उत्पादन हम चाह रहे हैं हमारे वो मन के अनुसार हमें मिल जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा?
0: तो देखिए, हमें कुछ बातें हैं जिनका हमें विशेष रूप से ध्यान देने की बहुत जरूरत है। जैसे पहले खेत की जो स्थिति है उसको समझना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: अब खेत की स्थिति में क्या है कि किसान है, जो खरीफ की समाप्ति हो जाती है तो वो अपने खेत का निरीक्षण करे, वो जाकर उसको देखे उसमें नमी कितना है, पानी की निकासी का कैसा रहा, ऐसा तो नहीं कि मिट्टी का कटाव हो गया हो, ऐसा तो नहीं कि जैविक जो खेत में अवशेष है वो कितने हैं या नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। यदि खेत की मिट्टी बहुत कठोर हो गई है तो हो सकता है पानी की निकासी खराब है, या रबी की बुआई से पहले जो सुधार की योजना आप बना सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो इस तरह से हमें पहले उसकी स्थिति को अच्छे से समझना होगा। और इसके लिए जो हमारे जो गांव में बड़े बुजुर्ग है वो और बेहतर तरीके से हमारे युवाओं को और हमारे ऐसे भाइयों को बता सकते हैं और उनसे हम जान सकते हैं कि किस तरह हमें करना चाहिए। दूसरी हम बात करते हैं तो मिट्टी जो परीक्षण करना जरूरी होता है।
1: बिल्कुल।
0: मतलब जो परीक्षण का जो मतलब होता है वो क्या होता है कि हमें उसकी जो गुणवत्ता है उसकी जांच करना जरूरी होता है।
1: जी जी।
0: कि हमारी जो मिट्टी है उसकी जो उर्वरकता है वो कितनी है, वो उपयोगी है या नहीं है, उसमें किन संसाधनों की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये क्या है कि इसका जब मिट्टी की गुणवत्ता की जांच आप कर लेंगे तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि मेरी मिट्टी कैसी है, कितनी उपयुक्त है या मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए। तो एक तो है कि हमारे जो स्थानीय स्तर पर हम जांचते हैं कि जब मिट्टी का जो बोतल में भर के उसको उसके परते हम देखते हैं कि उसमें कले कितना है, तो वो सारी उस तरह से हम देख सकते हैं जो हम स्थानीय उपाय करते हैं। दूसरा, अगर आपके पास में नजदीकी कोई कृषि विज्ञान केंद्र है या आपके पास में ऐसे टूल्स है जो आपके ग्राम पंचायत के आसपास में, तो वहां भी इसका जांच की जा सकती है। इसके साथ ही एक सोचने वाली बात यह है कि जब आपने मिट्टी की जुताई कर दी, बुआई कर दी खेत की, उसके पहले एक चीज ये भी है कि फसल का चुनाव है वो सोच समझ कर करना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: तो इसमें क्या होता है कि जैसे रबी की फसल का चयन एक तो बाजार का भाव देख कर लेते हैं हम लोग कि नहीं ये तो बहुत महंगी बिक रही है, तो इसको करना जरूरी होता, लेकिन ये देखना काफी नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: उसके लिए ये देखना जरूरी है कि सिंचाई की सुविधाएं कितनी है, मिट्टी जो है किस फसल के लिए उपयुक्त है, पिछले मौसम में कौन सी फसल लगी थी, और परिवार का जो खाद्य आवश्यकता उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: यदि परिवार को पोषण की प्राथमिकता है तो उसमें हम दलहन तिलहन और स्थानीय खाद्य जो फसलें हैं वो हमें उगाना चाहिए। इसके साथ में हमें ये भी देखना चाहिए कि कौन से खेत में कौन सी फसल करनी है, ऐसा नहीं कि हमने सब में एक जैसी कर दी।
1: बिल्कुल।
0: तो हमें उस संतुलन को देखना होगा कि हमारे पास में सुविधाएं कितनी है, पानी की है या हमारे पास में संसाधन कितने हैं। तो आपने मान लो पिछली बार किसी खेत में गेहूं लगाया, अब वापस एक बार देखने की जरूरत है कि उसमें गेहूं लगाना है या नहीं लगाना।
1: बिल्कुल।
0: तो वो हमें जरूरी है। दूसरी चीज एक यहाँ भी देखने की जरूरत है कि जब हम पोषण की बात करते हैं हमारी खेती से या हमारे परंपरागत खान पान की बात करते हैं जो स्थानीय है, तो उसमें क्या एक जो है वो जैव विविधता भी बीच में आती है हमारे।
1: बिल्कुल।
0: कि जो हमारे थाली की विविधता है उसको भी ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर के लिए जो हमारी फसलें हैं वो जो उगती है वो हम खाते हैं, तो हमें देखना चाहिए कि कौन कौन सी विविधताएं हैं वो हम कर सकते हैं। 3-4-5 प्रकार की, जैसे आपने अनाज कर दिया, सब्जियां हैं या तिलहन है दलहन है।
1: बिल्कुल।
0: तो उससे क्या है आपको अलग अलग प्रकार के जो शरीर की पोषण आवश्यकताएं हैं वो पूरी होगी।
1: बिल्कुल।
0: इसी तरह अगर आप देखें तो हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि फसल का जो चुनाव वो कैसे करें, तो इसमें क्या फसल चक्र है उस पर भी हमें विचार करना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: कि जैसे लगातार एक ही फसल उगाने के बजाय अलग अलग प्रकार की फसलें को प्राथमिकता दें, उनकी परिस्थितियों को समझे, तो विशेष रूप से जो दलहनी फसलें हैं फसल प्रणाली को शामिल करने में मिट्टी की जो प्रक्रिया है उसको कितना अच्छा है, समर्थन मिलता है या नहीं, उसको हमें देखने की जरूरत है।
1: जी जी।
0: तो हमें फसल चक्र अपनी स्थानीय परिस्थितियों को देखकर उसे अपनाने की जरूरत है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि खरीफ के बाद रबी की तैयारी अभी से हमें कैसे करनी है और ढेर सारी बातों से आप हमें अवगत करवा रहे हैं। यही हम देखते हैं कि इसमें बीज का चुनाव भी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए किसान भाई बहनों को क्या ध्यान रखने की जरूरत है?
0: देखिए, बीज बहुत महत्वपूर्ण है, तो रबी की बुआई से पहले बीज की व्यवस्था जो है वो अंतिम समय तक नहीं टाले कि जब बुआई करें तभी, उसकी व्यवस्था पहले से करें। जैसे आपका घर का बीज है तो उसको साफ करना, स्वच्छता देखना, उसकी गुणवत्ता को देखना, उसमें से जो कमजोर बीज है उनको अलग करना, अच्छे बीजों को उपयोग करना, ये चीजें हमें देखने की जरूरत है। इसके साथ में बुआई से पहले उसका उपचार करना जो हम परंपरागत विधियों से करते हैं, जैसे गोमूत्र है, राख है, नीम की पत्तियां हैं, उन सबकी जो है उनसे उपचार करके उनको तैयार रखिए आप,
1: बिल्कुल,
0: ताकि बुआई के समय आपको एक साथ सारी चीजें ना करनी पड़े। उस पे अगर बीज में नमी है तो उसको थोड़ा सुखाए आप, उसकी नमी दूर करें, तो इस तरह से जो आपको उसको ध्यान रखने की जरूरत है।
1: बिल्कुल सर, और यही हम देखते हैं कि खेत की नमी और जैविक खाद और कई सारी चीजों की फसल में जरूरत रहती है, तो इनका ध्यान हमारे किसान भाई बहनों को कैसे रखना चाहिए?
0: देखिए, खरीफ की फसल होती है, उसको कटाई हो जाती है, उसके बाद में क्या होता है कि हमारे कई किसान भाई ऐसे सोचते हैं कि बहुत ज्यादा बार जुताई करेंगे तो बहुत अच्छी फसल होगी।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन यहाँ ये ध्यान देने की जरूरत है कि अगर हम नमी की बात करते हैं तो हमें अनावश्यक जुताई है उससे बचना चाहिए, जितनी आवश्यकता उतनी करें। आपने दो जुताई की उसके बाद बुआई कर दो,
1: बिल्कुल,
0: ऐसा नहीं कि आप उसकी जुताई करते हैं तो उसकी नमी है वो गहरी चली जाएगी और आपकी जो रबी की फसल है उसको पानी की आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी और उस फसल को नुकसान भी हो सकता है।
1: जी हाँ।
0: तो इस तरह हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ में जो नमी की हम बात करते हैं तो हमेशा क्या है कि उसको ढकने की बात करते हैं, मल्चिंग की बात करते हैं, जैसे बुआई कर दी तो उस तरह से अगर आपने फसल लगाने वाले हो तो उससे पहले जैसे एक बार जुताई की तो उसको जो अवशेष चारे के उसको वहीं छोड़ दें, ताकि उनको हटाने से क्या होगा, डायरेक्ट सूर्य किरणें उसमें पड़ेगी ना तो वो सूख सकती है। इसके साथ में जैविक खाद है, कंपोस्ट है, वो पहले से आप तैयार करें क्योंकि आपको आगे जाकर खेत में डालना है,
1: बिल्कुल,
0: तो वो भी आप तैयार करके रखिए। जैसे आपने कंपोस्ट तैयार कर दिया तो 60 दिन पहले आपने उसको शुरू कर दिया तो आपकी जब बुआई होगी तब आपको तैयार मिलेगा, तो उससे पहले आप छान कर रखिए उसको, आप बीज में मिलाकर उसको बोए, उसके बाद में खेत में डालना हो तो डालें। इस तरह से हमें जो है उन चीजों का ध्यान रखने की आवश्यकता है।
1: बिल्कुल सर, और यही फसल अवशेष को किस तरीके से हमारे किसान भाई बहन संसाधन बना सकते हैं?
0: देखिए, खरीफ की फसल के बाद जो डंठल या पत्तियां जो अवशेष बचते हैं वो जो जैविक खाद का काम करते हैं, इन्हें काटकर खेत में फैलाया जा सकता है, जिससे मल्च बोलते हैं, मल्चिंग करते हैं, वो किया जा सकता है। इसको कंपोस्ट में शामिल किया जा सकता है ताकि इससे बहुत अच्छी खाद बनती है।
1: बिल्कुल,
0: इसमें एक परंपरागत खाद है वो बहुत अच्छी जो है आपकी उन अवशेषों से तैयार होगी। इसी तरह एक बात ये भी यहाँ पे आती है कि खेत की जो मेड़ है और जल निकासी है उसको पहले से आप सुधार ले,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि वो भी बहुत जरूरी होती है कि मेड़ की मरम्मत कर ले, जैसे अगर टूटी हुई हो बारिश के दिनों में या टूटे हुए इससे को ठीक करने की आवश्यकता है, निकासी की व्यवस्था रखें, पानी और जल सिंचाई का वो प्रबंधन आप पहले से, पानी कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या हमारे पास उपलब्ध है तो कितना कब कब देना है, वो सारी चीजें हैं वो हमें देखने की जरूरत है।
1: बिल्कुल सर, यही सर बुवाई का समय कैसे ध्यान में रखना है किसान भाई बहनों को?
0: देखिए, हम जो है कई वर्षों से हम खेती से जुड़े हुए हैं और हमारे जो बुजुर्ग है वो भी खेती करते आए हैं, तो रबी की जो फसल की बात करते हैं तो खरीफ की कटाई होने के बाद में हमने जुताई की और हम क्या है कि लगभग आप देखेंगे तो अक्टूबर में उसकी बुआई कर देते हैं। तो हमें इसके लिए पहली चीज में ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको इसका ज्ञान नहीं है कि कब बुआई करनी है तो आप सबसे पहले हमारे जो संसाधन है वो हमारे गांव के बुजुर्ग हैं, आप उनसे बात करें, उसके बाद उनसे जान ले कि कब बुआई करना उचित रहता है। तो इस तरह से अक्टूबर और नवंबर मिड तक आप आराम से जो है इन सब की बुआई कर सकते हैं।
1: जी सर, तो जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि खरीफ के बाद रबी की हमें तैयारी कैसे करनी है, यही हमारे किसान भाई बहन अगर रबी की योजना लिखित रूप में बनाए तो इससे क्या लाभ होगा और कैसे बना सकते हैं वो?
0: देखिए, अगर योजना बनाते हैं तो जब बात योजना की आती है तो आपको परिणाम जो है वो बेहतर मिलते हैं अगर आप योजनाबंद काम करते हैं तो।
1: बिल्कुल।
0: तो जैसे आपने लिखा कि क्या करना है तो पहले आपने तय कर लिया खेत में कौन सी फसल बोनी है, बीज की मात्रा कितनी डालनी है, कौन सा बीज डालना है, मिट्टी है उसकी आपने जांच कर ली, मिट्टी का पोषण आपने देख लिया, जैविक खाद की मात्रा कितनी है, उसका उपलब्धता, उसका उपयोग देख लिया आपने, सिंचाई का संभावित जो स्रोत कौन सा होगा वो आपने देख लिया, कहाँ से पानी आएगा हमारी खेती के लिए, खेत में जो अवशेष है क्या आप उसको खेत में छोड़ रहे हो या कंपोस्ट में डाल रहे हो, या पशु जो खा रहे हैं उसको हम खेत में डाल रहे हैं कंपोस्ट में डाल रहे हैं,
1: बिल्कुल,
0: वो ये निराई गुड़ जिसकी बात करते हैं वो जरूरत के अनुसार करें आप, उसमें देख लिए कितने दिन लगेंगे, श्रम की व्यवस्था क्या होगी, बैल होंगे या कैसे आप उनकी व्यवस्था करेंगे, बाजार से अगर कुछ लेना है तो क्यों लेना है, कैसे लेना, कितना लेना है,
1: बिल्कुल,
0: और तय करना है कि हमें ये सोचना चाहिए कि अधिक से अधिक हम घर की ही चीजें उपयोग करें, बाजार पे हम ना जाएं।
1: बिल्कुल सर,
0: तो इन चीजों का ध्यान रखें।
1: जी बिल्कुल। तो सर जैसा कि आपने ढेर सारी बातों से हमारे श्रोता साथियों को अवगत करवाया है, तो अंत में कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारे किसान भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं सभी किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहूंगा कि खरीफ के बाद जो रबी की तैयारी है वो हमारे आने वाली फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सोच समझकर आप उसकी तैयारी करें, समय से बुआई करें ताकि उत्पादन बेहतर हो और फसल है वो आपको सुरक्षित रहे और अच्छा उत्पादन आपको मिल सके।
1: बिल्कुल। तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: जी धन्यवाद।
1: जिम की बहन बोनू अवड़े अपने वैस में मांगीलाल जी जुड़े तक कहा था ने एणे आपणे घणी असल तरीका तकी घणा कानी वाते बताड़ी है, जिम की एणे आपणे बताड़ियो है कि आपणे खरीफ ने बाद सप्ती की पहले रबी नी फसल नी तैयारी करवी है तो आपणे खेत नी स्थिति समझवी होगा, मिट्टी परीक्षण ने प्राथमिकता आलवी होगा, फसल नु चुनाव होसे हमजी ने करवो पड़ेगा, फसल चक्र ने आपणे समझी शको, बीज नी तैयारी टाइम माते करवी होगा, बीज उपचार करवो होगा ने खाद भी बनावी ने आपणे पहले किस राखवो होगा। आशा करो हो कि हंगरी वाते आपने कमी होगा, क्योंकि अभी टाइम थे गयो है आपने अनस कार्यक्रम तक ही सूटा पड़वानू, तो सूटा तो पड़ा पर साथ पहले हमरी लाइक और गीत न मोरे पड़ा सूटा।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिर है श्रोताओं कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी से मजबूत गांव को लेकर। अंजलि, जिस गांव की महिलाएं जागरूक होती है उस गांव की नींव मजबूत होती है। जिस गांव की महिलाएं निर्णय लेने में भागीदारी करती है उस गांव का विकास केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे समुदाय तक पहुंचता है। और जिस गांव की महिलाएं अपने अधिकारों, कर्तव्यों और क्षमताओं को पहचान लेती है उस गांव को आत्मनिर्भर बनने से कोई नहीं रोक सकता।
0: बिल्कुल,
1: इसीलिए श्रोता साथियों आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही बात करने वाले हैं ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी से गांव किस तरह से मजबूत बन सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी बातें ढेर सारी रहेंगी लेकिन कार्यक्रम के शुरुआती दस्तूर को निभाते हुए क्यों ना हम हमारे श्रोता साथियों को एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में वागड़ रेडियो 90.8।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी से मजबूत गांव को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: तो अंजलि, हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, गांव की कल्पना करते ही हमारे मन में खेत खलिहान पशुधन कुएं तालाब हरे भरे पेड़ लोकगीत और आपसी सहयोग की तस्वीर उभरती है। अंजलि,
1: बिल्कुल,
0: इस तस्वीर में महिलाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। महिलाएं घर संभालती है, बच्चों की देखभाल करती है, खेती किसानी में सहयोग देती है, पशुओं की देखभाल करती है और परिवार की अनेक आवश्यकताओं को पूरा करती है। इसके साथ ही वे स्थानीय परंपराओं, लोक कलाओं, भाषा, संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान को भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, लेकिन एक सवाल हमारे सामने आता है कि क्या गांव के विकास में महिलाओं के योगदान को उतना महत्व मिलता है जितना मिलना चाहिए? क्या गांव की योजनाएं बनाते समय महिलाओं की राय सुनी जाती है? क्या ग्राम सभा, पंचायत और सामुदायिक बैठकों में महिला अपनी बात खुलकर रख पाती है? श्रोता साथियों, इन सवाल पर विचार करना इसलिए जरूरी है क्योंकि गांव का विकास तभी संपूर्ण होगा जब उसमें गांव के प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होगी। महिलाओं को केवल जिम्मेदारियां निभाने तक सीमित न रखकर उन्हें निर्णय लेने, नेतृत्व करने और विकास की दिशा तय करने के अवसर भी मिलने चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए आज हम कार्यक्रम में इन्हीं विषय पर ढेर सारी बातों से श्रोता साथियों को अवगत करवा रहे हैं कि किस तरीके से ग्रामीण जीवन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है।
0: जी हाँ अंजलि, जैसे कि ग्रामीण जीवन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर हमारे श्रोता साथियों को हम बताएं, तो साथियों, भारत की जीवन शैली में महिलाओं का योगदान बहुत व्यापक है। हम देखते हैं अंजलि कि सुबह घर के कामकाज से लेकर खेतों में मेहनत करने तक, पशुओं की देखभाल से लेकर परिवार के भोजन और बच्चों की शिक्षा तक महिलाएं अनेक जिम्मेदारी निभाती है। कई महिलाएं जंगल से लकड़ी और चारा लाने, पानी की व्यवस्था करने, बीजों को संभालने तथा फसल की बुवाई और कटाई में भी योगदान देती है। महिलाओं के पास गांव के जीवन से जुड़ा हुआ व्यवहारिक ज्ञान होता है। वे जानती हैं कि किस मौसम में कौन सी फसल अच्छी होती है, पशुओं की देखभाल कैसे करनी है, भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है और पानी का उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। इसके बावजूद हम देखते हैं कि कई बार उनके काम को परिवार की सामान्य जिम्मेदारी मानकर उसका आर्थिक और सामाजिक महत्व कम आंका जाता है। हमें ये समझना होगा श्रोताओं कि महिलाओं का श्रम केवल घर तक सीमित नहीं है बल्कि वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज की नींव का हिस्सा है। अगर गांव की महिलाओं को अपनी योग्यता दिखाने, नए कौशल सीखने और निर्णय लेने के अवसर मिले तो उनके अनुभव का लाभ पूरे गांव को मिल सकता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, यही बात करते हैं कि गांव के विकास में महिलाओं की भागीदारी का क्या अर्थ है। तो श्रोता साथियों, महिलाओं की भागीदारी का अर्थ केवल किसी बैठक में उपस्थित होना नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ अपनी राय रखना, समस्याओं की पहचान करना, समाधान सुझाना और विकास से जुड़े निर्णयों में सक्रिय भूमिका निभाना है।
0: बिल्कुल।
1: उदाहरण के लिए गांव में पेयजल की समस्या है, यदि योजना बनाते समय उन महिलाओं से चर्चा की जाए तो प्रतिदिन पानी की व्यवस्था करती है तो समस्याओं को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। इसी प्रकार विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति, स्वास्थ्य केंद्र की सुविधाएं, गांव की सफाई, सड़क, बिजली, सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा जैसे विषयों पर श्रोता साथियों महिलाओं के सुझाव उपयोगी हो सकते हैं। जब महिलाएं विकास योजना में भाग लेती हैं, तो योजनाओं में परिवारों की वास्तविक आवश्यकताओं को शामिल करने की संभावना बढ़ती है।
0: बिल्कुल।
1: इससे जागृति जी, संसाधनों का बेहतर उपयोग और सामुदायिक सहयोग मजबूत हो सकता है और सच्चा स्वराज वही है जिसमें गाँव के लोगों को अपने गांव के विकास की दिशा तय करने का अवसर मिले।
0: बिल्कुल।
1: और महिलाओं की आवाज भी निर्णयों में बराबर महत्व हो।
0: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम बताएं कि ग्राम सभा और पंचायत में महिलाओं की आवाज को किस तरह से मजबूती मिलनी चाहिए। तो श्रोताओं, ग्राम सभा गांव के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने का महत्वपूर्ण मंच है।
1: बिल्कुल।
0: यहाँ गांव की जरूरतें, विकास कार्य और उपलब्ध संसाधनों पर विचार किया जाता है। हम देखते हैं अंजलि कि ग्रामीण महिलाओं को ग्राम सभा में भाग लेना होगा और अपनी समस्याओं तथा सुझावों को स्पष्ट रूप से रखना होगा।
1: बिल्कुल।
0: मान लीजिए श्रोताओं कि किसी गांव में लंबे समय से नाली की सफाई नहीं हो पा रही है, बरसात में पानी जमा हो जाता है और गंदगी फैलती है। महिलाएं ग्राम सभा में इस विषय को उठाकर नियमित सफाई की व्यवस्था बनाने का सुझाव भी दे सकती हैं अंजलि।
1: बिल्कुल।
0: इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर महिलाओं की भागीदारी रहेगी तो उनकी बात सुनी भी जाएगी और उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार भी किया जाएगा।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है कि किस तरीके से महिलाओं की भागीदारी से गांव मजबूत बन सकते हैं, तो बातें निरंतर आगे और भी यूं ही कार्यक्रम के माध्यम से बनी रहेंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना ग्राम सभा और पंचायत में महिलाओं की आवाज को लेकर कि किस तरीके से महिलाओं की भागीदारी इनमें होनी चाहिए, यही बात करते हैं शिक्षा और जागरूकता से सशक्त होती महिलाएं।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, शिक्षा महिलाओं को केवल पढ़ना लिखना ही नहीं सिखाती बल्कि अपने अधिकारों को समझने, सही जानकारी प्राप्त करने पर आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेने की क्षमता भी देती है। एक शिक्षित महिला सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकती है, बैंक से जुड़े काम समझ सकती है, बच्चों की शिक्षा में सहयोग दे सकती है और स्वास्थ्य संबंधित सही जानकारी के आधार पर जागृति से परिवार को जागरूक कर सकती है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि शिक्षा के साथ साथ महिलाओं को मोबाइल और सुरक्षित उपयोग की जो जानकारी है वो होना भी जरूरी है, क्योंकि अभी का समय जो है वो हम देख रहे हैं कि डिजिटल हो गया है और इस समय में अगर महिलाओं को डिजिटल साक्षरता, कौशल प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम और ऐसी चीजों के बारे में पता होगा तो वो ऑनलाइन होने वाली धोखाधड़ी और कई ऐसी गंभीर चीजों से बच भी सकती हैं।
2: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ हम हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि महिलाओं को संगठित करने में स्वयं सहायता समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे समय में महिलाएं नियमित रूप से मिलती है, बचत करती है, आर्थिक विषयों पर चर्चा करती है और आजीविका से जुड़े अवसरों पर विचार भी करती है। श्रोता, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाएं स्थानीय जरूरतों के अनुसार कई गतिविधियां शुरू कर सकती है, जैसे कि सिलाई कढ़ाई और कपड़ों से संबंधित काम, पापड़, अचार, मसाले और अन्य खाद्य पदार्थ बनाना, हस्तशिल्प, बांस और स्थानीय सामग्री से उपयोगी वस्तुएं तैयार करना, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और कृषि आधारित गतिविधियां करना, स्थानीय उत्पादों की पैकिंग और बिक्री का विपणन करना। इन गतिविधियों के लिए केवल मेहनत ही पर्याप्त नहीं है, महिलाओं को गुणवत्ता, लागत, उचित मूल्य, बाजार की मांग और बचत की जानकारी भी मिलनी चाहिए। जब महिलाएं अपनी आय अर्जित करती है अंजलि और आर्थिक निर्णयों में भाग लेती है तो उनका आत्मविश्वास बढ़ सकता है, वे परिवार की जरूरतों को पूरा करने में अपना सहयोग देती है और गांव में रोजगार के लिए नए अवसर पैदा कर सकती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। वे खेतों में बीज बोने, निराई करने, फसल काटने, अनाज साफ करने और भंडारण जैसे कार्यों में योगदान देती है। पशुपालन में चारा पानी की व्यवस्था, दूध निकालने और पशुओं की देखभाल जैसे काम भी अनेक महिलाएं करती हैं।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन श्रोता साथियों, कई बार महिलाओं के कृषि संबंधित योगदान को उचित पहचान नहीं मिलती। उन्हें किसान के रूप में प्रशिक्षण, कृषि संबंधित जानकारी, उपकरणों और बाजार तक पहुंच के अवसर मिलने चाहिए, क्योंकि जागृति जी, जब उन्हें इन सारी चीजों के बारे में पता होगा तभी वह स्थानीय ज्ञान के साथ आधुनिक तकनीक की जो चीजें हैं उनको लेकर गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अपना योगदान दे सकती हैं।
2: जी हाँ अंजलि, जैसा कि जल, जंगल, जमीन और पर्यावरण संरक्षण के बारे में हम बात करें तो ग्रामीण जीवन प्रकृति पर निर्भर करता है। पानी, जंगल, जमीन, पशु पक्षी और खेती गांव की आजीविका का आधार है।
0: बिल्कुल,
2: इन संसाधनों के संरक्षण में महिलाओं की भागीदारी बहुत उपयोगी हो सकती है। कहना चाहेंगे श्रोताओं कि अगर गांव की महिलाएं मिलकर तय करें कि प्रत्येक परिवार वर्षा के पानी को बचाने के लिए प्रयास करेगा और पौधों की देखभाल करेगा तो ये एक सामूहिक अभियान बन सकता है।
0: बिल्कुल,
2: पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी विभागों की जिम्मेदारी नहीं है श्रोताओं, ये पूरे समुदाय की जिम्मेदारी है। महिलाओं के अनुभव और सुझाव इस जिम्मेदारी को निभाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, यही अब बात आती है स्वास्थ्य, पोषण और बच्चों की शिक्षा की, क्योंकि हम देखते हैं कि एक मजबूत गांव के लिए स्वस्थ परिवार और शिक्षित बच्चे आवश्यक हैं।
1: बिल्कुल,
0: ग्रामीण महिलाएं परिवार के स्वास्थ्य, भोजन, स्वच्छता और बच्चों की देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि महिलाओं को पौष्टिक भोजन, स्वच्छ पेयजल, नियमित स्वास्थ्य जाँच, टीकाकरण और स्वच्छता के बारे में सही जानकारी मिले तो परिवार और समुदाय में जागरूकता बढ़ सकती है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि बच्चों की शिक्षा में भी माताओं की भागीदारी उपयोगी है।
1: बिल्कुल,
0: बच्चों से नियमित बातचीत करना, उनकी पढ़ाई में रुचि लेना, विद्यालय से संपर्क रखना और घर में सीखने का अच्छा वातावरण बनाना उनके विकास में सहयोग देता है। इसके साथ ही बच्चों की शिक्षा केवल माताओं की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पिता, परिवार, शिक्षक और समुदाय को मिलकर उसमें सहयोग करना चाहिए।
2: जी हाँ अंजलि, साथ ही ग्रामीण महिलाओं के सामने भी बहुत सारी चुनौती आती है, उन चुनौतियों का सामना करके हमें आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए और आगे बढ़ने का अवसर देना किसी पर उपकार करना नहीं है बल्कि उन्हें समान अधिकार और उचित अवसर प्रदान करना है। साथ ही पुरुषों, परिवार और समुदाय के सहयोग की बात करें तो गांव का विकास तभी मजबूत होगा जब महिलाएं और पुरुष एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे।
0: बिल्कुल,
2: महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का अर्थ पुरुषों की भूमिका को कम करना नहीं श्रोताओं, इसका अर्थ है कि परिवार और समुदाय की जिम्मेदारियां मिलकर निभाई जाए।
0: बिल्कुल जागृति जी, यही हम देखते हैं कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के व्यवहारिक उपाय भी हमें अपनाने होंगे। श्रोता साथियों, गाँव में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे कि पहला, ग्राम सभा और पंचायत की बैठकों में महिलाओं को समय पर सूचना दी जाए और उन्हें अपनी बात रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। दूसरी बात आती है कि महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को मजबूत बनाया जाए, उन्हें बचत, बैंकिंग, उद्यम, विपणन और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाए। इसके साथ स्थानीय स्तर पर कौशल प्रशिक्षण आयोजित किए जा सकते हैं ताकि महिलाएं अपने अनुभव और रुचि के अनुसार रोजगार के अवसर तलाश सके। गाँव की समस्याओं पर महिलाओं के साथ जागृति जी अलग से चर्चा करने के लिए महिला सभाओं जैसे मंचों का उपयोग किया जाए। इन चर्चाओं से प्राप्त सुझावों को ग्राम पंचायत की विकास योजनाओं में शामिल करने का प्रयास भी किया जा सकता है। इसी के साथ महिलाओं को खेती, जल संरक्षण, पर्यावरण, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े कार्यक्रमों में नेतृत्व करने के अवसर मिलने चाहिए।
2: बिल्कुल,
0: स्थानीय रेडियो, सामुदायिक बैठकों और अन्य संचार माध्यमों से सफल ग्रामीण महिलाओं के अनुभव साझा किए जा सकते हैं ताकि दूसरी महिलाएं भी प्रेरित हो सके। इसी के साथ श्रोता साथियों, महिलाओं के समय श्रम का सम्मान किया जाना चाहिए, घर और बाहर की जिम्मेदारियों को अधिक समान रूप से बांटने की दिशा में प्रयास किए जा सकते हैं।
2: जी हाँ,
0: इस तरीके से कह सकते हैं जागृति जी कि ये छोटे छोटे कदमों से गांव में सहयोग, विश्वास, सामूहिक जिम्मेदारी की भावना मजबूत हो सकती है।
2: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं कि गाँव को सशक्त करने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है, ये बातें निरंतर आगे भी छोटी मोटी रह गई वो करेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल,

0: साथ ही इस गीत के साथ ही विदा लेना चाहेंगे, पर अंत में इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको कहना चाहेंगे, आज के इस कार्यक्रम में हमने जाना कि ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी से गांव किस प्रकार मजबूत बन सकते हैं। महिलाएं केवल परिवार की देखभाल करने वाली नहीं, बल्कि गांव की अर्थव्यवस्था, संस्कृति, शिक्षा, पर्यावरण और विकास की महत्वपूर्ण भागीदारी है।
1: बिल्कुल।
0: तो हम सब मिलकर ऐसा गांव बनाने का संकल्प लें जहां हर महिला को अपनी बात कहने का अवसर मिले, उसके ज्ञान का सम्मान हो, उसकी मेहनत को पहचान मिले और उसे आगे बढ़ने के लिए आवश्यक सहयोग प्राप्त हो।
1: बिल्कुल।
0: इसीलिए याद रखिए श्रोताओं, महिलाओं को मिलेगा सम्मान तभी गांव आत्मनिर्भर बनेगा। हर महिला की होगी भागीदारी तभी विकास की होगी तैयारी। जब गांव की महिलाएं आगे आएंगी, खुशहाली की नई राह बनेगी।
1: बिल्कुल। तो जागृति जी, जैसा कि बातें ढेर सारी हो गई है और अब समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पता बताना चाहेंगे ताकि आज का ये कार्यक्रम उन्हें कैसा लगा, उसके लिए वह राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
0: हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम में हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं श्रोता साथियों से लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे जो व्यक्ति हैं उनके साथ परिवार का व्यवहार कैसा हो।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, जब हमारे परिवार में कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो हम उसकी देखभाल करते हैं, उसे समय पर दवाई देते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं और उसके जल्दी ठीक होने की कामना करते हैं। लेकिन जब बीमारी कुछ दिनों की न होकर महीनों या वर्षों तक चलती है तब स्थिति मनीषा थोड़ी अलग हो जाती है। बीमार व्यक्ति का शरीर तो बीमारी से लड़ रहा ही होता है लेकिन उसका मन भी कई तरह की परिस्थितियों से गुजरता है।
0: जी हाँ।
1: कभी उसे अपने भविष्य की चिंता होती है, कभी वह दूसरों पर निर्भर होने से परेशान होता है तो कभी उसे लगता है कि वह अपने परिवार पर बोझ बन गया है। ऐसे समय में परिवार का व्यवहार उस व्यक्ति के लिए बहुत मायने रखता है। परिवार के लोगों की कुछ मीठे बोल, थोड़ी सी समझदारी और साथ बैठकर बिताया गया समय उनके मन को हिम्मत दे सकता है। वहीं बार बार चिढ़ना, ताने देना या उसकी परेशानी को छोटा समझना उसके दुख को और बढ़ा सकता है। इसलिए आज के कार्यक्रम का विषय है कि लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति के साथ परिवार का व्यवहार कैसा होना चाहिए और किन किन बातों का हमें ध्यान रखने की जरूरत है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो इस विषय को लेकर कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुना दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: मेरे साथ ही इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति के साथ परिवार का व्यवहार कैसा हो। श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि हमारे जीवन में परिवार का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। परिवार वह जगह है जहाँ हमें प्यार मिलता है, अपनापन मिलता है, सुरक्षा और भावनात्मक सहारा मिलता है। जब जीवन में खुशियाँ आती हैं तब परिवार हमारे साथ खुशियाँ बांटता है और जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं तब परिवार हमारा सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। लेकिन श्रोता साथियों जब परिवार का कोई सदस्य लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहा हो तब परिवार की जिम्मेदारी है वो और भी बढ़ जाती है।
1: बिल्कुल
0: कहना चाहेंगे साथियों कि लंबे समय तक चलने वाली बीमारी केवल शरीर को प्रभावित नहीं करती बल्कि व्यक्ति के मन, सोच, विश्वास और जीवन जीने के तरीके में भी असर डालती है। लगातार दवाइयां लेना, बार बार अस्पताल जाना, शारीरिक कमजोरी, काम करने में परेशानी और दूसरे लोगों पर निर्भर रहना, इस स्थिति में अंजलि जी हम देखते हैं कि व्यक्ति वो मानसिक रूप से थक जाता है। कभी कभी वह व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, अकेलापन महसूस करने लगता है या उसे लगने लगता है कि वह उसके परिवार पर बोझ बन चुका है।
1: बिल्कुल मनीषा, हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक बीमार रहता है तो उसके जीवन की दिनचर्या ही बदल जाती है। वह पहले की तरह काम नहीं कर पाता, अपनी पसंद की जगह पर नहीं जा पाता और कई बार घर के छोटे छोटे कामों के लिए भी उसे दूसरों की मदद लेनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में श्रोता साथियों उस व्यक्ति के मन में अनेक विचार आते हैं। उसे अपने काम की चिंता हो सकती है, परिवार की आर्थिक स्थिति की चिंता हो सकती है या यह डर सता सकता है कि वह दोबारा पहले की तरह सामान्य जीवन जी पाएगा या नहीं। कई बार ये देखने पर लगता है मनीषा कि बीमार व्यक्ति चुप रहता है, किसी से बात नहीं करता या छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता है। लेकिन उसके मन में चल रही परेशानी को समझना भी जरूरी है। हर बार उसकी चुप्पी को जिद या गुस्सा समझना सही नहीं है। परिवार को चाहिए कि वह व्यक्ति की शारीरिक परेशानी के साथ साथ उसकी भावनाओं को समझे, उससे प्यार से बात करें, उसे यह भरोसा दिलाएं कि बीमारी के कारण उसके प्रति परिवार का प्यार और सम्मान कम नहीं हुआ है।
0: जी हाँ,
1: इसी के साथ हम देखते हैं कि लंबे समय तक बीमारी रहने पर व्यक्ति को कभी कभी ऐसा लगता है कि उसकी वजह से परिवार के बाकी सदस्यों को परेशानी उठानी पड़ रही है। उसे लगता है कि घर के लोग उसके लिए अपना काम छोड़ते हैं, उसके इलाज पर पैसे खर्च करते हैं, उसकी देखभाल में सभी का समय लगता है। यदि परिवार के सदस्य बार बार ये कहें कि तुम्हारी वजह से घर का सारा काम बढ़ गया है या तुम्हारे इलाज में बहुत खर्चा हो रहा है तो ऐसी बातें बीमार व्यक्ति के मन को गहरी चोट पहुंचा सकती है।
0: जी हाँ,
1: इसलिए परिवार को ये समझना चाहिए कि बीमारी किसी की इच्छा से नहीं आती। कोई भी व्यक्ति जानबूझकर बीमार नहीं रहना चाहता, इसलिए उसे अपनी बीमारी के लिए शर्मिंदा या दोषी ठहराना उचित नहीं है। इसके बजाय परिवार के सदस्यों को उससे अपनेपन का एहसास कराना चाहिए। उससे कहें कि परिवार में हर व्यक्ति कभी न कभी किसी न किसी परेशानी से गुजरता रहता है, ऐसे समय में एक दूसरे का साथ देना ही परिवार की असली ताकत है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि लंबे समय तक बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति को श्रोता साथियों केवल दवाई और इलाज की जरूरत नहीं होती है बल्कि उसे अपने परिवार का प्यार और अपनेपन की भी जरूरत होती है। कई बार परिवार के लोग इलाज, दवाइयां और घरेलू जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं अंजलि जी कि हम देखते हैं कि बीमार व्यक्ति के साथ बातचीत करना भूल जाते हैं। ऐसे में श्रोता साथियों व्यक्ति को यह महसूस होने लगता है कि अब परिवार के पास उसके लिए समय नहीं है, वो अपने मन की बातें कहने से हिचकता है। इसलिए श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि परिवार को प्रतिदिन कुछ समय बीमार व्यक्ति के साथ बिताने चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि उसका दिन कैसा रहा, वह कैसा महसूस कर रहा है और उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। इसके साथ ही श्रोता साथियों सामान्य विषय पर हम बातचीत भी कर सकते हैं, पुरानी अच्छी यादों को साझा कर सकते हैं, उसकी पसंद का गीत सुन सकते हैं, उसकी रुचि के अनुसार हम कोई गतिविधि भी कर सकते हैं। यह भी जरूरी है श्रोता साथियों कि बातचीत का हर विषय बीमारी तक सीमित न रहे। यदि व्यक्ति को किताबें पढ़ना, रेडियो सुनना, पौधों की देखभाल करना या बच्चों के साथ समय बिताना पसंद है तो उसकी क्षमता और चिकित्सीय सलाह के अनुसार उस गतिविधियों में उनकी मदद करनी चाहिए।
1: बिल्कुल मनीषा, तो जैसा कि आज कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से हम ढेर सारी बातों को जान पा रहे हैं कि किस तरीके से कोई बीमार व्यक्ति है तो परिवार के सदस्यों को कैसे उनका ध्यान रखना है और उनके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए
0: जी,
1: तो और भी आगे बातें निरंतर यूं ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि मनीषा, गीत से पहले आपने बताया था कि किस तरीके से परिवार के जो सदस्य हैं उन्हें बीमार व्यक्ति से बातचीत करनी चाहिए, पुरानी यादें साझा करनी चाहिए। यही अब बात आती है कि छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान रखें। यानी कि श्रोता साथियों, बीमारी के दौरान व्यक्ति की जिंदगी कई बार दवाइयों और जांच तक सीमित हो जाती है। ऐसे में उसकी पसंद और रुचियों को महत्व देना जरूरी है। यदि उसकी सेहत अनुमति देती है तो उसे पसंद की किताब पढ़ने, संगीत सुनने या परिवार के साथ समय बिताने के अवसर दें। उनकी छोटी छोटी उपलब्धियों की सराहना करें, लेकिन किसी काम के लिए उन पर दबाव न डालें। इसी के साथ कहना चाहेंगे कि यदि बीमार व्यक्ति लंबे समय तक उदास रहता है, बहुत अधिक चिंता करता है या जीवन के प्रति निराशा व्यक्त करता है तो उनकी बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। परिवार को डॉक्टर से बात करनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सहायता लेनी चाहिए। शरीर के साथ मन की सेहत की देखभाल भी जरूरी है, क्योंकि सही समय पर सहायता मिलने से व्यक्ति को अपनी परेशानी से निपटने में मदद मिल सकती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर बात करें कि उनकी भावना और मानसिक स्वास्थ्य की ध्यान रखने की, तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि लंबे समय तक चलने वाली बीमारी के साथ मानसिक तनाव भी वो भी बढ़ सकता है। व्यक्ति को चिंता, निराशा, अकेलापन, बेचैनी या भविष्य को लेकर डर महसूस हो सकता है। कुछ लोगों को अपने शरीर में आए बदलावों को स्वीकार करने में कठिनाइयां होती हैं, जबकि श्रोता साथियों, कुछ लोगों को दूसरों पर निर्भर रहने में भी दुख होने लगता है। हम देखते हैं कि परिवार को इन भावनाओं को गंभीरता से लेना चाहिए। बीमार व्यक्ति से यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वह हर समय सकारात्मक रहे या हमेशा मुस्कुराता रहे। उसे दुखी होने, डर महसूस करने और अपनी परेशानियों के बारे में बात करने का भी अधिकार है। कहना चाहेंगे साथियों कि परिवार को ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहां वह किसी बिना झिझक के अपने मन की बात को साझा कर सके। यदि व्यक्ति लंबे समय तक उदास रहता है, किसी भी गतिविधि में रुचि नहीं लेता है, बहुत अधिक चिंता करता है या निराशा व्यक्त करता है तो डॉक्टर से बात करना हमारे लिए उचित हो सकता है। जरूरत पड़ने पर मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की मदद भी हम ले सकते हैं।
0: बिल्कुल मनीषा, क्योंकि हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि लंबे समय से बीमार व्यक्ति की देखभाल केवल दवाई देने और अस्पताल ले जाने तक सीमित नहीं है। उसे प्यार, सम्मान, धैर्य और भावनात्मक सहयोग की भी जरूरत होती है। हमें याद रखना चाहिए कि किसी व्यक्ति का महत्व इस बात से तय नहीं होता कि वह कितना काम करता है या कितना पैसा कमाता है। वह हमारे परिवार का सदस्य है, उसकी भावनाओं का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। परिवार के सदस्यों को चाहिए कि वे देखभाल की जिम्मेदारियां मिलकर निभाएं, बीमार व्यक्ति की बात सुने और उसे अकेलापन महसूस न होने दें। साथ ही उसकी देखभाल करने वाले व्यक्ति की थकान और जरूरतों का भी ध्यान रखें। याद रखिए साथियों कि हर बीमारी को हम तुरंत ठीक नहीं कर सकते, लेकिन अपने प्यार, व्यवहार और सहयोग से बीमार व्यक्ति के कठिन समय को जरूर आसान बना सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए श्रोता साथियों, आपको यही कहना चाहेंगे कि जो भी बीमार व्यक्ति है उससे बातें कीजिए। अगर उन्हें किसी भी तरीके का अकेलापन लग रहा है तो उन्हें महसूस करिए, उन्हें समझिए और समझाइए कि किस तरीके से बीमारी आना स्वाभाविक है। लेकिन अगर उस बीमारी से अगर वो लंबे समय से जूझ रहे हैं तो उनके आत्मसम्मान, भावनाओं, इच्छाओं और जीवन के प्रति उम्मीदों को समझने की जिम्मेदारी हमारी है। जब किसी परिवार में कोई व्यक्ति बीमार होता है तो परिवार की दिनचर्या बदलती है। कई बार योजनाएं रुक जाती हैं, खर्च बढ़ जाते हैं, जिम्मेदारियां पहले से अधिक हो जाती हैं। ऐसे समय में थकान, चिंता और परेशानी महसूस होना स्वाभाविक है। इसलिए बीमार व्यक्ति की देखभाल करने वाले की जरूरतों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्हें भी आराम, सहयोग और अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर मिलना चाहिए।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति के साथ परिवार का व्यवहार उसके जीवन अनुभव को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बीमारी के दौरान व्यक्ति को केवल दवाइयां, जांच, उपचार की जरूरत नहीं होती है, बल्कि उसे सम्मान, अपनापन, धैर्य और भावनात्मक सहारे की भी आवश्यकता होती है। कहना चाहेंगे साथियों कि परिवार को चाहिए कि वो बीमार व्यक्ति की बातें सुने, उनकी भावनाओं को समझे, उनकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखे और उनकी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का सम्मान करें। अगर हम उनकी तुलना दूसरों से करते हैं तो वो निराश हो सकते हैं और उनकी बीमारी है वो ज्यादा बढ़ सकती है। तो श्रोता साथियों, उनकी तुलना हमें किसी से नहीं करनी है और उनसे अच्छे से बात करने की हमें कोशिश करनी है।
0: बिल्कुल मनीषा, तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमने ढेर सारी बातों को जाना और अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: बिल्कुल,
0: तो हम विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही अब हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से विदा लेना चाहेंगे और आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य वाग रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

नमस्कार श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सपनों की उड़ान को। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। स्वीकार कीजिएगा साथियों मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज फिर से लेकर हाजिर हूं श्रोता साथियों कार्यक्रम में जिंदगी से जुड़े एक नए सवाल के साथ में, जिसका जवाब शायद किसी किताब में हमें नहीं मिलेगा बल्कि हमारे अपने व्यवहार में छिपा हुआ है। दोस्तों, कभी आपने किसी से कोई बात कही और सामने वाले से आपको जवाब मिला नहीं, ऐसा हुआ है?

किसी ने आपके प्रस्ताव को ठुकरा दिया, किसी दोस्त ने आपकी मदद करने से मना कर दिया, किसी ने आपकी बात मानने से इनकार कर दिया, किसी नौकरी अवसर या प्रतियोगिता में आपका सिलेक्शन ही नहीं हुआ, या कभी ऐसा भी हुआ होगा आपके साथ कि आपने किसी रिश्ते में पूरी ईमानदारी से कदम बढ़ाए हैं और सामने से सिर्फ आपको एक शब्द मिला और वो मिला नहीं, और उस एक शब्द के बाद मन में आपकी कितनी बातें चलने लगी है, जैसे कि इन्होंने मुझे मना कैसे कर दिया, मेरी बात की कोई कीमत नहीं है क्या, अब मैं भी इनसे बात नहीं करूंगा या करूंगी, जब इन्हें मेरी जरूरत होगी तब मैं देखूंगी इन्हें अब। लेकिन आज के कार्यक्रम में जो विषय हमारा बातचीत का है उसका सवाल थोड़ा सा अलग है, और वो ये है कि क्या किसी का ना सुनने के बाद भी हम उसका सम्मान बनाए रख सकते हैं हमारे दिल में। अगर इसका जवाब जानो श्रोता साथियों, तो हाँ बिल्कुल, हमें ऐसा करना चाहिए। बल्कि कई बार इंसान का असली व्यक्तित्व तब सामने आता है जब उसे अपनी इच्छा के खिलाफ जवाब मिलता है। श्रोता साथियों, हाँ सुनकर खुश होना आसान है, लेकिन ना सुनकर भी सम्मान बनाए रखना, ये होती है हमारी परिपक्वता। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं इसी विषय को लेकर आपसे ढेर सारी बातें करूंगी। हम जानेंगे कि किस प्रकार से जब हम किसी के मुंह से हमारी बातों को लेकर ना सुनते हैं, तो फिर भी उस व्यक्ति के लिए हमें अपने मन में सम्मान क्यों बनाकर रखना चाहिए। तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो आइए दोस्तों पहले इसी दस्तूर को निभाते हुए एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं। आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेश्वर के साथ में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का तहे दिल से स्वागत है फिर से कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले विषय से जुड़ी बातें मेरी आपसे रही थी और आज के इस कार्यक्रम में जो विषय हमारा रहने वाला है बातचीत का, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आज हम बात कर रहे हैं कि क्या किसी का ना सुनने के बाद भी हम उसका सम्मान बनाए रख सकते हैं। श्रोता साथियों, अगर इस विषय से जुड़ी बातों को आगे बढ़ाऊं तो ना हमेशा आपके खिलाफ नहीं होता, ये बात हम सभी को समझनी होगी। यानी कि सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ना का अर्थ हमेशा तुम गलत हो नहीं होता। किसी व्यक्ति ने आपके प्रस्ताव को मना किया है तो हो सकता है कि उसकी परिस्थितियां अलग हो। किसी दोस्त ने साथ आने से मना किया है तो ये जरूरी नहीं है कि वो आपकी दोस्ती को महत्व नहीं देता। किसी अधिकारी ने आपका सुझाव स्वीकार नहीं किया तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका विचार ही बेकार था। दोस्तों, कई बार सामने वाले के पास अपनी एक अलग वजह होती है ना कहने की। या तो उसके पास समय नहीं हो सकता, या उसकी प्राथमिकताएं अलग हो सकती हैं, या फिर उसकी सीमाएं भी अलग हो सकती हैं। वह किसी और की जिम्मेदारी में व्यस्त हो सकता है, या फिर उसे सच में आपकी बात सही नहीं लगी। दोस्तों, हमें ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति को ना कहने का अधिकार है, ठीक वैसे ही जैसे हमें हाँ या ना कहने का अधिकार होता है। और यही जो समझ है वो हमारे रिश्तों में सम्मान को बना कर रखती है। अब बात करते हैं हमारे युवाओं की, तो अगर हमारे युवा साथी कोई सपना देख रहे हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, अपना काम शुरू करना चाहते हैं या किसी क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो रास्ते में ना मिलना उनके लिए असामान्य नहीं है। आप किसी जगह नौकरी के लिए गए, युवा साथियों हम आपको नहीं रख सकते, आपको ये सुनने को मिला, आपने प्रतियोगिता दी, आपका चयन नहीं हुआ, आपने किसी से अपने काम में सहयोग मांगा, उन्होंने कहा हम मदद नहीं कर पाएंगे। साथियों, अब सवाल यह नहीं है कि ना क्यों मिला, सवाल तो ये है ना मिलने के बाद आप अपने अंदर क्या बचा कर रखते हैं, गुस्सा या हिम्मत? क्योंकि एक ना आपकी पूरी कहानी का आखिरी पन्ना नहीं है। कभी कभी ना केवल यह बताता है कि यह रास्ता अभी नहीं खुला, दूसरा रास्ता तलाशो। इसलिए कभी भी किसी की ना को सुनकर हमें ये नहीं जानना चाहिए कि ये व्यक्ति हमारे खिलाफ है। अब यहाँ पर एक और बात आपसे करना चाहूंगी कि जब कोई हमें मना करता है श्रोता साथियों, तो हमारे अंदर दो चीजों का फर्क होना चाहिए, अस्वीकार और आत्मसम्मान का। जैसे कि किसी का आपको मना करना उसके अधिकार का हिस्सा हो सकता है, लेकिन उस ना के कारण खुद को छोटा समझ लेना ये हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करता है। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है और आपका चयन नहीं हुआ, आप कह सकते हैं कि मैं असफल हो गया, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हैं कि इस बार मेरा चयन नहीं हुआ, अब मुझे अपनी तैयारी को और बेहतर करने की जरूरत है। ऐसे में दोस्तों दोनों वाक्यों में बहुत फर्क है। पहला वाक्य व्यक्ति को अपनी असफलता से जोड़ देता है और दूसरा वाक्य व्यक्ति को उसके प्रयासों से जोड़ देता है। यानी कि एक परिणाम आपकी पहचान नहीं हो सकता। हम अक्सर शब्दों से ज्यादा अपनी प्रतिक्रिया से रिश्ते खराब करते हैं। किसी ने हमें मना किया, हमने तुरंत जवाब दे दिया, ठीक है फिर कभी बात मत करना। लेकिन कुछ समय बाद जब गुस्सा शांत होता है तो हमें लगता है शायद मैंने उसे कुछ ज्यादा ही बोल दिया। इसलिए दोस्तों, एक छोटी सी आदत बहुत काम आ सकती है और वो ये है कि तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय आपको थोड़ी देर रोक कर सोचना चाहिए, एक गहरी सांस लेनी चाहिए और अपने आप से पूछना चाहिए कि मुझे दुख किस बात का हुआ है, क्या मुझे सच में उस व्यक्ति से समस्या है या मुझे सिर्फ अपनी उम्मीद पूरी न होने का दुख है। दोस्तों, आपके द्वारा पूछे गए ये सवाल आपके जीवन में बहुत कुछ बदल सकते हैं, क्योंकि कई बार हमें इंसान से नहीं अपनी अधूरी उम्मीदों से गुस्सा होता है और हम ऐसे ही किसी और पर अपना सारा गुस्सा उतार देते हैं। तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से मेरी आपसे बहुत अच्छी चली रही हैं, ये बातें मैं आगे भी करना चाहूंगी, लेकिन अभी यहाँ पर सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

दोस्तों, इस गीत के बाद मैं फिर से रुक करना चाहूंगी कार्यक्रम में। जैसा कि बातचीत का विषय आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा जुड़ा हुआ है कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि जब हम किसी के मुंह से हमारे वाक्यों को लेकर ना सुनते हैं तो उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में सम्मान फिर भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो गीत से पहले जैसा कि ढेर सारी बातें जानी थी, यही एक बात आपसे करना चाहूंगी कि सम्मान का मतलब सहमत होना कभी नहीं होता श्रोता साथियों। यानी कि किसी का सम्मान करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसकी हर बात से सहमत हो। आप सामने वाले की बात से असहमत भी हो सकते हैं। आप अपनी बात को मजबूती से रख सकते हैं। आप किसी निर्णय को गलत भी मान सकते हैं, लेकिन फिर भी भाषा और व्यवहार में मर्यादा आप रख सकते हैं। आप कह सकते हैं जैसे कि मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन अभी मेरी राय अलग है, या आपने मना किया, मैं आपकी परिस्थिति का सम्मान करता हूँ। या आप ये भी कह सकते हैं श्रोता साथियों कि मुझे आपकी बात पसंद नहीं आई, लेकिन मैं बिना अपमान किए आपकी बात रखना चाहता हूँ। और यहीं से संवाद रिश्तों को टूटने से बचाता है। कई युवा किसी के मना करने के बाद अपने अंदर एक जिद पैदा कर लेते हैं कि अब मैं इसे दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन जिंदगी सिर्फ किसी को दिखाने के लिए नहीं जीनी चाहिए। अगर आपका सपना है तो उसे पूरा कीजिए, लेकिन इसलिए नहीं कि किसी ने आपको ठुकराया था, बल्कि इसलिए कि आप खुद जानते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं। किसी के ना को अपनी ऊर्जा का स्रोत बनाने के बजाय अपने लक्ष्य को अपनी ऊर्जा का स्रोत बनाइए, क्योंकि किसी को गलत साबित करने के लिए की गई मेहनत एक दिन आपको ही थका देगी, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए की गई मेहनत आपको लगातार श्रोता साथियों आगे बढ़ाते रहेगी। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हमने किसी के मना करने के बाद भी सम्मान से उससे बात की तो हम कमजोर दिखेंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। सम्मान देना कमजोरी नहीं होता, बल्कि आत्मनियंत्रण होता है। साथियों, गुस्सा करना आसान है, बदला लेना आसान है, ताने देना भी आसान है और रिश्ता तोड़ देना भी आसान है, लेकिन ये कहना तुम्हारा निर्णय तुम्हारा है और मेरा व्यवहार मेरी जिम्मेदारी है, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। जिस दिन इंसान ये समझ जाता है, उस दिन वह दूसरों के व्यवहार से अपनी शांति को नियंत्रित होने से बचा लेता है। जैसे कि एक कल्पना कीजिए, आप एक युवा किसी बड़े संस्थान में नौकरी के लिए आवेदन करता है। वह पूरी तैयारी कर रहा है, इंटरव्यू भी देता है, लेकिन जब जवाब आता है तब वह बोलते हैं कि आपका चयन नहीं हो पाया। वह घर आता है, कुछ देर चुप रहता है, फिर अपने दोस्त से कहता है, मुझे बुरा लगा है, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि मुझ में सुधार की जरूरत कहाँ है। फिर वह अपनी कमियाँ लिखता है, अगली बार बेहतर तैयारी करता है। अब श्रोता साथियों ध्यान दीजिएगा, उसने ना को स्वीकार किया, लेकिन अपने सपनों को ना नहीं कहा, और यहीं से असली सपनों की उड़ान की शुरुआत हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी बातचीत का सवाल सिर्फ इतना था कि क्या ना सुनने के बाद भी सम्मान बनाए रखना संभव है। तो आज की बातों से आप समझ पाए हैं कि हाँ, ऐसा बिल्कुल संभव है, क्योंकि शायद यही हमारे व्यक्तित्व का सबसे खूबसूरत मौका होता है, या फिर कहें तो यही हमारे व्यक्तित्व की सबसे खूबसूरत परीक्षा भी हो सकती है। क्योंकि जिंदगी में हर जगह हमें अपनी पसंद का जवाब नहीं मिलेगा, और हर सपना पहली कोशिश में हमारा पूरा नहीं होगा, लेकिन एक चीज जो है वो हमेशा हमारे साथ में रहेगी, वो है कि हम प्रतिक्रिया कैसे देते हैं। याद रखिए, किसी की ना आपकी कीमत तय नहीं करता, और किसी की असहमति आपका सम्मान कम नहीं करती। कभी कभी जिंदगी हमें रोकती नहीं, बस हमारा रास्ता बदलती है। इसलिए अगली बार जब आपको कोई ना कहे तो कुछ पल रुकिए और खुद से कहिए कि मैं तुम्हारे निर्णय का सम्मान करता हूँ, लेकिन अपने सपने से पीछे नहीं हटूंगा। और यही सोच श्रोता साथियों आपको भीड़ से अलग बनाएगी, क्योंकि सपनों की उड़ान सिर्फ मंजिल तक पहुँचने का नाम नहीं है, ये उस सफर में अपने भीतर के इंसान को बचाए रखने का नाम भी है। तो ना सुनिए, समझिए और स्वीकार कीजिए, लेकिन अपनी उम्मीद, अपनी मेहनत और अपनी गरिमा को ना मत कहिए दोस्तों। इसी खूबसूरत सोच के साथ कार्यक्रम सपनों की उड़ान से मैं विदा लेना चाहूंगी, क्योंकि बातें पूरी हो चुकी है और समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और पहले से गीत के साथ में।

श्रोता साथी, उस गीत के साथ ही आज के इस कार्यक्रम सपनों की उड़ान से मैं विदा लेना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी मेरी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्र द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेषर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसे स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: आप अगर विचार कर रहे हैं कि जया पेड़ छाव में आपने रहो या आपने में कितनी शांति रही है, जय हवा में आपने हाल हो, ये भी आपने थकी कई आश लागे है। अगर पेड़ नहीं रहेगा तो आपने हरते जीवंगा, प्रकृति आपकी जरूरत नहीं बल्कि आपकी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगा लूंगा, पानी में बचा लूंगा, मैं अपनी धरती में जीवन दान लूंगा।
2: हो वे प्रकृति ने बचाओ, भविष्य ने हदारो।
1: हो वे आज हमारा कदम है, ये आबा वाला काल में बदलाव की शुरुआत है। वागुर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
4: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
5: होवे न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
6: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
4: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
5: होवे जई वरे सब सोरा भणेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
4: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
3: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, पांव धोए हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था, हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का।

श्रोताओं, ये तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के संगीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारे आज के कार्यक्रम कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागुर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोताओं, दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति को सभा समाप्त करने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ हम दोबारा मिलेंगे अगली सभा में। तब तक के लिए नमस्कार।